सुमधुरभा

सुप्रभात, यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। आज शुक्रवार है, शक संपत 1948 रावण माह की तिथि 23, तदनुसार 14 अगस्त सन 2026।

कि आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: हैं मुकेश कुमार बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक रिपोर्ट।
1: 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस दिन देश उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश के विभाजन के दौरान जान गंवाई और अपने घरों से विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के कैडेटों ने शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से अधिक नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव न्यांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत लाइबेरिया संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने

0: क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा हाट हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 लोग घायल हुए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरंग में 22 मजदूर फंसे थे, इनमें से 20 को बाहर निकाल लिया गया है और 2 मजदूरों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज का शीर्षक, आज का चिंतन शीर्षक है, कर्म ही सफलता का एकमात्र साधन।
2: अपने जीवन में कर्म नहीं करके भाग्य के भरोसे निष्क्रिय बैठे रहते हैं। वे सोचते हैं कि जिस दिन भाग्य में होगा सारी आकांक्षाएं आपसे आप पूरी हो जाएंगी, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वे तो मनुक दास के इस दर्शन को मानते हैं, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। यह भाग्यवाद का चरम है, वस्तुतः यह परले सिरे की काहिली है। यह निश्चित है कि ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते, उनका जीवन असफलताओं की कहानी बनकर रह जाता है। ऐसे काहिलों को ही ध्यान में रखकर 11वीं सदी के प्रसिद्ध दार्शनिक गजाली ने कहा है, कोई कोई समझते हैं कि संतोष के ये मायने हैं कि जीविका उपार्जन के लिए न हाथ फैलाइए न कोई उपाय सोचा जाए, बल्कि आदमी इस तरह बेकार पड़ा रहे कि जिस तरह चिथड़ा जमीन पर पड़ा रहता है या मांस पटरी पर रखा रहता है। लेकिन यह मूर्खों का विचार है। यदि तुम इस बात का इंतजार करो कि खुदा तुमको रोटी के बिना तृप्त कर देगा या रोटी को यह शक्ति दे देगा कि वह स्वयं तुम तक चली आए, या किसी फरिश्ते को मुकर्रर कर देगा कि वह रोटी चबाकर तुम्हारे पेट में डाल दे, तो तुम खुदा के स्वभाव से बिल्कुल अनभिज्ञ हो। गजाली के इन शब्दों में जीवन का यथार्थ और कर्म के प्रति निष्ठा स्पष्ट है। भाग्य की बात करने वाले यह नहीं सोचते हैं कि यह एक भटकाव है, शुष्कों का एक सूक्ष्म अमूर्त षड्यंत्र है। भाग्यवादी व्यक्ति अपना समाज और देश का विकास नहीं कर सकता। जो देश समाज भाग्यवादी बन जाता है उसका विकास नहीं होता। कर्म ही जीवन में खुशियों के नए द्वार खोलता है। गीता में वेदव्यास ने कर्म का आख्यान किया है, कर्मणीय वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह फल के प्रति निसंगता के भाव की बात की गई है। कर्म ही फल देता है, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मात्र फल की चिंता कर्म में बाधक बनती है। कर्म पुरुषार्थ से जुड़ी वस्तु है। पुरुषार्थ ही कर्म के द्वारा असंभव को संभव कर दिखाता है। ऐसे ही व्यक्ति अपने जातीय जीवन को नई चेतना से संपन्न करते हैं, अपने देश का स्वरूप बदल देते हैं। विश्व में आज कई देश

0: हैं जो अपनी पुरुषार्थी संतानों के कारण संसार को श्रेष्ठतम देशों में एक है। कर्म वहां के निवासियों का मूल मंत्र है। वे भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहते हैं, कर्म में उनकी अकंप निष्ठा होती है। वे जानते मानते हैं कि भाग्य के भरोसे बैठने से जातीय जीवन में जंग लग जाता है। कर्म ही उन्नति का मुख्य आधार है। कर्मशील व्यक्ति इतिहास को जैसा चाहता है बदल देता है। उसके जीवन में असंभव जैसी कोई वस्तु नहीं होती। नेपोलियन एक बार अपनी सेना को लेकर युद्ध की मुहिम पर जा रहा था कि सामने आलप से पर्वत आ गया। सेना रुक गई और कहा, सामने आलप से है। नेपोलियन ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, बहादुरों, समझो कि आलप से है ही नहीं, और उसकी सेना दुर्लंघे आलप्सी को पार कर गई। नेपोलियन कहता था, उसके शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। उसका कहना था, इतिहास हमसे है, हम इतिहास से नहीं। हम इतिहास को जैसा बनाना चाहते हैं बनाते हैं, इतिहास हमें नहीं बनाता। नेपोलियन से कोई असहमत हो सकता है। अस्तित्ववादी चिंतकों का तो इसके विपरीत मत है कि इतिहास हम नहीं बनाते, इतिहास जैसा चाहता है हमें बनाता है। लेकिन नेपोलियन की बातों में एक आत्मविश्वासी का विश्वास बोलता है। इसको पैदा करने के लिए इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यह खुदी यूं ही नहीं आती, इसके लिए कर्म की आंच में जलना होता है। कर्म की आंच में तपा हुआ आदमी ही समय की दिशा बदलने में समर्थ होता है। धर्मवीर भारती के अंधा युग का याचक जो भविष्य दृष्टा है कहता है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। वस्तुतः भाग्य रेखा मनुष्य स्वयं बनाता मिटाता है अपने कर्म से। कर्म ही सफलता का एकमात्र सूत्र है।
1: आप सुन रहे थे आज का चिंतन, कर्म ही सफलता का एकमात्र साधन है। यह आकाशवाणी का साझबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और साथी की आवाज़ों में इस भक्ति गीत को।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना की आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी
1: एपिसोड 61।

कपट में डुबो कर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तेज समृद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एकतम है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। श्रोताओं, हम आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संक्षिप्त समाचार। हमारे 7 बजे आप सुनेंगे

5:30 मिनट पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी कार्यक्रम चर्चा सुनेंगे आरंभिक चर्चा धान की फसल में ध्यान देने योग्य बातें यौन सावधानियाँ 6:00 शाम सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार 6:02 मिनट पर आप सुनेंगे अन्ना कार्यक्रम चर्चा सुनेंगे स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान और बलिदान 6:30 मिनट पर आप सुनेंगे शाम देशभक्ति की 6:45 मिनट पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से 6:56 मिनट पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से

सात बजे शाम आप सुनेगी स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र की जनता के नाम संदेश। 7:30 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 8 बजे सुनेंगे आपकी शाह फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज 8:09 हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। 10 बजे रात आप सुनेंगे रजनीगंधा कार्यक्रम। 10:30 पर एक फिल्म से कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। 11 बजे हिंदी समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: विशेषकार्यक्रमं सम्बोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिकसञ्चारपटलीय सन्देशे असौ देशस्य विभाजनकाले घोरयातनाम् अनुभूतवद्भ्यः सर्वेभ्यः जनेभ्यः स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। तेनोक्तं यत् सर्वकारः एतं दारुण इतिहासं संस्मरन् राष्ट्रस्य एकताम् अखण्डतां सामाजिकसौहार्दं च निरन्तरं सुदृढीकर्तुं पूर्णतया कटिबद्धो वर्तते। स्वतंत्रता दिवसावसरे दिल्ली मेट्रो सेवाः सर्वेषां कृते अन्तिमस्थानकेभ्यः प्रातः चतुर्वादनतः एव प्रारप्स्यन्ते। दिल्ली मेट्रो निगमेन निगदितं यत् एषः निर्णयः स्वतंत्रता दिवस समारोहे सहभागितायै आगच्छतां विशेषातिथीनाम् आमन्त्रितानां सुगमगमनागमनाय गृहीतः। नाइजीरिया देशस्य लागोस नगरे चतुर्दिनानि यावत् आयोजितायां राष्ट्रमण्डल प्रतिस्पर्धायाम् अत्युज्ज्वल प्रदर्शनेन सह भारतं 35 पदकानि स्वायत्तीकृतवत् इति वार्ताः।
1: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: लीजिए सुनिए लोकगीत सत्येंद्र कुमार मिश्रा और साथी की आवाज़ों में ये गीत।
4: सावन में झुलनी गढ़ा दपी।

0: आप सुन रहे थे सत्येंद्र कुमार मिश्रा और साथी की आवाज़ों में कुछ लोगों के गीत। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं कुछ कविताएं अशोक ठाकुर से।
1: मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है, कभी मल में तो कभी पूजा की थाली में बैठता नजर आता है, कभी मल में तो कभी पूजा की थाली में बैठता नजर आता है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है। हमें कहाँ एकाग्रचित्त होना, यह तो मन की बात है, प्रकाश पुंज दिया बाती के संग रहे या तो अंधेरी धरा के संग रहे, यही तो जीवन का तो दिन रात है, यही तो जीवन का दिन रात है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है। देवता बनकर रहे हम या दानव बनकर रहे हम, यह तो मन की बात है, यह तो मन की बात है, दिए को जलने दे प्रकाश पुंज फैलने दे, यह तो मन की जज्बात है, यह तो मन की जज्बात है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है। अच्छा क्या है बुरा क्या है सोच हमारी अपनी है, अच्छा क्या है बुरा क्या है सोच हमारी अपनी है, सोच हमारी कर्म जाति की राह दिखाती, फूलों के संग गुंजार भरती, फूलों के संग गुंजार भरती, या तो कांटों के संग उलझा कर रखती, यह तो मक्खी की तरह भिनभिनाती है, यह तो मक्खी की तरह भिनभिनाती है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता है। कभी भोग विलास के संग इंद्राणी की खोज में, कभी भोग विलास के संग इंद्राणी की खोज में, कभी धर्म गाथा को उधेड़ कर हीन कर्म की ओर ले जाती है, धर्म गाथा को उधेड़ कर हीन कर्म की ओर ले जाती है, कभी भयावह अंधेरी घटा की ओर, कभी भयावह अंधेरी घटा की ओर, अपने अंदर के भूतल से टकरा कर रह जाती है, टकरा कर रह जाती है, मानव मन मक्खी की तरह भिनभिनाता नजर आता है। हे मातृभूमि, ना जाने कितने सपूतों ने मिटा दी अपनी जवानी, हे मातृभूमि, ना जाने कितने सपूतों ने मिटा दी अपनी जवानी, तेरी शान बान आन जाना पाए, दिलो दिमाग में रखी यही कहानी, दिलो दिमाग में रखी यही कहानी। भले घास की रोटी खाई, भले घास की रोटी खाई, कंद कंदराओं में गुजार दी जवानी, पर तेरी संस्कृति को रखी हमने अपने साज सफर पर सत्यवाणी। हे मातृभूमि, न जाने कितने सपूतों ने मिटा दी अपनी जवानी। आताताइयों के अत्याचार को सहे हम, फौलादी भुजाओं की संग हमने, हंस हंस कर हम देते रहे कुर्बानी, समर संघर्ष से टकराते रहे, समर संघर्ष से टकराते रहे, मातृभूमि की खातिर अपने सर कटवाते रहे, मातृभूमि की खातिर अपने सर कटवाते रहे, पर मिटने न दिए अपने पौरुष को, हिमालय सा अडिग रखे अपनी जवानी, हिमालय सा अडिग रखे अपनी जवानी, परोपकार करते रहे अपना हाथ उठाते रहे, अन्यायी अत्याचारी व्यभिचारी को भी हम माफ करते रहे, अमृत धार लिए चले हम संजीवनी को बांटते रहे, हम संजीवनी को बांटते रहे, हम तेरी खातिर हे पुण्यभूमि मिटा दी हमने अपनी जवानी, हाथ में लिए कमंडल अमृत धारा को भरे हृदय पर, विश्व कल्याण हेतु बोलते रहे सदा सत्य धर्म की वाणी, विश्व कल्याण हेतु बोलते रहे सदा सत्य धर्म की वाणी। हे मातृभूमि, न जाने कितने सपूत ने मिटा दी अपनी जवानी, कितने सपूत ने मिटा दी अपनी जवानी। परमाणु युद्ध की ओर पूरी दुनिया फंसती नजर आती है, परमाणु युद्ध की ओर पूरी दुनिया फंसती नजर आती है, अपनी विशालता अपना स्वरूप दिखाने के चक्कर में, बमों की होड़ में विज्ञान की खोज के बीच नजर आती है, परमाणु युद्ध की ओर पूरी दुनिया फंसती नजर आती है, बढ़ती जनसंख्या मानवीय विचार स्तंभों को चकनाचूर करते नजर आती है, बढ़ती जनसंख्या मानवीय विचार स्तंभों को चकनाचूर करते नजर आती है, प्रकृति परमात्मा के विधान के संग आदमी छेड़छाड़ करते नजर आता है, विश्व युद्ध की ओर पूरी दुनिया के विचार मंच बढ़ रहे हैं, विश्व युद्ध की ओर पूरी दुनिया के विचार मंच बढ़ रहे हैं, कल्पना करें अगर परमाणु युद्ध हुआ तो फिर क्या होगा, जीवन लीला का विनाश के साथ साथ सर्वत्र हाहाकार छा जाएगा, भारत माता के चेता महात्मा पूरे विश्व को मंगल साज देते आया है, देते रहेगा, यह है निश्चित बात। विश्व संकट से भारत के संतानों ने छटाई है घनघोर अंधेरी रात को, विश्व को बचाई है। परमाणु युद्ध की ओर पूरी दुनिया फंसती नजर आती है, परमाणु युद्ध की ओर पूरी दुनिया फंसती नजर आती है। हम सभी प्रदर्शन जाल में फंसते नजर आते हैं, हम सभी प्रदर्शन जाल में फंसते नजर आते हैं। अर्धनग्न बनकर हम उधेड़ बूंद के चक्कर में आकर किधर जा रहे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम सभी प्रदर्शन जाल में फंसते नजर आते हैं, लाखों की कमाई करते नजर आ रहे हैं, बेईमानी या ईमानदारी की सोच से परे, बेईमानी या ईमानदारी की सोच से परे एक विलासी जीवन की ओर अग्रसर नजर आते हैं, एक विलासी ओर की ओर अग्रसर नजर आते हैं। संस्कृति संस्कार को हम तिलांजलि देकर हम संस्कृति संस्कार को हम तिलांजलि देकर हम एक दूसरे के समक्ष नरकंकाल सा नजर आते हैं, एक दूसरे के समक्ष नरकंकाल सा नजर आते हैं। रुपये पैसे वैभव के बीच रंग महलों के आलिशान चमचमाती दीवारों के बीच करा रहे हम, चमचमाती दीवारों के बीच करा रहे हम। मानवीय दीवारें बट रही, मानवीय दीवारें बट रही, बंधुत्व भाईचारा को रौंदते नजर आते हैं, बंधुत्व भाईचारा को रौंदते नजर आते हैं। हम सभी प्रदर्शन जाल में फंसते नजर आते हैं। मन में हलचल विस्फोटक तेरे विचार रे, फिर कहां तेरे भाग में सुख शांति सार रे। अंदर में हलचल विस्फोटक विचार, फिर कहां तेरे भाग में सुख सार रे, सुख शांति सार रे। पाल रखा अपने अंदर लाभ लोभ लालच संसार, पाल रखा अपने अंदर लाभ लोभ लालच संसार, भला सुख से तुझे कहां रहने देता ये धार रे। आनंद रस का हरण कर लेता तेरा मन अंगार रे, आनंद रस का हरण कर लेता तेरा मन अंगार रे। तुझे मरोड़ते रहता देकर हलचल हजार रे, तुझे मरोड़ती रहता देकर हलचल हजार रे। करोड़ों का महल तेरा गाड़ी मोटर अपार रे, फिर ना जाने कौन सा विष पाल रखा अपने अंदर, मिटा ना पाया फेरा हजार रे, मिटा ना पाया फेरा हजार रे। उसी गोता में भूला सुख सार रे, उसी गोता में भूला सुख सार रे। मानवता का राग तेरे अंदर समा न सका, मानवता का राग तेरे अंदर समा न सका, कभी अपना न सका रंग उपकार रे, कभी अपना न सका रंग उपकार रे। अंदर मन में हलचल विस्फोटक तेरे विचार रे, फिर कहां तेरे भाग में सुख शांति सार रे, फिर कहां तेरे भाग में सुख शांति सार रे। ओ मैयारी, ओ मैयारी तेरी कोख देवालय, कहां भला इस दुनिया में बढ़कर तीर्थालय। ओ मैयारी तेरी कोख देवालय, कहां भला इस दुनिया में बढ़कर तीर्थालय। पाया हजारों शिवालय पर तेरी कोख से बढ़कर पाया न कहीं देवालय, पर तेरी कोख से बढ़कर पाया न कहीं देवालय। नौ मास सिंची हर पल पल तूने अपनी ममता से पोसी, नौ मास सिंची हर पल पल तूने अपनी ममता से पोसी। तेरे हर एक बूंद से एतन मन है सिंची, फिर भी न जाने तेरी संतानों ने क्यों तुझे कर रखा बेगाना। ओ मैयारी तेरी कोख देवालय, मंगल साज लिए तूने हर पल पल आशीर्वाद का भंडार खोल दिया। जो भी था तेरे पास संतानों के लिए समर्पित कर बनी सदा देवालय। ओ मैयारी तेरी कोख देवालय, ओ मैयारी तेरी कोख देवालय। ओ पंछी रे आज नहीं तो कल तुझे पछताना पड़ेगा, ओ पंछी रे आज नहीं तो कल तुझे पछताना पड़ेगा। जहां तूने डाला बसेरा, जहां तूने डाला डेरा, उस आंगन को रख न सका तू साफ सुथरा, उस आंगन को रख न सका तू साफ सुथरा। जब तुझे बीमारियों का अंबार से पड़ेगा पाला, तब तुझे पड़ेगा एक दिन पछताना। ओ पंछी रे आज नहीं तो कल।
0: आप सुन रहे थे काव्य धारा कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ कविताएं कवि अशोक ठाकुर जी से। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम गीत से गीत। उसके पहले हम आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।

0: पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल

0: हुए गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इंकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं, सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे, जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, सीबीआई जांच के लिए जनहित याचिका दायर। आंदोलनकारी छात्र कल रांची में निकालेंगे भव्य तिरंगा यात्रा। संसद से खान और खनिज संशोधन विधेयक पास होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी आंदोलन की चेतावनी, भाजपा ने किया पलटवार। उत्तराखंड में फंसे झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार गंभीर, मुख्यमंत्री ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। रांची के खेल गांव में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया जारी। आज बैडमिंटन, जूडो और वॉलीबॉल के ट्रायल्स। और मौसम विभाग ने आज झारखंड के पश्चिमी जिलों में अत्यंत भारी बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी। रांची में रात से ही रुक रुक कर हो रही है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर अड़े प्रदर्शनकारी छात्र कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रांची की सड़कों पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 16 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की खबरों का खंडन किया है।
1: हम लोग का जो है अनिश्चितकालीन धरना जो है सो चलता रहेगा। 15 अगस्त को जो है सो हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा करने जा रहे हैं। झारखंड के तमाम छात्रों से मैं अपील करना चाहूंगा, भव्य तिरंगा यात्रा में जो है सो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें।
0: जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित धांधली का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। परीक्षाओं की स्वतंत्र जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर प्रार्थी बसंत प्रसाद द्वारा एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीआईडी की टीम ने मामले में वांछित 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए रांची, पलामू, बोकारो, हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में भारी छापेमारी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संसद से पारित खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 की तीखी आलोचना की है। श्री सोरेन ने इसे झारखंड के हितों पर कुठाराघात बताते हुए कहा कि खनिजों पर अतिरिक्त कर लगाने का अधिकार छीनने से राज्य की जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी। इस सिलसिले में उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा है। श्री सोरेन ने चेतावनी दी है कि यदि यह विधेयक वापस नहीं लिया गया तो राज्यभर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। इस बीच झामुमो ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया है। पार्टी महासचिव विनोद कुमार पांडे ने कहा कि इस संशोधन से झारखंड को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा। श्री पांडे ने चिंता जताते हुए कहा कि जमीन और खनिज संसाधन राज्य के हैं, लेकिन इस कानून के आर्थिक दुष्परिणाम स्थानीय जनता को भुगतने होंगे।
2: MMDR उस कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया, 5 मिनट के अंदर में ही बिना उस पर चर्चा किए हुए विधेयक को पारित कराया गया और बिना उन राज्यों को विश्वास में लिए हुए जो राज्य इससे प्रभावित होंगे। क्या इस संशोधन से प्रभावित राज्यों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का कोई विस्तृत अध्ययन कराया गया?
0: इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम देश की खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और एक समान कर प्रणाली लागू करने के लिए उठाया गया है।
3: 55 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, उस समय तो राज्य सेस नहीं लेता था। ये तो सेस लेना 2024 के जजमेंट के बाद 2025 से उन्होंने शुरू किया, अभी तक आया नहीं है। और हमारा कहना है कि जो नई धारा 90 है वो अभी भी स्पष्ट करती है कि राज्यों को जो उनकी रॉयल्टी है वो मिलती रहेगी। ये केंद्र जो उनको रॉयल्टी देता 15-20 हजार करोड़ का, वो तो मिल ही रहा है।
0: उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी अपने विफलताओं और जेपीएससी परीक्षा विवाद जैसे गंभीर छात्र आंदोलनों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts। और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
5: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
6: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
5: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: उत्तराखंड के चमोली में टनल धंसने के हादसे में झारखंड के खूंटी और गुमला जिलों के श्रमिकों के फंसे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली है। उन्होंने विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। राज्य में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा विभिन्न जिलों में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। सिमडेगा में जिलाध्यक्ष दीपक पुरी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकालकर वीर शहीदों को नमन किया। वहीं सरायकेला में भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश देते हुए मुख्य मार्गों पर मार्च किया। उधर खूंटी के कर्रा और लोधमा में पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा की अगुवाई में संयुक्त तिरंगा यात्रा निकाली गयी। रांची में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय भूमि संरक्षण कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को भूमि एवं जल संरक्षण योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
7: भूमि संरक्षण पदाधिकारी जिला स्तरीय जितने भी हैं उनका एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। लगभग 7 सत्र निर्धारित हैं, जिसमें भूमि संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पे आज जो एक्सपर्ट्स हैं वो आके चर्चा करेंगे। एक वेबसाइट भी बनाने की प्रक्रिया में है हम लोग, जहाँ पे हम लोग इन चीजों को देख सके, कहीं पे भी बैठ के किन जिलों पे कौन से तालाब बन रहे हैं, उसका यथावत स्थिति क्या है, जियो टैगिंग क्या है, काम हुई भी है या नहीं हुई है।
0: मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार आज सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। रांची के खेल गांव में 70वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस चयन प्रक्रिया के कल खो खो, बैडमिंटन और कुश्ती सहित 7 खेलों में रिकॉर्ड 1676 स्कूली खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आज बैडमिंटन, जूडो और वॉलीबॉल वर्ग के लिए खुली चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री द्वारा खनन बिल का विरोध किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, मुख्यमंत्री ने चेताया, झारखंड ऐसा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। हिंदुस्तान ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पर लिखा, बुंडू की दो बहनें समेत राज्य के 3 सम्मानित। प्रभात खबर लिखता है, जेपीएससी जेएसएससी भर्ती घोटाला, आयोग से कॉपी निकलवा लिखवाता था मिथिलेश सिंह, दिल्ली से गिरफ्तार। दैनिक जागरण के शब्द हैं, चमोली में टनल धंसने से 3 की मौत, झारखंड के 5 घायल। और अंत में मुख्य समाचार, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद पहुंचा हाई कोर्ट, सीबीआई जांच के लिए जनहित याचिका दायर, आंदोलनकारी छात्र कल रांची में निकालेंगे भव्य तिरंगा यात्रा। संसद से खान और खनिज संशोधन विधेयक पास होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी आंदोलन की चेतावनी। भाजपा ने किया पलटवार, उत्तराखंड में फंसे झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार गंभीर, मुख्यमंत्री ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। रांची के खेल गांव में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया जारी, आज बैडमिंटन, जूडो और वॉलीबॉल के ट्रायल्स। और मौसम विभाग ने आज झारखंड के पश्चिमी जिलों में अत्यंत भारी बारिश और वज्रपात की जारी की चेतावनी। रांची में रात से ही रुक रुक कर हो रही है वर्षा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 हुए हैं। पेश कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए, आज आप सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत। हम आपको सुनवाते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: कोई राम भी तो तुम्ही लक्ष्मण साथियों अब तुम्हारे हवाले।
1: चौदह अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का

आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति गीत। इसी के साथ मॉर्निंग मेलोडी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम अब से कुछ समय में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बर्फी फिल्म का गाना आइए सुनते हैं, पेपोन और सुनिधि चौहान की आवाजों में, नीलेश मिश्रा के बोल और संगीत है प्रीतम का।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: आज अभिनेता जॉनी लिवर का जन्मदिन है, उन्हें हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। मिमिक्री करने में उन्हें महारत हासिल है और इसी की वजह से उन्हें स्टेज शो करने का मौका मिला और स्टेज शो की वजह से उनकी फिल्मों में एंट्री हुई और ज्यादातर फिल्मों में हमने देखा कि हास्य अभिनेता के रोल में वो देखे गए हैं। तो जन्मदिन की उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और चित्रलोक कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ फिल्म का गाना उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज है, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल है, संगीत है अजय अतुल का।

ब्रेक के बाद लीजिए अब सुनिए यमला पगला दीवाना 2। इस फिल्म का गाना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, कुमार के बोल हैं शरीफ दोषी का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुद्ध देसी रोमांस, इस फिल्म का गाना सुनिधि चौहान और मोहित चौहान की आवाजों में, जयदीप साहनी के बोल, सचिन जिगर का संगीत।

really silly हमारी लव लाइफ। आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं। मैरी कॉम फिल्म का गाना सुनिधि चौहान की आवाज में, प्रशांत इंगोले का लिखा हुआ गाना, शशि सुमन का संगीत है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर हाजिर हूं आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में आज मस्ती ही मस्ती।
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,
0: आज तो मची है धूम।
2: दिल तेरा दीवाना है सनम,

0: ऐसा नहीं देखा।
1: शम्मी कपूर इस मामले में दुनिया से निराले हैं। उन्होंने अभिनय के तमाम सीमित दायरे में बंद रहने से इनकार किया और अपने अभिनय का ऐसा जलवा बिखेरा कि नौजवानों की तूफानी भावनाओं को आंधी की सी गति मिली। अपने समय के विद्रोही सितारे कहे जाने वाले शम्मी कपूर ने अभिनय, नृत्य, मनोरंजन, पूर्ण भाव प्रदर्शन की सीमाओं को बेफिक्री दी थी। अंग संचालन में कैद अदाओं और अंदाजों के दोहराव से मुक्ति दिलाई थी।

0: नाते खोजी।
1: दोस्तों, शम्मी कपूर का जन्म 1931 में हुआ था। वे मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बेटे और शोमैन राज कपूर के भाई थे। बड़े भाई पहले ही फिल्मों में अपनी जगह बना चुके थे और शम्मी कपूर के लिए अपनी खास जगह बनाना बड़ी चुनौती थी।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान, तमन्ना किधर जा रही हो।

0: जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए।
1: पिता पृथ्वीराज कपूर के नाटक पठान में शम्मी को अभिनय करते हुए जब महेश कौल ने देखा तो उन्होंने फिल्म जीवन ज्योति के लिए नायक चुन लिया और ये किरदार बड़ा ही गंभीर था। जीवन ज्योति, शमा परवाना, लैला मजनू, मिर्जा साहिबा जैसे कॉस्ट्यूम ड्रामे वाली फिल्में करने के बाद फिल्मिस्तान की फिल्म तुमसा नहीं देखा के जरिए शम्मी कपूर नए लटके झटके के साथ चुलबुले और निराले अंदाज में आए। इस फिल्म के निर्देशक थे नासिर हुसैन।

तुमसा ने देखा हिट हुई और उनके अभिनय की एक निराली स्टाइल चल पड़ी, जो सन 1961 में फिल्म जंगली तक आते आते खूब परवान चढ़ी। फिल्म जंगली से शम्मी कपूर को मिली नई पहचान, शोहरत, पैसा और लोगों का प्यार। इस फिल्म ने शम्मी के फिल्मी करियर में सफलता का नया रंग भर दिया।

1961 से सन 1964 तक शम्मी कपूर ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया। इस दौरान आई फिल्मों पर आइए एक नजर डालते हैं। फिल्म प्रोफेसर, फिल्म कश्मीर की कली, जिसने एक बार फिर शम्मी की सफलता के बल्ले

0: यूँ कहना मुनासिब होगा कि जमाना शम्मी की धुन पर उन्हीं की ताल पर झूम रहा था, नाच रहा था और गा रहा था। फिल्म जानवर इसी दौर की फिल्मों में होती है शुमार। राजकुमार
1: होशियार

फिल्मालय की पेशकश थी फिल्म दिल दे के देखो, जिसके जरिए एक नई संगीतकार को मौका मिला। वो संगीतकार थी उषा खन्ना। फिल्म थी दिल दे के देखो। दिल दे के देखो युवा पीढ़ी की एक लटके झटके वाली फिल्म थी। युवा निर्देशक नासिर हुसैन अपने नए नए फॉर्मूलों को आजमाकर मजबूत बना रहे थे। शम्मी कपूर अपनी नई स्टाइल को फिल्मी दुनिया की खास स्टाइल बना रहे थे।

सन 1965 शम्मी कपूर के लिए गम का पहाड़ लेकर आया। उनकी जीवन संगिनी गीता दुनिया से अलविदा कह गईं। उस गमजदा दिन शम्मी इस गाने की शूटिंग कर रहे थे।

0: सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: सन 1982 में उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का पुरस्कार। सन 1967 में

उन्होंने नीला देवी से विवाह कर लिया। एक युग समाप्त हो रहा था, सफलता की चमक धुंधली पड़ रही थी। इसी दौर में अंदाज, मनोरंजन, बंडलबाज और विधाता जैसी फिल्में आईं। सन 1987 में शम्मी कपूर को कंप्यूटर की ओर रुझान हुआ। सन 1995 में उन्होंने इंटरनेट यूजर्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसी साल उन्हें मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट फिल्म फेयर पुरस्कार। शम्मी कपूर अपने खानदान के रोशन चिराग रणवीर कपूर के साथ नजर आए इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में। ये इनकी आखिरी

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग कार्यक्रम सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को रानी का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, बिल्कुल खुश होंगे, है ना? हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए हमारे साथ अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सुविचार के साथ। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले हम सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। यह देश की शान, एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। इसके तीन रंग और चक्र हमेशा देश के लिए जीने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तिरंगे का इतिहास हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। केसरिया रंग यह देश की ताकत, साहस और त्याग को दिखाता है। सफेद रंग यह शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग यह देश की खुशहाली, विश्वास और उर्वरता को दर्शाता है। अशोक चक्र इसमें चौबीस तीलियां हैं। यह गति, प्रगति और धर्म के रास्ते पर चलने का संदेश देता है। देश के सम्मान और एकता को बनाए रखना, नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाना, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद रखना।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: श्रोताओं, प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। यह एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है।

0: 14 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी सही। विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: श्रोताओं, हर साल 14 अगस्त को यानी आज ही के दिन भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य 1947 के भारत विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों और विस्थापित हुए नागरिकों के दर्द व बलिदान को याद करना है।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और भी बहुत सारी जानकारी की बातें हैं जिसे हम अपने इस कार्यक्रम में आपसे करेंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि जिंदगी की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला गया तो फिर दुनिया की सारी संपत्ति से भी उसे खरीद नहीं सकती। इसलिए समय को पहचानिए और समय रहते हर एक कार्य को कीजिए और आगे बढ़िए। फिलहाल सुनते हैं खूबसूरत सा ये गाना।

0: श्रोताओं, बरसात के मौसम में मच्छरों के काटने से उत्पन्न होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया आदि के मामले काफी हद तक बढ़ जाते हैं। मच्छरों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का एक आम लक्षण बुखार का आना है। ऐसे में इस समय बुखार आने के 3 दिनों के बाद इसकी जांच जरूर करानी चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि यह बुखार किस कारण से है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो घर पर ही रहकर इलाज करना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर से नहीं मिलते हैं तो परेशानी में पड़ जाएंगे, क्योंकि तुरंत इलाज नहीं कराए तो फिर अधिक परेशानी होगी और सभी परेशान होंगे। इसलिए अपने डॉक्टर से मिले और सही इलाज कराएं। फिलहाल हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं खूबसूरत सा ये गाना।
1: ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब।

श्रोताओं, जीवन में हमें खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने जीवन की हर एक क्षण को हंसते खिलखिलाते हुए जी सकते हैं। तो भाई, स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। गंदगी से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है जो मानव के विकास में बाधा डालती है, इसलिए स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छता को अपनाकर ही हम बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। हमें अपने घर के अलावा आसपास की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए।

श्रोताओं, हम आपको बता दें आज की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 2013 ईस्वी में मिस्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 638 लोग मारे गए थे। 2006 में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर इसराइल और दक्षिणी लेबनान में 5 सप्ताह से जारी संघर्ष थमा था। आज ही के दिन इराक के कहतानिया में बमबारी में 400 लोग मारे गए थे। आज ही के दिन 2002 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर के चुनाव को ढोंग करार दिया था। आज ही के दिन पाकिस्तानी सेना ने राष्ट्रपति मुजीब उर रहमान का तख्ता पलट 1975 में हुआ था। आज ही के दिन 1971 में बहरीन को 110 वर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। आज ही के दिन मुरारजी देसाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किए गए थे। आज ही के दिन 1947 में आज ही के दिन भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना।

इसी गीत के साथ हेलो हजारीबाग कार्यक्रम से रानी को दीजिए अनुमति। यह आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 10:58 और 38 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई।

0: चंदन दास की आवाज में निदा फाजली का कलाम आपने सुना। विविध भारती से रंग तरंग सुन रहे हैं आप। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

सूरज सनीम की ये रचना राजेश रोशन थे मौसिकार, तलत महमूद, तलत अजीज की आवाज थी। फिल्म का नाम था डैडी। इससे पहले पंकज उदास की आवाज में सईद राही का कलामा आपने सुना।

0: सुदर्शन फकीर का कलाम था चित्रा सिंह की आवाज।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: आप सुन रही

विविध भारती और ये कार्यक्रम है रंग तरंग। कलाम गुलजार का, मौसिकार भूपिंदर सिंह, आवाज मिताली सिंह की, एल्बम है चांद परोसा है।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत नामा।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के

0: घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में याद शम्मी कपूर की। आज है उनकी याद का दिन।

राजकुमार फिल्म का ये गाना था। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। एक बार फिर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर, फिल्म का नाम ब्रह्मचारी।

महफिल शमी कपूर की यादों की, और ये तमाम गाने जिनमें है मस्ती बेफिक्री। रेबेल शमी कपूर, मस्ती की बौछार। हंसते जयपुरी, शंकर जयपुरी।

होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न ला

विविध भारती पर यादों की महफिल शम्मी कपूर के गाने। जानवर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। ये गाना फिल्म का नाम तुमसे अच्छा कौन है।

पर अब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश वो फिल्म जिसे खुद शम्मी कपूर ने डायरेक्ट किया था, मनोरंजन। आवाजें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की, आनंद बख्शी के बोल आर डी बर्मन की तर्ज।

0: इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। शमी कपूर को हमारा विनम्र नमन। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

आज के इस कार्यक्रम में कौन से गाने बज सकते हैं ये बातें आपको अंदाजा लगानी पड़ती हैं। तो आज की इबारत शुरू करते हैं। ये दो लोगों की बातचीत है। मुझे बारिश पसंद है, तुम्हें? मुझे पुहार उतनी पसंद नहीं है। मुझे जगजीत सिंह पसंद है, तुम्हें? खट्टी मीठी आंखों की नशीली बोलियां। मुझे बादलों में तस्वीरें खोजना पसंद है, तुम्हें? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। पूछो, अपने पसंदीदा गाने की कोई लाइन बताओ। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, अब तुम बताओ। उस पल मौसम पे मेहंदी रच जाए। एक और बोलूं, कभी ये मेरा मन चाहे फूलों की जहां होश आए। अच्छा तो हम चलते हैं, जाता कहां है दीवाने, बादल बिजली चंदन पानी की दुनिया में। ओ साथी चल, बताओ ना कब मिलोगे, जब तुम पुकारो। भाई ये आज की इबारत है और इस इबारत में बहुत सारे गाने छिपे हैं। आप जानते हैं कि इन गानों के जरिए ही आज का ये कार्यक्रम सजेगा। तो चलिए श्रोताओं के कुछ कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं कि लगातार श्रोताओं के कमेंट्स चले आ रहे हैं और वो अंदाजा लगा रहे हैं कि आज क्या होने वाला है। एक श्रोता है जो कहते हैं कि अब मजा आने वाला है, टेक्स्ट पढ़ते ही कई गीत कानों में बजने लगे हैं और आपका मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। इसके अलावा एक और श्रोता, हर पल सवालों से घेरे लेकिन वो कौन सा गीत सुनाऊं जो पिया बस जाए तुम्हारे तन मन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज प्यारे गीतों की बारिश होने वाली है, ये इस नोक झोंक भरी इबारत से पता चल रहा है। और भी बहुत सारे कमेंट्स हम पढ़ेंगे लेकिन अभी गानों की इस फुहार की शुरुआत इस गाने के साथ। आपको बताना है इस गाने के गीतकार कौन हैं और साथ में ये भी, क्या आपके शहर में बरस रही है फुहार।

0: क्या शानदार गाना है ये, गुलजार के बोल, आशा भोसले की आवाज, खयाम की तर्ज, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब इस बारे में आए हैं और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे पता था कि ये गाना तो आज जरूरी तौर पर बजेगा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ये गीत प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ सावन के मौसम में अकेलेपन और दिल की तड़प को दिखाता है। एक और श्रोता है जो कहती हैं कि भाई मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है और आज मैं कुछ पंक्तियां लिखकर भेज रही हूं जिसे आप कार्यक्रम में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ये पंक्तियां हैं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं, सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी एक दास्तान हूं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि भाई सूरत गुजरात में रिमझिम बारिश बरस रही है, कल शाम से फिर छाए हैं बादल और मौसम सुहावना हो गया है। एक श्रोता ये बता रही है कि वो एलेक्सा पर विविध भारती सुनती हैं। हमने एक प्रोमो में भी आप सभी को ये बताया है कि एलेक्सा के जरिए कैसे विविध भारती सुनी जा सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही है कि नगमा तलाशी की जद्दोजहमत से आजाद हैं आज, ईजादे इबारत ना खुदा ने खुद ही इसे आसान बना दिया भाई, शुक्रिया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें, एक श्रोता ये लिखते हैं कि यादों की महफिल कार्यक्रम में शम्मी कपूर के शानदार गाने सुनवाए गए और ये गाने हम सभी को बहुत अच्छे लगे हैं। ये हमारे एक नहीं कई श्रोताओं की बातें हैं। एक और श्रोता का कहना है कि ये बातचीत शायद दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो धुनों के बीच हुई है। सवाल बारिश का था, जवाब किसी पुराने गाने ने दिया, बादलों में तस्वीर ढूंढते ढूंढते बात दिल तक उतर आई, कुछ बोल याद आए, कुछ लम्हे और जाते जाते उसने कहा जब तुम पुकारो, बस फिर क्या था, मुलाकात कहीं खत्म नहीं हुई, एक गीत की तरह बजती रही।
1: प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे देश को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर होगा सीधा प्रसारण। रांची में 21वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी। अस्पताल से वीडियो संदेश जारी कर छात्र नेता देवेंद्र महतो ने एकजुटता की अपील की। स्वतंत्रता दिवस पर देश के 1057 सुरक्षाकर्मी होंगे सम्मानित। झारखंड के आईजी शैलेन्द्र कुमार सिन्हा को मिलेगा राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक। केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की। अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने अपलोड की सेल्फी। और नेपाल से बासुकीनाथ राजगीर जा रही कांवरियों से भरी बस कोडरमा में खड़े ट्रेलर से टकराई, 3 श्रद्धालुओं की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का यह संबोधन आज शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इस विशेष प्रसारण के कारण आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आज अपने निर्धारित समय से पहले यानी शाम 7:15 बजे प्रसारित किया जाएगा। राजधानी रांची में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। इस बीच अस्वस्थ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश भेजकर छात्रों से एकजुट रहने की अपील की है।
1: सरकार सकारात्मक हमारी बातों को भी सुन रही है, लेकिन संपूर्ण न्याय अभी बाकी है। लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, दिशा को भटकाना चाहते हैं। भोले भाले छात्र से आग्रह करता हूं कि कृपया इस आंदोलन को ना भटकाएं और एकजुट रहें।
0: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के 1057 सुरक्षाकर्मियों को वीरता और विशिष्ट सेवा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है। इस वर्ष देश के 301 जवानों को वीरता पदक, 92 को राष्ट्रपति पदक और 664 को सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा। झारखंड के लिए गौरव की बात है कि पुलिस महानिरीक्षक शैलेन्द्र कुमार सिन्हा को उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के 8 अन्य जवानों को भी सराहनीय सेवा पदक दिया जाएगा। एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से एक्सएलआरआई में एससीएसटी उद्यमियों के लिए एक विशेष बिजनेस कोर्स शुरू किया जा रहा है। एक्सएलआरआई प्रोफेसर अरिंदम मंडल ने बताया कि इस कार्यक्रम की 1,10,000 रुपए की पूरी फीस केंद्रीय मंत्रालय वहन करेगा, जिससे यह पात्र उद्यमियों के लिए पूरी तरह निःशुल्क होगा।
2: इस प्रोग्राम के तहत हम लोग SC ST जो बिजनेसमैन है और जो भी उनके फैमिली मेंबर्स है, उनको एक 72 आवर का बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा। और इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि SC ST बिजनेसमैन का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भागीदारी बढ़े, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चिंता है और इसीलिए इस टाइप का प्रोग्राम वो टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर लॉन्च कर रहे हैं।
0: सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्षेत्र में हो रही झमाझम बारिश के बावजूद इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि तिरंगा यात्रा देश की आन बान शान का प्रतीक है।
3: देश का युवा, देशवासियों और हमारा संविधान सबको एक करने का एक प्रतीक है कि आज हमारा स्वतंत्र सेना को सम्मान तिरंगा यात्रा से हमारा सेना को सम्मान दिया जाता है। ये देशभक्ति का परिचय, राष्ट्र के हम सब एक है, संविधान एक है और यही तिरंगा यात्रा ही एक सम्मान देने का काम।
0: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ से अधिक देशवासी तिरंगा के साथ अपनी सेल्फी अपलोड कर चुके हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नागरिकों से 9 से 17 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराकर गौरव प्रकट करने का आग्रह किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news@aar.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @aarnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @aarnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में राजकीय श्रावणी मेले के 16वें दिन आज शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आज तड़के 4:15 बजे मंदिर के गर्भगृह के पट खुलते ही कांवरियों द्वारा जलार्पण का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच उपायुक्त सौरभ कुमार भवानी ने बताया कि पिछले 15 दिनों में 28 लाख से अधिक कांवरियों ने जलाभिषेक किया है और मंदिर को 3.5 करोड़ रूपये से अधिक की दान राशि मिली है।
4: कुल दर्शनार्थी शीघ्र दर्शन से आए थे, उसकी संख्या है 80,888। तो इस बार ये जो रेवेन्यू कलेक्शन भी है वो अन्य बाकी सालों से ज्यादा हुआ है। अभी तक जो कांवड़िया जल चढ़ाने आए हैं वो हमारा एस्टिमेशन जो था पूरे महीना भर में कि लगभग 55 लाख रहेगा। तो फर्स्ट 2 वीक्स में जो अभी तक नंबर थे वो उसी अकॉर्डिंग है, 28 लाख से ज्यादा है।
0: कोडरमा जिले के सतगामा थाना क्षेत्र में आज तड़के एक भीषण सड़क हादसे में 3 कांवरियों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नेपाल के रोहट जिले से आई श्रद्धालुओं से भरी यह बस बासुकीनाथ से राजगीर जा रही थी, तभी देवघर नवादा मुख्य मार्ग पर पोखर डीहा मोड़ के निकट यह सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से

0: टकरा गई। कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया है कि चालक को झपकी आने के कारण यह दुर्घटना हुई। बस में करीब 45 कांवरिया सवार थे।
1: लगभग एक दर्जन लोग यहाँ पे आए हैं जो घायल लोग हैं, उसमें से दो की मौत यहाँ हो चुकी है और एक की मौत बालक की वहीं हुई थी सदगांव में। बाकी लोग खतरे से बाहर हैं, उनका इलाज चल रहा है और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रेफर भी करेंगे। अभी वैसे हालत सब कुछ ठीक है।
0: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले, असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग आधा प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,43,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के 6 पश्चिमी जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में मूसलाधार बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। वहीं रांची, रामगढ़, हजारीबाग, खूंटी और बोकारो जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पाकुड़ में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से आज 10 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई। सिद्धो कान्हू मुर्मू पार्क से सोन जोड़ी तक आयोजित इस दौड़ को उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार लाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में सिलवंती सोरेन और बालक वर्ग में सुनील टुडू ने पहला स्थान हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे देश को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर होगा सीधा प्रसारण। रांची में 21वें दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी। अस्पताल से वीडियो संदेश जारी कर छात्र नेता देवेंद्र महतो ने एकजुटता की अपील की। स्वतंत्रता दिवस पर देश के 1057 सुरक्षाकर्मी होंगे सम्मानित। झारखंड के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा को मिलेगा राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक। केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान से की जुड़ने की अपील। अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने अपलोड की सेल्फी। और नेपाल से वासुकीनाथ राजगीर जा रही कांवरियों से भरी बस कोडरमा में खड़े ट्रेलर से टकराई, 3 श्रद्धालुओं की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये प्रेम पुजारी फिल्म का गाना है, 1970 में ये फिल्म आई थी। नीरज के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत है। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ एक गीत नहीं, प्रेम की वो खूबसूरत इबारत है जिसमें प्रकृति भी बोलती है और मन भी बोलता है। फूलों के रंग जैसे भावनाओं के रंग बन जाते हैं। इस गीत को सुनना जैसे किसी पुराने खूबसूरत खत को पढ़ने जैसा है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग कुछ चिट्ठियों को सजाकर तरह तरह की रंग वाली स्याही से लिखते थे, पर हम तो अपनी स्कूल कॉलेज के दिनों में जो नोट्स तैयार करते थे, जो फाइनल कॉपी तैयार करते थे, उसमें सुडौल अक्षरों से लाल या ग्रीन पेन से उसकी हेडिंग लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता लिख रही हैं कि शादी से पहले अपने मायके में गर्मियों की छत पर सोते थे, तब 7 तारों का एक समूह देखकर अपने परिवार के सभी लोग उस समूह को जोड़कर देखते थे, क्योंकि हम परिवार में 7 लोग थे। ये जो यादें हैं ये बहुत याद आती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विविध भारती पर मेरी चिट्ठी तो नहीं शामिल हुई, लेकिन फेसबुक के जरिए डिजिटल चिट्ठियां शामिल हो जाती हैं। एक और श्रोता वही याद लिख रहे हैं कि कैसे बचपन में छत पर सोते थे और सप्तऋषि ढूंढा करते थे, तब तारे बहुत स्पष्ट नजर आते थे और बहुत सारे, लेकिन आज तो कृत्रिम रोशनी ने जैसे तारों को लील लिया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमने विविध भारती के मनचाही गीत कार्यक्रम में चिट्ठी लिखी है, लेकिन आज तक शामिल नहीं हुई है, हमें इंतजार है। इतनी सारी चिट्ठियां आ रही हैं और हर रोज इन चिट्ठियों को छांटा जा रहा है और तैयार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी चिट्ठी शामिल हो जाएगी। एक एक चिट्ठी हमारी टीम मिलकर छांट रही है, ये बहुत गजब का काम है और सब लोग कर रहे हैं मिलकर। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छत पर नहीं बल्कि चारपाई पर खुले आसमान के नीचे सोते थे और तारों को गिनते हुए पता नहीं कब नींद आ जाया करती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे बारिश पसंद है, बारिश की फुहारें भी पसंद है, पर इतनी ज्यादा बारिश पसंद नहीं है कि सैलाब आ जाए और जान माल की आंधी हो। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब तारे टूटते थे तो कुछ विष मांगा करते थे, 5 फल का नाम जल्दी से लेते थे, तरह तरह की विश्वास थे टूटे हुए तारों को देखने को लेकर। इसके अलावा कुछ और इतने सारे श्रोता हैं जिन्हें सप्तऋषि तारामंडल देखने का शौक था और बचपन की उनकी याद जैसे आज के इस कार्यक्रम के जरिए ताजा हो गई है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मां से पूछते थे कि कितने तारे हैं, तो मां हमेशा जवाब देती थी आसमान में कुल 3000 तारे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि बादलों में नीला आसमान सफेद बादलों की चित्रकारी करता है और आकृति कुछ ही सेकंड में बदल जाती है। इसके अलावा बादलों के बारे में कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी हैं और बहुत सारे श्रोता हैं जो ये इस कार्यक्रम के जरिए अपनी बहुत सारी पुरानी यादों को ताजा कर रहे हैं। हर दिन यूं होता है कि कभी ना कभी पुराने किसी वक्त की याद आती है या गुजरे दौर के किसी व्यक्ति की याद आती है। आज सुबह से आपको किसकी याद आ

एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में विविध भारती पर मिली फिल्म का विज्ञापन आया करता था और उसमें कहा जाता था अमिताभ बच्चन को जया भादुड़ी मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर कार्यक्रम हमेशा की तरह बहुत शानदार है, आज की इबारत बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली है। और इसके अलावा उन्होंने एक गाने की फरमाइश भी की है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुबह से मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, कल 15 अगस्त को उनका जन्मदिन है, आज वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं बता दे तेरी यादें किस कोने में सुखाऊं, बारिश बाहर भी है और अंदर भी। इसके अलावा एक और श्रोता है लिखते हैं कि सुबह सुबह जब मैंने फेसबुक खोली टेक्स्ट देखा तो उसमें यूनुस जी का नाम था, बस काम करते करते फटाफट जोरदार कमेंट पढ़ने वाले यूनुस जी की याद आ रही थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सुबह से मुझे अपने भारत देश की याद आ रही है, अपने देश में नहीं हूं और स्वतंत्रता दिवस के माहौल को याद कर रहा हूं। एक और श्रोता लिखती है कि राखी का त्यौहार आ रहा है और मुझे अपनी बहन की याद आ रही है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि हमें तो बस आपके कार्यक्रम की याद आती है, लिखते हैं और पोस्ट आए और कुछ लिखें। एक और श्रोता अपनी मम्मी को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि 45 साल पहले कितना बढ़िया समय था, हाथ का पंखा होता था, कोई रिश्तेदार आता था तो छत पर ही लेटा करता था और तारे गिनते थे। एक और श्रोता कहते हैं कि बचपन में हम पोस्ट कार्ड को कबूतर का आकार देकर अपने चाचा को भेजा करते थे। एक और श्रोता है जो आसमान में तारे देखना पसंद करती रही हैं और उनका कहना है कि मुझे लगता है कि एक दूरबीन लूं और सितारों की रहस्यमय दुनिया की तरफ चली जाऊं। एक श्रोता है जो आसमान में ध्रुव तारे को हमेशा देखती और ताकती रही हैं। तो ये सब बातें हमारे श्रोताओं की हैं। एक और श्रोता का कहना है कि आज सवेरे अचानक पापा की याद दिल पर छा गई, उनको गए 7 साल हुए, पापा को कॉल करके बात करूं ऐसा एक पल के लिए हुआ पर फिर संभल गई, मन भारी हो गया जैसे काले बादल छा गए। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गानों के बीच की लाइन देखकर पढ़कर गाना जरूर याद आता है पर कई बार उसकी पहली लाइन में गड़बड़ हो जाती है, दूसरे किसी गाने से मिक्स हो जाता है। जब आप कार्यक्रम में गाना सुनाते हैं तो पता चलता है अच्छा ये गाना था। और ये हमारे तमाम श्रोताओं के कमेंट्स और अब एक बहुत ही मजेदार अद्भुत गाना ललित गाना आ रहा है। इस गाने के गीतकार का नाम आपको बताना है। जगजीत सिंह के फिल्मी गानों में आपका सबसे प्रिय गीत कौन सा है और जगजीत सिंह की गजलों में आपके दिल के करीब कोई एक गजल कौन सी है।

भाई जगजीत सिंह के बारे में पूछा एक श्रोता है, उन्होंने पंकज उदास के बारे में बताया ये क्या हो रहा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि होश वालों को खबर क्या, ये बहुत पसंद है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, ये बहुत पसंद है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि जगजीत सिंह की गजलों की किताब मैंने 2012 में कानपुर रेलवे स्टेशन से खरीदी थी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये गजल बहुत पसंद है और मुस्कान के पीछे छिपे हुए दर्द को बताती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका कहना है कौन कहता है मोहब्बत की जबां होती है और झुकी झुकी सी नजर उन्हें बहुत पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें होठों से छू दो तुम पसंद है। एक श्रोता है जिन्हें पसंद है कोई पास आया सवेरे सवेरे और कोई ये बता दे कि वो तन्हा क्यों है। एक और श्रोता है जिन्होंने मेरी आंखों ने चुना है तुझे देखकर, ये वाली रचना पसंद है। इसके अलावा कई और श्रोता है तुमको दिखा तो ये ख्याल आया, कोई फरियाद, ये सब पसंद है। ये दौलत भी ले लो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, ये सब अलग अलग श्रोताओं को पसंद है। उसके अलावा एक पंजाबी गीत है सावन का महीना, ये कुछ श्रोताओं को पसंद

भाई एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि मैंने प्यार किया उन्होंने 100 बार देखी और कयामत से कयामत तक जो है 20 बार देखी। इसके अलावा और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता ये कहती हैं कि हॉल में एक बार देखी और दूरदर्शन पर आई तब भी देखी, यानी उन्होंने कम बार देखी है। उसके अलावा 10 बार कयामत से मैंने प्यार किया देखी एक श्रोता ने और कयामत से कयामत तक 2 बार देखी है। और इसके अलावा 30 दिन तक लगातार एक श्रोता ने देखी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि इंदौर की एलोरा टॉकीज में कयामत से कयामत तक देखी थी। 9 बार मैंने प्यार किया देखी है एक श्रोता है उन्होंने, और मैंने प्यार किया एक और श्रोता है उन्होंने 11 बार देखी है और कयामत से कयामत तक 2 बार देखी है। 20 बार एक श्रोता ने देखी है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा तादाद यही है क्या, अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा।

इस बार देखी ये सबसे ज्यादा है भाई, मेरी तादाद कम रह गई, मैंने तकरीबन 7 बार देखी। और अब आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने में महिला स्वर किसका है, महिला स्वर किसका है ये बताइएगा।

0: हाँ क्यों, क्या किया है मैंने?
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से।
0: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

सारे श्रोताओं ने पहचान लिया कि ये सुलक्षणा पंडित की आवाज है और हेमा मालिनी पर ये गाना फिल्माया गया है। एक श्रोता है जो कहते हैं कि मेरी लिस्ट का चौथा गाना शामिल हो गया आज के इस कार्यक्रम में, और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि इन सब बातों को छोड़िए, जब मैं पांचवी में थी तो लव स्टोरी 25 बार देखी थी और अपनापन तो जिस दिन लगी थी उसी दिन 3 सप्ताह 25 पैसे की टिकट में देखी थी। भाई वाह वाह वाह। तो एक श्रोता और हैं जो कहते हैं कि मैं सबसे टॉपर हूं, मैंने प्यार किया एक बार देखी, कयामत से कयामत तक आज तक नहीं देखी। हाँ भाई आप टॉपर हैं। उसके अलावा और भी कई श्रोता हैं जिन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं। मेहसाणा जिले के वीजापुर में भाग्योदय थिएटर में यह फिल्म देखी थी जब वो 6वीं क्लास में थे। तो भाई एक श्रोता है जिन्होंने 100 बार फिल्म देखी है, अब क्या कहा जाए, सेंचुरी मार ली है इन्होंने, ये तो गजब की बात है। इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं की बातें हैं। अब जो गाना आ रहा है वो वक्त की बात करता है। हमें ये बताइए कि किन लोगों के साथ आपको ऐसा लगता है कि वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, और क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ आपको लगता है कि ये वक्त बीत क्यों नहीं जाता। किन लोगों के साथ वक्त की रफ्तार तेज लगती है और किन लोगों के साथ धीमी।

0: एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि रेडियो सुनते सुनते वक्त ही नहीं कटता। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रोग्राम जब आप करते हैं तो पता नहीं चलता कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं पुणे से अपने गांव भुसावल जाता हूं, माता पिता के साथ ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर जाना चाहिए लेकिन बिजली की फुर्ती के साथ बीत जाता है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि मेरी छोटी बहन है बातूनी, दादी अम्मा, उसके साथ समय का पता नहीं चलता और यूनुस जी आप शताब्दी एक्सप्रेस हैं, आपके साथ समय बहुत तेजी से बीत जाता है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि पतिदेव के साथ समय पंख लगाकर उड़ जाता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम सुनते हुए मुझे लगता है कि वक्त थम जाए। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट है लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ, 1:50 पर ये हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, ऐसे कैसे कह सकते हैं।
1: कहाँ
0: हम कहीं नहीं जा रहे, अभी बहुत सारे गाने सुनाएंगे, एटलीस्ट 2-3 गाने तो आपको सुनाएंगे, उसके बाद ही हम कहीं जा रहे हैं। पर इस गाने का इस्तेमाल आम बातचीत में आप कब करते हैं और पिछली बार कब किया था ये जरूर बताइएगा।
2: अरे अरे
0: और इस मौसम में कहां पिकनिक मनाने जाने का मन कर रहा है आपका, कुछ इस तरह।

बहुत सारे श्रोता हैं जिनका मन पता नहीं कहां कहां जाने का कर रहा है। किसी श्रोता को जाना है कोंकण, किसी को मुंबई आना है। कोई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें इछावर के पास कालिया देव की एक बहुत बड़ी नदी है, वहां पिकनिक मनाने का मन कर रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, वहां श्रोता सम्मेलन हो रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता कहते हैं, अरे इतनी जल्दी 2 बज गए क्या? अरे नहीं, अभी नहीं बजे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और अभी तो कुछ गाने सुना रहे हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि उन्हें सब लोगों का कहीं ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है और यहां स्टूडियो में मैं आपको सुना रहा हूं ये गाना। मुकेश की आवाज है। बताइएगा ये गाना किसने लिखा है।

देखिए ये गाना बज ही रहा था कि हमारी एक श्रोता कहती है आज बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था लेकिन अभी जोरदार बारिश शुरू हो गई है तो वो रुक गई है। मुझे शकील आजमी का एक शेर याद आ रहा है कि खुद को ना यूं बचाया कर, बारिश आए तो भीग जाया कर। और ये किस फिल्म का गाना है जिसके जरिए मैं आपसे साइन ऑफ करूंगा, इजाजत लूंगा, बताइए।

भाई हम कहीं नहीं जा रहे। 2:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आपसे मुलाकात करेंगे और अभी तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यानी जाता कहां है दीवाने वाला गाना हम पर लागू नहीं हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। आज की ये इबारत दो लोगों की रूमानी बातचीत वाली इबारत थी। हमें उम्मीद है कि इबारत और उसमें बने हुए गाने आपको पसंद आए हैं। अब नमस्ते।

किस फिल्म का शीर्षक गीत है जो हम बजा रहे हैं? किस फिल्म का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हम बजा रहे हैं?

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 41वीं कड़ी।

बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में श्री अरविंद का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक उत्तम शिक्षक, क्रांतिकारी और संगठक, साथ ही प्रखर राष्ट्रवादी लेखन करने वाले लेखक संपादक के रूप में श्री अरविंद की ख्याति बढ़ी थी। इस काल में उनका योग मार्ग और अध्यात्म का अध्ययन भी चल रहा था, परंतु 1908 में अलीपुर की जेल में बंदी रहने के दौरान अरविंद का अध्यात्म की ओर झुकाव और भी अधिक बढ़ गया। 6 मई 1909 को अरविंद रिहा हुए। श्री अरविंद घोष से योगी अरविंद की ओर उनकी यात्रा

0: और श्री अरविंद का पांडिचेरी चले जाना, इन कारणों से गरम दल आंदोलन काफी धीमा पड़ गया। अंग्रेजों की राजधानी भी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई।
1: लोकमान्य तिलक की रिहाई के बाद एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ और सभाओं में फिर से वंदे मातरम की गर्जनाएं होने लगी। सड़कों पर, न्यायालयों में, कारागारों में वंदे मातरम का नारा लगाते समय जनता को किसी का भी भय नहीं रहा। 1920 में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद गांधी युग का उदय हुआ। देशव्यापी आंदोलन को अलग स्वरूप मिला। स्वयं गांधी जी वंदे मातरम के प्रेमी थे, पर कुछ समय बाद उनके विचार बदल गए, ये अलग बात है। अहिंसक आंदोलन के काल में भी देश के विभिन्न प्रांतों में क्रांतिकारियों की सशस्त्र गतिविधियां रुकी नहीं थी। 1927 के 18 सितंबर को राजेंद्र लाहिड़ी, 19 दिसंबर को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और 20 सितंबर को रोहन सिंह को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। इन चारों पर लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने का आरोप था। काकोरी षड्यंत्र के नाम से ये क्रांतिकारी हमला प्रसिद्ध है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कवि थे। सरफरोशी की तमन्ना, ये प्रसिद्ध गीत उन्हीं का है। वंदे मातरम शब्दों वाला उनका एक और गीत भी प्रसिद्ध है।
0: कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, है वतन के वास्ते अक्सीर वंदे मातरम। कत्ल की हमको न दे धमकी हमारे सब्र से, कत्ल की हमको न दे धमकी हमारे सब्र से, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम, तेग पर हो जाएगा तहरीर वंदे मातरम।
1: जेल में रहते हुए उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी वो बाद में प्रकाशित हुई और उस पर तुरंत ही अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। एक प्रखर क्रांतिकारी और कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए ही फांसी स्वीकार की।

काकोरी षड्यंत्र की तरह ही एक और चर्चित षड्यंत्र है वर्तमान बांग्लादेश में स्थित चिटगांव शस्त्रागार पर हमला। बंगाली क्रांतिकारी सूर्यसेन दा और अनंत सिंह के नेतृत्व में 17-18 वर्ष के युवक युवतियों ने चिटगांव में अंग्रेजी फौज से युद्ध ही किया। क्रांति के लिए पैसा तो लगता ही है, पर हथियारों की कमी पूरी करने के लिए ही अंग्रेजों के शस्त्रागार पर हमला किया जाए, यही मुख्य उद्देश्य था। इस छोटे युद्ध में कुछ क्रांतिकारी शहीद हुए तो बहुत से पकड़े गए। उन पर मुकदमा चलाकर सूर्यसेन दा, तारकेश्वर और कल्पना दत्त को फांसी की सजा सुनाई गई। उनमें से कल्पना दत्त की सजा बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई। 12 जनवरी 1934 की रात सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाया जा रहा था। दूसरे दिन सुबह उनकी फांसी की सजा को अंजाम दिया जाना था। सूर्यसेन दा को कोठरी की ओर ले जाते समय आसपास के राजबंदियों ने वंदे मातरम का जयघोष किया। सूर्यसेन दा भी वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इससे भड़के हुए अंग्रेज अधिकारियों ने सभी को बेरहमी से पीटा, पर वंदे मातरम का घोष बढ़ता ही गया। उस पिटाई के कारण सूर्यसेन दा बेहोश हो गए। उसी बेहोशी की अवस्था में सूर्यसेन दा को फांसी पर चढ़ाया गया। ये तो अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। सूर्यसेन दा की फांसी के बाद बंगाल में सर्वत्र जन आक्रोश उमड़ पड़ा। वंदे मातरम के शहीदों में एक और क्रांतिकारी का पुष्प अर्पित हो गया।

0: 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता मिलने तक अनेक छोटे बड़े संघर्ष या आंदोलन खड़े हुए, उनमें से कुछ सशस्त्र तो कुछ निशस्त्र आंदोलन थे। होम रूल आंदोलन, असहकार आंदोलन, नमक सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, इन शांतिपूर्ण निशस्त्र लड़ाइयों में भी मुख्य नारा वंदे मातरम ही था। क्रांतिकारी आंदोलन में इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे आगे आए। तथापि भगत सिंह ने 26 अप्रैल 1929 को दिल्ली कारागार से पिता के नाम भेजे पत्र में प्रणाम शब्द की जगह वंदे मातरम शब्द लिखे थे। लाला हरदयाल, आचार्य काका कालेलकर, जमना लाल बजाज, महादेवी वर्मा, आचार्य विनोबा भावे, इनके पत्रों में भी वंदे मातरम शब्द सबसे ऊपर होते थे। चंद्रशेखर आजाद के पत्रों में भी आरंभ में वंदे मातरम लिखा होता था। असहयोग आंदोलन के बाद के खिलाफत आंदोलन के काल में भी वंदे मातरम के नारे लगते ही थे। खिलाफत के मंच से मुस्लिम नेताओं का भी वंदे मातरम को कोई विरोध नहीं था।
1: आनंद मठ उपन्यास में मुस्लिम विरोधी वर्णन नवाब के अंधाधुंध निरंकुश शासन के बारे में और किसी भी प्रकार के अनुशासन को न मानने वाले मुस्लिम सैनिकों के इतिहास के संदर्भों को लेकर ही किए गए थे। बंकिम चंद्र जी के मन में मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में कोई भी पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण नहीं था। बंग दर्शन के 1874 के पौष माह के अंक में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में उन्होंने लिखा था,
2: बंगाल केवल हिंदुओं का प्रदेश नहीं है, वो हिंदू मुसलमानों का प्रदेश है। आज हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो गए हैं, वे मन से भी एक नहीं है, पर बंगाल की भलाई के लिए हिंदू मुस्लिमों में एकता होना आवश्यक है। जब तक उच्च वर्ग के मुसलमानों में बांग्ला उनकी भाषा नहीं है, वे किसी परदेश में रह रहे हैं, ऐसी भावना रहेगी तब तक वे बांग्ला न लिखेंगे और न सीखेंगे, केवल उर्दू फारसी में ही वे काम चलाते रहेंगे। तब तक एकता नहीं हो पाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की नींव ही भाषा की एकता है।
1: बंकिम चंद्र जी की यह भविष्यवाणी 1905 के बंगाल के विभाजन के आंदोलन के समय सच साबित हुई। बंकिम बाबू को अपेक्षित हिंदू मुस्लिम एकता इस आंदोलन में दिखाई देने के कारण ही बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन सफल हुआ। 1905 में थोपा गया बंगाल का विभाजन बाद में 6 वर्षों के भीतर अंग्रेजों को इसी एकजुट लड़ाई के कारण रद्द करना पड़ा।
0: प्रारंभिक काल में वंदे मातरम के प्रति आदर होने के कारण वंदे मातरम के उर्दू में भी अनुवाद हुए। काजी अब्दुल गफ्फार, सीमाब अकबराबादी, कवि भानु जैसे अनेक लोगों के उर्दू में किए गए अनुवाद उर्दू पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए। उनमें से एक उर्दू अनुवाद ये है।

0: पर आगे चलकर परिस्थिति बदल गई। वंदे मातरम का दबे स्वर में ही सही विरोध होने लगा।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: ये थी वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की 41वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और ममता सिंह, सहभागी कलाकार यूनुस खान, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
4: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
3: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
4: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
3: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
4: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
3: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
4: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सुनिए समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
6: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा, इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर

0: चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में 500 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए

0: केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
1: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
2: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसलकर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मजाज लखनवी की रचना।

सह न सकोगे रह न सकोगे कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। आ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप विविध भारती से सुन रही हैं। अब उजाला फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का है।

बैठे कहीं छाव में, हाँ आज पिकनिक सही। ऐसे ही दिन की सदा हमको तमन्ना।

0: सलीम जी की बोल थी शंकर जयकिशन की तर्ज मनाडे और साथियों की आवाज दी। फिल्म का नाम था उजाला और अब्दुल दे की देखो फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें मजू सुल्तानपुरी की बोल संगीत उषा खन्ना का।
1: थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करार दो एकम दो। दो एकम दो।

0: देना देना मेरे हाथ में हाथ शादी ना हुई तो कोई रोएगा बेचारा शादी ना हुई तो कोई रोएगा बेचारा
1: दो ही थम दो अरे तू सुनने चाह

0: husband and wife.
1: कबीर सेन की आवाज फिल्म का नाम बॉयफ्रेंड, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन की तरह से।

दिल मिलाने के दिन नहीं दूर जाने के दिन, ये है पास आने के दिन। देखो ना जाओ ऐ जाने मन, दिल ना दुखाओ ऐ जाने मन।

दिल की छुपती है क्या जो हमसे छुपाते हो तुम, मोहब्बत में दे देंगे जान किसे आजमाते हो तुम। देखो न जाओ ऐ जाने मन, दिल ना दुखाओ ऐ जाने मन, हमसे नजर तो मिलाओ एक दफा मुस्कुराओ। देखो न जाओ।

मोहब्बत बुरी चीज है तो हम भी है शायद बुरे, मगर ये शराफत है क्या कि दिल लेके चलते बने। देखो न जाओ ऐ जाने मन,

0: ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में था, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। अब मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का लिखा शंकर जयकिशन का
1: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का यह संबोधन आज शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इस विशेष प्रसारण के कारण आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आज अपने निर्धारित समय से पहले यानी शाम 7:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। देश कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से समारोह की अगुवाई करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पुष्प वर्षा के बाद प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हजारीबाग में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन तिरंगे के महत्व को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है और इसे पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हजारीबाग की धरती से स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कई सेनानी जुड़े हैं।
2: राष्ट्र निर्माण में मेरे दादाजी के महत्व को इस रूप में आंका जा सकता है कि अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने राष्ट्र की आजादी के लिए कुर्बानी कर दी। अभी भी हमारे जीवन में तिरंगा का वही महत्व है और हर घर में तिरंगा, जन जन का तिरंगा हमेशा लहराते फहराते रहे, इसी कामना के साथ हम उनके आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेते रहे हैं।
1: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें 40 सवाल हैं। इनमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए हादसे में झारखंड के खूंटी, गुमला समेत कई जिलों के श्रमिक फंस गए हैं, जिनके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात कर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी का भरोसा मांगा। झारखंड सरकार ने मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3456-526 और व्हाट्सएप नंबर 9470-1-32591 और एक नंबर है 9431-33-6472 और 9431-33-6427 जारी किए हैं। राजधानी रांची में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी है। इस बीच अस्वस्थ छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश भेजकर छात्रों से एकजुट रहने की अपील की है।
3: सरकार सकारात्मक हमारी बातों को भी सुन रही है, लेकिन संपूर्ण न्याय अभी बाकी है। लेकिन कुछ लोग इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, दिशा को भटकाना चाहते हैं। भोले भाले छात्र से आग्रह करता हूं कि कृपया इस आंदोलन को ना भटकाएं और एकजुट रहें।
1: कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान पलामू समेत झारखंड में बड़े पैमाने पर हुई जंगलों की कटाई के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सीआईडी को दोबारा जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने जांच की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। यह अवमानना याचिका पलामू के सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश कुमार सिंह ने दाखिल की है। जमशेदपुर में खेले जा रहे नवल टाटा हॉकी झारखंड जूनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबलों में एनटीएचए ने रांची को 5-2 से और सिमडेगा ने खूंटी को 4-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहले सेमीफाइनल में रांची के निकोलस और दूसरे में सिमडेगा के असीम एका को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल में एनटीएचए का सामना सिमडेगा से होगा, जबकि तीसरे स्थान के लिए रांची और खूंटी आमने सामने होंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। उम्र को अगर केवल वर्षों में गिना जाए तो शायद जिंदगी छोटी बड़ी लगने लगे, लेकिन अगर उसे मुस्कुराहटों, अनुभवों, रिश्तों और खूबसूरत पलों में गिना जाए तो हर उम्र अपने आप में एक खूबसूरत मौसम है। मन में उत्साह हो, आंखों में चमक हो और दिल में कुछ नया करने की चाह हो तो जिंदगी हर सुबह एक नए रंग में हमारे सामने आ खड़ी होती है। जिंदगी का असली सौंदर्य इस बात में नहीं कि हमने कितने साल जिए, बल्कि इस बात में है कि हमने उन सालों में कितनी जिंदगी जी है। चलिए देखते हैं आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे बातें करने वाली है। अरे वाह, तो खत्म हुआ इंतजार, अब सुनते हैं हमारी पहली पहली कॉलर को और जानते

0: नहीं मैडम, वो सब स्कूल में से सब तैयारी करवाते थे, सब मेरे को कुछ नहीं कर, मेरे को खाली उनके कपड़े का, शूज का, ये सब अच्छे से तैयार करके भेजना था।
1: हाँ, यानी सुबह सुबह जल्दी
0: उठना। हाँ, टाइम पे उठा के भेजना पड़ता था बस। वो सुबह जल्दी नहीं उठते थे तो उनको टाइम पे तैयार करके और उसके पापा के साथ भेजना पड़ता था उस दिन।
1: तो अभी भी तो आपके जो नाती पोते हैं आपने बताया, तो उनके लिए भी आपके बच्चे तैयारी करते होंगे अब, है ना?
0: करते हैं ना मैडम।
1: तो ये जो यादें होती है ना, जैसे अपने राष्ट्रीय त्योहार होते हैं ना, उनकी यादें सच में बहुत ही अच्छी होती हैं, हमें हर एक को होती हैं, है ना? तो पहले तो जैसे क्या क्या चीजें मिलती थी, है ना, तो हम इंतजार करते थे कि जब 15 अगस्त आ रहा है ना, या 26 जनवरी आ रही है।
0: शूज, दिन, ये सब तैयार करके रखने पड़ते थे जब हम पढ़ने जाते थे तो। अभी हमारे
1: पहले
0: पास
1: से
0: नहीं होते थे तो लेके आते थे, नहीं मम्मी हमको चाहिए ये,
1: एकदम चमकती हुई ड्रेस होनी चाहिए,
0: चमकती हुई
1: यूनिफॉर्म।
0: ड्रेस प्रेस करवा के लाते थे।
1: बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें रहती
0: अच्छी
1: हैं।
0: अच्छी यादें। और एक उमंग सा होता था
1: बिल्कुल,
0: कि हम अच्छे से तैयार होके जाएंगे।
1: हाँ, क्योंकि सब बच्चे उसी तरह से आएंगे। और जो ये राष्ट्र के जो त्योहार होते हैं ना, ये समझिए सही मायनों में त्योहार होते हैं पूरे देश के ना, सब
0: तो पूरे
1: लोग
0: देश
1: इसमें
0: के
1: भाग
0: लिए
1: लेते हैं। तो
0: बोले,
1: बताइए।
0: आज आज के दिन आप मेरा ये गाना दे दोगे तो भी अच्छा है।
1: हाँ, आप इस लाइन को आप
0: दिल
1: गुनगुना के बता दीजिए फिर हमें।
0: दिया है जान दी देंगे ये वतन तेरे लिए।
1: वाह, क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम
0: आप
1: सुनवाते
0: ये
1: हैं,
0: गाना दे दीजिएगा
1: हाँ
0: मेरा।
1: सुनवाते हैं आपको, आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी,
0: तो आप कौन बोल रही हैं?
1: नमस्ते। मैं बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप। सनप्रभा, आप बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ जी, अभी शादी नहीं हुई है, घर में हूँ।
0: अच्छा,
1: घर का कामकाज करती हूँ, आकाशवाणी सब भी आकाशवाणी का केंद्र सुनती हूँ,
0: हाँ।
1: केंद्र का प्रोग्राम सुनती हूँ, और फोन इन को मैं जुड़ जाती हूँ, श्रोताओं के साथ भी जुड़ जाती हूँ,
0: अच्छा,
1: तो काम काज के साथ मनोरंजन भी हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है जी
0: बिल्कुल।
1: आकाशवाणी का।
0: मनोरंजन जब होता है ना, तो काम और आसान हो जाता है ना, और
1: जी
0: थोड़ा
1: जी जी
0: जल्दी होता है, या हमें पता ही नहीं चलता काम कब हो जाता है।
1: काम कम खत्म हो जाता है, पता ही नहीं
0: हाँ।
1: चलता, बहुत अच्छा लगता है
0: तो ये
1: योगदान
0: बताइए
1: करने।
0: सन प्रभा जी, आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: जी मुझे कामकाज के साथ साथ गाने सुनना, वो गाने, पुराने गाने मत तो बहुत अच्छा लगता है कि पुरानी फिल्मी का गाने सुनना अच्छा लगता है। तो फिर वो भी मेरी साहित्य में भी जरा रुचि है,
0: अरे वाह।
1: मैं कविता वगैरह लिखती हूँ, मुझे ओडिया में, संबलपुरी में
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छा लगता है ये सब
0: तो ये
1: करना
0: तो बहुत अच्छी बात है, आप साहित्य से जुड़ी हैं, आप कविता लिखती हैं,
1: जी।
0: कितनी अच्छी बात है ना। अपने विचारों को व्यक्त करने का आपके पास एक तरीका है ना, कविता
1: जी
0: के
1: जी
0: माध्यम से या कहानी के माध्यम से, है ना। बहुत अच्छी
1: जी जी
0: चीज है ये। और साथ ही ये बताइए कि तो आपको कौन से जो लेखक हैं या कौन आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जिनकी किताबें आप पढ़ना पसंद करती हैं?
1: जी हमारे तो उड़ीसा का लेखकों का लिखना अच्छा लगता है, हमारे जो हम उड़ीसा में हमारी प्रतिभा है, बहुत प्रसिद्धि है उनकी, और उनकी उपन्यास में बहुत अच्छा लगता है, जैसे जाज्ञसेनी अब वगैरह बहुत अच्छा लगता है, और बहुत से हैं
0: नहीं, बिल्कुल,
1: उनका
0: बहुत अच्छी
1: बहुत
0: बात है।
1: अच्छा।
0: देखिए, आप जानती हैं, आप पढ़ती हैं, तो आपको मालूम है उनके बारे में, उनकी लेखनी के
1: जी
0: बारे में आपको पता है। तो आपके जरिए हमें भी पता चला कि कितने अच्छे लेखक हैं वहां पे। तो जो पढ़ना
1: जी
0: चाहेगा वो आराम से इनका लेखन निकाल के पढ़ सकता है। बहुत अच्छी चीज है ये।
1: और
0: तो
1: एक बात बता देती हूँ जी कि हमारे हिंदी में नोवेल बहुत मैं पढ़ती थी पहले, तो
0: अच्छा।
1: गुलशन नंदा की पढ़ती थी
0: अरे
1: नोवेल
0: वाह, उनकी तो किताबों के ऊपर कितनी ही फिल्में बनी है ना।
1: बहुत बहुत बहुत, जो कटी पतंग है ना, कटी
0: हाँ।
1: पतंग वगैरह ये सब नोवेल भी पढ़ चुकी हूँ और फिल्म भी देख चुकी हूँ जी, बहुत
0: जब
1: अच्छा
0: आपने नॉवेल
1: लगता
0: पढ़ा उसके बाद फिल्म देखी तो और अच्छा लगा होगा, क्योंकि जब हम जिस
1: जी
0: चीज को
1: जी
0: पढ़ते, बिल्कुल,
1: सब जानकारी हो जाती थी
0: बहुत
1: लगभग
0: अच्छे
1: सब।
0: लेखक हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो ये सब चीजें होती हैं, इस पे जो अगर कोई फिल्म बनती है उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। तो
1: बहुत
0: बताइए, अब आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं तो बारिश के ऊपर एक गाना सुनना चाहती हूँ, प्यासा सावन का गाना, तो गाने के बोल जरा गुनगुना दूँ क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल, गुनगुना दीजिए।
1: गाने के बोल है जी, मेघारे मेघारे मेघारे मेघारे मत पर दे।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो चलिए करते हैं बात और जानते हैं अभी कौन सी सखी है हमारे साथ। हेलो सहेली।
1: नमस्कार राधे राधे मैम। हेलो सहेली।
0: नमस्कार। तो बताइए पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मैं त्रिपुरा से संगीता देवरा बोल रही हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा। गांव
0: अच्छा।
1: का नाम है चलदीपुर।
0: अरे वाह, तो आप त्रिपुरा से बोल रही हैं संगीता जी। तो आप बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैम। मेरा एक लड़का है और हस्बैंड वाइफ, हम लोग घर में 3 लोग हैं।
0: अच्छा, तो आपको बच्चा छोटा है कि बड़े हैं।
1: मैं घर में सबसे छोटा बहू हूँ
0: हाँ
1: और मेरा एक ही लड़का है।
0: हाँ तो बेटा छोटा है आपका।
1: वो बीएससी में पढ़ती है
0: अच्छा
1: कॉलेज।
0: अच्छा बीएससी में। नहीं, बड़ा बेटा है। तो आपको कुछ याद है अपने बेटे के बचपन का, जब स्कूल जाता था तो 15 अगस्त को मनाया जाता था जिस तरह से, जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है अभी, तो कुछ यादें हैं
1: तो
0: आपकी।
1: वो तो स्कूल में जाया करती थी, साथ में मैं भी जाती थी उसको लेके। तो उसको कभी कभी गाना भी गाना पड़ता थी, पड़ती
0: अच्छा
1: थी मैम।
0: हाँ। अरे वाह।
1: तो मैम मुझे गाना सुनना दीजिए। फिल्म का नाम है शारदा,
0: शारदा।
1: लता दीदी ने गाया था इस गाने को। गाने
0: हाँ।
1: का बोल है, आपका खत मिला, शुक्रिया शुक्रिया।
0: चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं गुजरात से बोल रही हूँ, नीलोफर।
0: अच्छा, नीलोफर बोल रही हैं आप गुजरात से। तो बताइए नीलोफर जी,
1: हाँ,
0: आप क्या करती हैं?
1: मेरे पापा की राशन की दुकान है, और वेफर और आइसक्रीम ये सब भी हम लोग बेचते हैं
0: अरे
1: दुकान
0: वाह,
1: में।
0: तो बताइए नीलोफर जी, आपको क्या करना अच्छा लगता है?
1: मुझे ना रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और टीवी देखना।
0: तो बताइए नीलोफर जी, आपकी पसंद का कौन सा गीत है जो आज हम आपको सुनवा सकते हैं?
1: मुझे ना कामिनी पिक्चर का गाना सुनना है,
0: कौन सा वाला?
1: बिन साजन झूला झूलू
0: हाँ
1: मैं वादा कैसे भूलू,
0: वाह।
1: कहता है ये मेरा मैं उनके गगन को
0: गगन
1: छू लू।
0: को छू
1: गाना
0: लीजिए
1: कैसा
0: आप,
1: आया?
0: आपके पसंद का
1: हाँ
0: ये
1: बिन
0: गीत हम सुनवाते हैं आपको।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: हाँ तो पहले आप अपना नाम बताइए और अपने शहर का नाम बताइए।
1: मेरा नाम है कल्याणी सुर्वे, मैं वसई से हूँ।
0: अच्छा, आप वैसे से बोल रही हैं। तो बताइए कल्याणी
1: हाँ
0: जी, आप कुछ जॉब करते हैं या आप घर पे रहती हैं?
1: हाँ मैं जॉब पे हूँ।
0: अच्छा, तो आप बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में हम 3 जन हैं, मेरे हस्बैंड पेटाउन में,
0: अच्छा, तो बेटा छोटा है कि बड़ा?
1: नहीं बड़ा है, कॉलेज
0: बड़ा।
1: जाता है।
0: अच्छा, आपकी कुछ यादें होंगी 15 अगस्त की कि आप किस बेटे को जब भेजती थी स्कूल, तो जब 15 अगस्त होता था तो आप किस तरह से तैयारी
1: या
0: करती थी, उसकी कुछ यादें हैं आपकी, या फिर आपकी अपनी खुद की यादें हो?
1: मेरी खुद की यादें थी कि स्कूल में 15 अगस्त को जाना बहुत अच्छा लगता था, कि
0: हाँ।
1: वो एक अलग ही ये रहता था माहौल। टीचर्स बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां वाइट कलर के पहन के आते थे, फिर
0: अरे वाह।
1: जो भाषण होते थे, फिर पोइट्री स्कूल बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था। यानी कि आज भी 15 अगस्त की याद आती तो पहले स्कूल की याद ही है।
0: तो आप भाग लेती थी या आपने पार्टिसिपेट किया इन सब चीजों में, जो भी अगर कुछ फंक्शंस में?
1: नहीं इतना तो नहीं, मुझे सुनना ज्यादा अच्छा लगता था घूमने से।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं, आपके पसंद का कोई गीत?
1: मुझे क्या हुआ तेरा वादा गाना सुनना, तो
0: अच्छा,
1: हम किसी से कम नहीं मिली।
0: अरे वाह, ठीक है, चलिए मैं आपको आपके पसंद का गीत सुनवाती हूँ।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हाँ, मैं सोनू वर्मा बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल से बोल रही हैं आप। आपके घर में कौन कौन है पहले बताइए तो।
1: हाँ, घर में मम्मी पापा हैं और हस्बैंड है, बच्चे हैं।
0: बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: हाँ, मेरा एक ही बेटा है, बड़ा है।
0: अच्छा, तो आप कुछ अपनी यादें आप बताएंगे 15 अगस्त की, जो 15 अगस्त आ रहा है।
1: आप 15 अगस्त में बचपन में बहुत उत्साह रहता था स्कूल जाने का, क्योंकि वो जो पीले वाले लड्डू जो मिलते थे
0: मुझे मुझे यही सुनना था, वो पीले वाले लड्डू की मुझे बहुत, क्योंकि ना उसके उसके वजह से हम बहुत ज्यादा कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि वो पीले लड्डू मिलेंगे, वो 15 अगस्त आ रहा है तो हमें जाना जरूरी है।
1: जी, वो 15 अगस्त पे ही उसका बहुत ज्यादा वो रहता था। उसके लिए क्या है कि जरूर तैयार होते थे कि आज लड्डू मिलेंगे, और 2 मिलते थे।
0: हाँ, वो लड्डू
1: तो
0: बहुत ज्यादा कीमती होते थे ना।
1: जी, बहुत ज्यादा कीमती और बहुत अच्छे होते थे। जो टेस्ट उस समय रहता था, बाकी नहीं मिलता था टेस्ट वो।
0: बिल्कुल, चाहे हम बाद में कितनी भी मिठाई खा लें, लेकिन वो जो एक स्वाद था ना, वो एकदम मन में बस जाता था, है ना। और साथ ही वहां पे जाके जब देश गान होता था ना, तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते थे ना,
1: हाँ,
0: जब
1: बहुत
0: जनगण
1: अच्छा
0: मन
1: लगता
0: शुरू
1: था
0: होता
1: उस
0: था।
1: समय की। जो 15 अगस्त थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत उत्साह रहता था, एक खुशी रहती थी कि साहब 15 अगस्त आ रही है
0: जाना
1: उस
0: है
1: चीज
0: हमें।
1: की। यूनिफॉर्म गंदी रहती थी, तो रात को इसको धोना है, सुखाना है, ताकि सुबह साफ ड्रेस पहन के जाएं।
0: हाँ, बहुत अच्छा लगता था एकदम, देख के माहौल पूरा एकदम दिल खुश हो जाता था, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा मैं उसी समय पे पहुंच गई हूँ।
0: देखिए, आप अपने बचपन वाले 15 अगस्त से पहुंच गई ना। बात
1: जी
0: करते करते
1: जी मेरी मम्मी से सीखा है मैंने रेडियो सुनना, मेरी मम्मी आज भी रेडियो सुनती हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, उन्हें बहुत पसंद है रेडियो। जब भी रेडियो पे अच्छा गाना सुनती है, तो मुझसे बोलती है कि तुम भी फोन लगाना, ये गाना सुनना। मैंने हाँ बिल्कुल सुनूंगी, और मेरी मम्मी को बहुत खुशी
0: जी
1: होती है अगर हेलो शैली में मेरी बात होती है तो।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जी,
0: आप बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: कुमार शानू की आवाज है, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने
0: हाय,
1: की।
0: क्या गीत सुना है आपने, बहुत
1: जी,
0: बढ़िया। चलिए आप सुनाते हैं, आपको पसंद
1: मेरी मम्मी का
0: आप।
1: नाम ले लूं?
0: हाँ बिल्कुल, ले लीजिए।
1: मेरी मम्मी का नाम है सोहरम बाई, और ये गाना जिसके लिए है उनका नाम है संजय महेश्वरी।
0: अच्छा ठीक है, तो सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। तो
1: हेलो सहेली,
0: पहले तो आप बताइए अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मैं उज्जैन से भारती भटनागर बोल रही हूँ।
0: अच्छा भारती जी, तो बताइए आप क्या करती हैं।
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि आपको क्या करना बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
1: मुझे किचन में खाना बनाना और साफ सफाई करना बहुत पसंद है।
0: अच्छा, आपको साफ सफाई अपने घर में रखना बहुत पसंद है।
1: हाँ, बहुत
0: तो
1: पसंद है।
0: किचन में आपको खाना बनाना पसंद है, तो कोई ऐसी बहुत ही अच्छी सी जो डिश आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाती हैं, कौन सी है वो?
1: दाल चावल बहुत अच्छे से बनाती हूँ।
0: बहुत बढ़िया।
1: मेरे
0: हाँ जी,
1: पोते को भी दाल चावल बहुत पसंद है, इसलिए।
0: अच्छा, तो आपका पोता है कितना बड़ा?
1: वो 13 साल का है।
0: 13 साल का है, यानी 15 अगस्त की
1: जी
0: तैयारियां चल रही होंगी, है ना, स्कूल में।
1: जी इसलिए तो मेरा नाम भारती है, मेरा भी जन्मदिन 15 अगस्त को है ना।
0: अरे वाह,
1: हाँ,
0: बहुत
1: 15 अगस्त
0: बढ़िया,
1: को
0: और आपका
1: है।
0: नाम भी शायद इसीलिए भारती रखा गया है।
1: भारती रखा गया है। हाँ, इसीलिए भारती रखा गया है।
0: बहुत बहुत बहुत बधाई हो आपको,
1: बहुत खुशी
0: जन्मदिन की
1: हुई आपके
0: अग्रिम
1: आपने मेरे को
0: बधाइयां।
1: फोन लगा, इतनी खुशी हुई।
0: तो आप बताइए
1: हाँ,
0: आज हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं जो आपको पसंद हो?
1: मुकेश दत्ता की आवाज में कभी कभी वाला लगा, कभी पिक्चर लगाना।
0: अच्छा, कभी कभी वाला गाना।
1: हाँ
0: तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं राजगढ़ शहर से बोल रही हूँ। नाम है लक्ष्मी वर्मा।
0: तो बताइए लक्ष्मी
1: हाँ,
0: जी, आपको क्या करना बहुत पसंद है?
1: हमको बहुत पसंद है, हर चीज पसंद है। और ये जो सावन का महीना चलता है ना,
0: सावन बहुत पसंद है आपको, है ना?
1: बहुत पसंद
0: सावन का
1: है।
0: महीना पसंद है, यानी आपको बारिश बहुत पसंद है।
1: हाँ, बहुत बारिश पसंद है। और अब तो बहुत सारा पानी गिरा तो ऐसा लगता है कि दिन भर पानी में भीगो तो और अच्छा लगता
0: यानी भीगना पसंद है आपको, है ना?
1: है। हाँ, भीगना बहुत अच्छा लगता है ना, पानी में भीगो तो कितना अच्छा लगता है। बहुत सहेली
0: बिल्कुल।
1: की भी आज अपन को महसूस होती है, यार आज अपनी सहेली रहती तो कितना अच्छा लगता है साथ
0: हाँ,
1: में।
0: हर मौसम को हम उसका आनंद उठाना चाहिए ना, लेकिन आनंद सावधानी के साथ उठाना चाहिए।
1: आपको मेरी सिस्टर का नाम बताने चाहती हूँ मैं।
0: बिल्कुल बताइए।
1: हमारी सिस्टर का नाम है सोनू वर्मा, भैया का नाम है उसका एक तो रोहित है, और जीजा का नाम है संजू वर्मा।
0: अरे वाह,
1: हम गाना सुनने चाहते हैं, कहो ना प्यार है।
0: ठीक है, चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: पहले बताइए अपना नाम और फिर बताइए अपने शहर का नाम।
1: मैं वसई से उज्ज्वला नीलेश भरत बोल रही हूँ। मैं वसई में रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आप उज्ज्वला जी
1: हाँ
0: बोल रही हैं, तो ये बताइए उज्ज्वला जी आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, बेटी है, बेटा है, दोनों सब लोग हैं।
0: अच्छा, तो बच्चे आपके छोटे हैं कि बड़े?
1: मेरी बेटी कॉलेज में जाती है, इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में है,
0: अरे वाह,
1: और बेटा 8th स्टैंडर्ड में है।
0: यानी पढ़ाई चल रही है अभी। तो 15 अगस्त
1: पढ़ाई
0: आने
1: चल
0: वाला है,
1: रही है,
0: कैसी तैयारियां चल रही हैं?
1: अच्छी तैयारी चल रही है। हम लोग बिल्डिंग में भी ऐसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स करवाते हैं छोटे बच्चों के।
0: अच्छा, आपकी सोसाइटी में भी होता है ये
1: हाँ
0: सब चीजें?
1: हाँ हाँ
0: तो स्कूल में तो एक अलग तरीके से होता होगा ना, तैयारियां भी आप अच्छे तरह से करते होंगे, और साथ ही बच्चे के स्कूल में है तो उसने किसी में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है किसी चीज में?
1: नहीं, इस साल तो उसने किसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है।
0: लेकिन जाना तो जरूर पड़ेगा ना।
1: जाना जरूर पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: तो क्योंकि
1: जी, हाँ
0: वहां पर जाके जो माहौल देखते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि अपने देश का
1: बहुत
0: त्योहार है
1: अच्छा,
0: ये।
1: बहुत अच्छा लगता है सच।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ये बताइए कि आपको कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं आज?
1: अभी सावन का महीना चल रहा है, बारिश चल रही है, तो सबके सज्जन सावन में ये गीत सुनना है।
0: ठीक है, चलिए आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं धनु जायसवाल बोल रही हूँ, झांसी से। हाँ
0: अच्छा, झांसी से बोल रही हैं आप। तो
1: जी,
0: बताइए, आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद है?
1: हमको घर का काम करना अच्छा लगता है, हाउस वाइफ है, गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको गाना सुनना अच्छा लगता है। आपको थोड़े से बचपन में आपके ले जाते हैं। आप जब छोटी रही होंगी तो आप 15 अगस्त जैसे अभी आ रहा है तो आप कैसे मनाती थी उसे?
1: 15 अगस्त तो मैडम हम तो बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे हम, तो हमारे 15 अगस्त हमारे स्कूल में मनाया जाता था। टीचरें सबसे गाना गवाती थी, झंडा
0: अच्छा,
1: दिखता था और
0: हाँ।
1: नाश्ता वीश्ता मिलता था, बहुत अच्छा लगता था।
0: वो पीले लड्डू की याद है आपको? हाँ
1: हाँ, पूरे पीले लड्डू हमारे यहाँ, तो हम यहाँ के हैं ना, मिर्जापुर के हैं, तो हमारे यहाँ तो अलग अलग तरह से सब कुछ बांटते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे मैडम।
0: और
1: हाँ,
0: झंडा
1: झंडे
0: फहराया जाता था, है ना?
1: झंडा फहराया जाता था, सुबह सुबह चले जाते थे हम लोग, कोई स्कूल सुबह 7 बजे का रहता था, मगर उस दिन बहुत जल्दी जाते थे।
0: हाँ, सुबह सुबह जाके वहां पे कितना अच्छा लगता था ना, जब जब देश गान होता है ना उसके बाद कितना अच्छा लगता है सुन
1: हाँ
0: सुन के।
1: बहुत अच्छा, अभी भी कभी कभी जब गाने आते हैं रेडियो में, कभी कभी आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनते हैं मैडम।
0: बहुत अच्छा लगता है। और बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: हम गाना सुनना चाहते हैं, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: जरा ध्यान से सुनिए। अरे स्टूडियो का फोन लगातार बज रहा है, आपके संदेश हम तक पहुंचा रहा है। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पलक झपकते ही तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने हमें बांध लिया था और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी सी है। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022-2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना मत भूलिएगा। और हमारे जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाला प्रयास कभी भी असफल नहीं होता, और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल ना लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की

0: एक बहुत मशहूर हस्ती।
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आत्मनूतन लकड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का यह संबोधन आज शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इस विशेष प्रसारण के कारण आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आज अपने निर्धारित समय से पहले यानी शाम 7:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। देश कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से समारोह की अगुवाई करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे। दुमका एयरपोर्ट पर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने उनका स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल कल सुबह 9 बजे पुलिस लाइन मैदान में स्वतंत्रता दिवस की मुख्य समारोह में शामिल होंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज रात 8 बजे आउटडोर स्टेडियम में लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। रंग बिरंगी लेजर लाइट के माध्यम से आकाश में राष्ट्रभक्ति के विभिन्न थीम प्रदर्शित की जाएगी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें 40 सवाल हैं। इनमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थान तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित सवाल हैं। पलामू की कोयल नदी इस समय उफान पर है और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऊपरी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अलग सा जज्बा, एक जोश, एक ओज हमारे भीतर आ जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं, अनहद आनंद मिलता है। बहुत से गाने ना, जैसे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, मेरा रंग दे बसंती चोला, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे वतन के लोगों, ए वतन, ए वतन। तो चलिए ना, क्यों ना आज इस मौके पर फिर से हम उस देशभक्ति के रंग में रंग जाएं और सुने इस सुंदर से गाने को।

हमेशा हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उस माहौल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जुबां के हद से रिहा होकर हमारी आंखों से अता हो जाता है ना? बहते हैं ना हमारी आंखों से आंसू? क्या रिश्ता होता है उनका हमसे? क्यों वे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी खुशी, चैन, सुकून सब कुछ बलिदान कर देते हैं? और न जाने क्यों तिरंगे में लिपटे उन वीरों को देखकर हमारी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है तो कुछ रिश्ते यहाँ बन जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता है एक देशवासी का अपने फौजी से। कितना दुख होता है ना जब समझ में आता है जाते जाते भी शायद वे हमसे ऐसा

साथियों। दोस्तों, आर्मी वाले से शादी करने का मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो सोचा चलो क्यों ना पत्रकारिता के जरिए उनसे जुड़ जाऊं, उनके लिए कुछ इस माध्यम से कर पाऊं। और अपने इस प्रोफेशन के जरिए अक्सर मैं उनके बीच जाती रहती हूं, कहीं से आंसू तो कहीं से गम बटोर कर अपनी झोली में भरती हूं। बहुत सी कहानियां हैं उन वीरों की, उनमें से बहुत सी कहानियां मेरे दिल के पास हैं, क्योंकि मैं उनके परिवारों में उनके साथ रही हूं, उनके पास जाकर उनसे बातें की है। आज आपको उन कहानियों में से दो कहानियों से आपको मिलवाती हूं। जी हां, मेजर अर्शदीप चोपड़ा और कर्नल दीक्षित के परिवार से आज आपको मिलवाना चाहूंगी, और मिलवाऊंगी मैं आपको हमारी मन्नू से। मन्नू, मनु, मानविका, मानू, बहुत सारे नाम है उसके, बड़ी प्यारी है वो। हाँ, बताऊंगी आपको उसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको मिला देती हूँ मेजर अर्शदीप चोपड़ा से। एक बार मैं रिपोर्टिंग के लिए कहीं गई थी, वहां मेरा मिलना मेजर चोपड़ा से हुआ। 6 फीट हाइट, गोरे चिट्टे, जिंदा दिल, आकर्षक व्यक्तित्व। उनसे मैं बातें करने लगी, वो भी मुझसे बहुत सी बातें करने लगे। तब मैंने उन्हें कहा, सर बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि बड़ी होकर आर्मी से जुड़ूं, आर्मी ऑफिसर से शादी करूं। सच बहुत प्रभावित होती हूं आप सबके जज्बे से। मैं बातें करती जा रही थी, उनकी तरफ देखा नहीं थी, अचानक जैसे ही मैं पलटी, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा शायद मेरी किसी बात से उनको दुख पहुंचा है। मैंने कहा, सॉरी सर, अगर मैंने कुछ गलत कहकर आपको दुखी कर दिया है तो। नहीं नहीं कथा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ आज तुमने ये बात छेड़कर बहुत अच्छा किया। आज तक मैं किसी से नहीं कह पाया, न जाने क्यों तुम मुझे अपनी अपनी सी लग रही हो। मेरी कोई बहन नहीं है, बनोगी मेरी बहन? सर ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस बात पर उन्होंने प्यार से मेरा माथा चूमा, उनकी आंखों के आंसू मेरे माथे पर टपक गए। न जाने क्या था कि मेरी आंखों से भी आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें रुला दिया कथा? नहीं, भाई की आंखें रोएंगी तो बहन की आंखों तक तो आंसू पहुंचेंगे ना सर। कथा, भाई का है तो सर क्यों कह रही हो? अब उनके चेहरे की मुस्कान फिर लौटने लगी थी। तो इस बहन को नहीं बताएंगे ये उदासी किस लिए? शायद मैं किसी काम आ सकूं। अच्छा चलो बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। वो देवदार का पेड़ है ना, मुझे बहुत सुकून देता है, वहां चलकर बैठकर बातें करें। जी भैया जरूर। अच्छा मेरे थर्मस में कॉफी है, निकाल लेती हूँ। पसंद है आपको कॉफी? हाँ बहुत पसंद है। कॉफी का मग हाथ में लेकर वे बोले, पता है रूनू को भी मेरे जैसे कॉफी बहुत पसंद है।

कहकर वे चुप हो गए, जैसे किसी सोच में डूब गए। लेकिन ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान और उदासी दोनों एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गए थे। सर, नहीं नहीं भैया, रूनू कौन है? रूनू कथा, रूनू मेरी बेटी है, मेरी और शुभा की बेटी, जो अब 13 साल की हो गई है। मैंने हमेशा चाहा था कि हमारे घर में ना एक प्यारी सी परी सी बेटी आए। वो आई, बहुत खुश थे हम दोनों। मैं उसकी नेपीस चेंज करता था, उसे लोरियां गाकर सुनाता था, नन्ही परी सोने चली, ना जाने कितनी लोरियां। उसके उसके लिए मैं एप्पल मैश करता था, क्या क्या नहीं करता था, सब कुछ कितना अच्छा लगता था मुझे। मैं और शुभा साथ में उसका हर काम करते थे, बिल्कुल एंजल सी लगती थी मेरी परी। उसके पास से मुझे हटने का दिल ही नहीं होता था, उसे मैं देखता ही रहता था और इंतजार था कि कब अपनी तोतली जुबान से वो मुझे पापा कहेगी। पर क्या भैया? कथा, आज तक उसने मुझे पापा नहीं कहा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके समझदार होने पर मैं उसके साथ कभी नहीं रह सका। मेरी पोस्टिंग होती रहती थी, कभी यहां कभी वहां, और एक बार मैं सरप्राइज देने के लिए उन लोग के सामने यूनिफॉर्म में चला गया। बहुत छोटी सी थी वो, मुझे यूनिफॉर्म में देखकर वो अपनी मम्मा के पीछे दुबक गई। पता नहीं ऐसा उसने क्या देख लिया था, क्या समझ लिया था कि यूनिफॉर्म से डरने लगी थी मेरी परी। मुझे देखकर डर गई थी, डरती है मेरी परी मुझसे। अभी तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ, काश कभी तो वो मुझे पापा कहे। ये कहते कहते अचानक एक कॉल भी आ गया था और उन्हें उठकर अचानक जाना पड़ा था, और आंसुओं के बीच इससे ज्यादा शायद अब वे और कुछ कह भी नहीं पाते। मैं समझ गई थी उनके भीतर एक ऐसा गम है जिन्हें अंदर ही अंदर दुखी कर रहा है। मैंने एक निर्णय ले लिया था, इसके बाद मैं एक बार उनके कमरे में गई। मेजर चोपड़ा वहां नहीं थे क्योंकि उन्हें फ्रंट पर जाना था। टेबल पर एक डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, अधूरी कहानियों की डायरी जो तूने कभी नहीं पढ़ी मेरी रूनू। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू टपक गए थे। भाई, इन अधूरी कहानियों को अब मैं मुकम्मल करूंगी, एक बहन का वादा है फौजी भाई से। इस घटना के 3 महीने बाद मेजर चोपड़ा फ्रंट से अभी अभी बंकर में आए थे, गहरे घाव थे, दर्द था। अचानक उन्हें एक वीडियो कॉल आया। उस वीडियो कॉल में ऐसा क्या था कि उनका सारा दर्द चला गया? जी हाँ, उनकी रूनू कह रही थी, पापा पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। मेजर चोपड़ा को लगा ये तो सपना है, लेकिन दोस्तों वो सपना नहीं, सच था। उनकी बेटी रूनू आज उनसे कह रही थी वो जो मेजर चोपड़ा सुनना चाहते थे, जो पापा सुनना चाहते थे अपनी बेटी से। पापा पापा, इस बार मैंने एनुअल डे पर आप रहेंगे ना हमारे साथ? मेरी मैम ने भी कहा है, दुश्मनों को याद दिला दी तुम्हारे पापा ने। मुझे बहुत अच्छा लगा पापा, सचमुच आप कितने अच्छे हैं पापा। मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाऊंगी, और ना पापा, मुझे एक स्टोरी भी लिखनी है पापा के ऊपर। मुझे पूरा विश्वास है पापा, मेरी स्टोरी फर्स्ट आएगी, क्योंकि मेरे पापा जैसा कोई नहीं है ना। जब मेरी बाकी फ्रेंड्स कहती थी ना अपने पापा के बारे में, पापा ऐसे करते हैं, पापा वैसे करते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं अपने पापा के बारे में क्या कहूंगी। लेकिन अब मैं बताऊंगी, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, उनके पापा मेरे पापा जैसे।

मेरी परी, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है मेरे लिए? आपके मुंह से पापा सुन रहा हूँ। फिर बोलो पापा, बोलो मेरी बच्ची, पापा कहो, कहो मुझे पापा। रूनु ने कई बार कहा, पापा पापा पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, आई लव यू पापा। उनकी पत्नी शुभा के चेहरे पर भी खुशी थी, मिर्जा चोपड़ा की आंखों में खुशी के आंसू थे, और एक प्रश्न भी था, आखिर ये हुआ कैसे? ये देखकर शुभा ने और रूनू ने कैमरे को कथा के चेहरे पर किया। मेजर सब समझ गए। रूनू ने कहा, पापा वैसे बड़ी अच्छी बुआ ढूंढी है आपने, बहुत क्यूट है कथा बुआ। कथा बुआ ने मुझे आपके बहुत सारे वीडियोस दिखाए, तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। कितना दुख दिया ना मैंने आपको, आई एम रियली सॉरी पापा। नहीं नहीं बच्चे, नो सॉरी। मेरा बच्चा अब तो खाली खुश रहने की बातें कर, मैं जल्दी आऊंगा अपनी परी के पास। अरे कथा, तेरी आंखों में आंसू क्यों बहना? भैया ये आंसू भी ना मौका नहीं देखते, दुख में भी बहते हैं और खुशी में भी, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं। मैं कैसे कुछ कहूं कथा, तुझे क्या कहूं, तूने क्या कर दिखाया मेरी बहन। सच अब कोई गम नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा तेरे लिए, कुछ कर सकता हूं? भैया रक्षाबंधन पर हिसाब बराबर कर लूंगी बहुत सा प्यार लेकर। सोचता हूँ अब अपनी बहन के लिए आर्मी ऑफिसर ढूंढ ही दूं। क्यों? नहीं भैया आप लेट हो गए, अब मैंने एक जर्नलिस्ट को ही पसंद कर लिया है। तो दोस्तों ये कहानी थी मेजर चोपड़ा की, लेकिन बहुत ही खुशनुमा मंजर था उस दिन, हम सब बहुत खुश थे, मन में गाना जैसे बज रहा था, खुशियां ही खुशियां हो आंगन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। खुशियां

इस कहानी के बाद आपको एक और फौजी परिवार में लेकर चलती हूँ। वहां भी हैं कुछ आंसू, कुछ मुस्कान। आइए, भावनाओं के सागर में डूबते हैं। ये कहानी है कर्नल दीक्षित, उनके प्रिंसिपल पत्नी जानवी और प्यारी सी बेटी मानविका की। मैं उसको आपकी कहानी बताऊं, उससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि मानू, मानविका, मन्नू, जी हाँ, वो खुद आपको अपनी कहानी कहे, आपसे सीधी बातें करें। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मानविका मुझे मिली कहाँ और कैसे मिली। बात तब की है जब मैं चैनल की ओर से एक इवेंट कवर करने के लिए नैनीताल जा रही थी। काठ गोदाम से बस में नैनीताल की ओर हम जा रहे थे। मैं मेरी सीट पर अकेली बैठी हुई थी, बहुत कम लोग थे उस बस में, और वो मेरी बगल वाली सीट पर अकेले बैठी हुई थी, हौले हौले मुस्कुरा रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी वो, न जाने क्या था उसमें जो मैं उसे देखने लगी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज के किशोर जब फोन की रील्स बनाने में व्यस्त होते हैं, ये लड़की प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए कितनी खुश हो रही है, कुछ लिख रही है। कितनी सुंदर लग रही है वो प्रकृति को वर्कों में उतारते हुए। उसके सलोनी चेहरे पर सपने संजे हुए दो बड़ी बड़ी आंखें थी, गालों में डिंपल पड़ रहे थे। न जाने क्यों मेरा मन उससे बहुत से बातें करने को होने लगा। अचानक वो उसे मेरी ओर देखा, देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुरा दी। उसे देखकर मेरे मन में न जाने क्यों

आगे जब बस रुकी, हम नीचे उतरे, उसने जूस लिया और मैंने चाय। पैसे देने के समय उसे पता चला कि उसका वॉलेट किसी ने निकाल लिया है। वो बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा, परेशान मत हो। मैंने उसके रुपए भी दे दिए। फिर हम दोस्त बन गए। हम एक सीट पर साथ में बैठ गए। बातें करते हुए नैनीताल पहुंचे। न जाने कितनी बातें, पहली बार मिले थे पर हमारे बीच इतनी सारी बातें आ कहां से रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम उम्र ना होकर भी हम बहुत करीब आ गए। इस बात से शायद और ज्यादा कि वो भी आर्मी बैकग्राउंड से है। जी हाँ, हमारी मानू भी आर्मी बैकग्राउंड से है। कुछ समय पहले तक जो दो अनजाने थे, कितने अपने से हो गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हम पहली बार मिले हैं। हमें पता चला कि हम तो एक ही शहर में रहते हैं, हमारे घर भी बहुत पास पास में हैं। उसके बाद कई मौकों पर हम मिलने लगे। मानू को मेरे मम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद आती थी, तो जब भी मेरे घर खीर बनती, मम्मी कहती, मानू के घर खीर जरूर जाएगी। और मानू के घर जब भरवा बैंगन बनते, तो आंटी यानी मानू की मम्मा मुझे जरूर बुलाती। मैं मानविका से उम्र में कुछ साल बड़ी हूँ, पर वो अपनी सारी बातें मुझसे साझा करने लगी। मैं उसके लिए दोस्त, बहन, न जाने क्या क्या बन गई। वो कहती, कथा दी, मेरा कोई सिबलिंग नहीं था ना, इसलिए भगवान ने आपसे मिलाया। इसके बाद अक्सर वो कई बार मेरे स्टूडियो आ जाती, कई बार मैं उसे अपने साथ आउटडोर पर ले जाती, कभी कभी मैं भी उसके पापा के साथ आर्मी के किसी प्रोग्राम में चली जाती। जब वो ये कहती ना कि भगवान जी ने मुझे आपसे मिलाया, बड़ी प्यारी लगती। उसकी इस मासूमियत पर मैं उसका माथा चूम लेती। आप उसके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, तो जानिए भाई, हक है आपका। तो क्यों ना मानू यानी मानविका से ही सुन ले आप कहानी, उसी की जुबानी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि डायरी लिखती है मानू, तो अब आगे की कहानी हमारी मानविका और उसकी डायरी के पेज ही आपको बताएंगे। मानविका डायरी में लिख रही है, मेरी प्यारी डायरी, तुम्हारे पन्नों पर मेरे सभी जज्बात दर्ज हैं। जब मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता था, कुछ भी उल्टा सुलटा लिखती थी, तो तुम्हारे पन्नों पर तब भी तो मैं लिखती थी, कभी कुछ ड्रॉ कर देती थी। आज तुम्हारे साथ अपने पापा को एक लेटर लिख रही हूँ। पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आज मेरा मन कर रहा है मैं आपको उसी लेटर पैड पर लेटर लिखूं जो आपने मुझे मेरे सेकंड बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। पिंक बैकग्राउंड, गोल्डन पिंक फेडीज वाला, जिसमें चिड़िया और पड़ियां बनी हुई हैं। आपको याद है ना, मुझे हर चीज पिंक चाहिए होती थी। आइसक्रीम पिंक, ड्रेस पिंक, स्लीपर पिंक, शूज पिंक, हेयर बैंड पिंक। पापा, मेरे भाई नहीं है ना, तो आपको ही तो मैं राखी बांधती हूँ ना। पिछले रक्षाबंधन पर मैं आपसे गुस्सा हो गई थी, आपसे और मम्मा से, पता है ना क्यों? आप लोगों ने मुझे व्हाइट आइसक्रीम जो दे दी थी। लेकिन आप दोनों भी कम नहीं है, कुछ प्लान कर लिया था और आइसक्रीम में पिंक कलर डालकर उसे पिंक कर दिया था और मुझे खुश कर दिया। लेकिन मैं जानकर गुस्सा रहने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों का और ज्यादा प्यार मिलता। और तब आप दोनों मुझे प्यार करते हुए इस गाने पर मेरे साथ नाचने लगे थे।

0: मैं रोते रोते हंस दी थी। मुझे हंसता देखकर आप दोनों कितना खुश हो गए थे, जैसे आपके घर आने से मैं खुश हो जाती हूँ। पापा आपने कहा था ना जल्दी आओगे, कब आओगे पापा? जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पेरेंट्स डे आता है ना, तब मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। सबके पेरेंट्स आते हैं ना, आप नहीं होते। और पापा, हर संडे ना मेरी दोस्त ना अपने अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, मैं नहीं जाती क्योंकि आप हमारे साथ नहीं रह पाते ना। पापा जब आप आएंगे ना, तब हम गार्डन में झूला झूलेंगे, आपके साथ मैं बाइक पर घूमूंगी। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके साथ क्या क्या करना है, जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पापा आप जहां रहते वहां गुड़िया मिलती है ना, मेरे लिए लाएंगे आप आंख मटकाने वाली गुड़िया? याद है बचपन में हम गाना गाते थे, सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। अच्छा ठीक है ठीक है। पापा मेरा 9th बर्थडे आने वाला है, आपने मुझसे वादा किया था ना आप मेरे बर्थडे पर आएंगे, क्यों नहीं आ रहे? मेरे बर्थडे को केवल कुछ ही दिन तो बाकी हैं। आप तो अपने मन्नू को कभी दुखी नहीं देख पाते ना, याद है ना? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं पापा, आप दुखी मत हो, डोंट बी सैड ना, मैं नहीं रोऊंगी। क्योंकि ना अब मुझे समझ में आ गया है कि आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हमारे पास। मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे जैसे बहुत से मन्नू हैं, अगर मेरे यानी मन्नू के पापा फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे तो उन सब मन्नू के पापा उनके पास नहीं रह पाएंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ ना, वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप पढ़ लेना हाँ। और मम्मा ने ना मुझे वो गाना दिखाया था जिसमें चिट्ठी पढ़कर ना सारे सोल्जर्स ये गाना गाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। कल स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ विमलेश।
0: जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूँ अजीत। स्वाधीनता दिवस की आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर कविता से।
2: तो शुरू करते हैं कविता। जब भी सर झुके मेरा तब देश को सलाम हो, तमन्ना बस यही है मेरी हर सांस देश के नाम हो।
0: तिरंगे की शान पर ये जीवन कुर्बान हो, हर धड़कन में मेरी भारत ही का नाम हो। श्रोताओं, कैसी लगी कविता जरूर बताइएगा।
2: तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखते हैं,
2: अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं, दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति में लड़ना सिखाता है और अनुभव जीत हासिल करना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश सुनने की।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
0: और भवरपुर बसना छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, चंपा देवांगन।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: ये भी जानिए श्रृंखला में एक बार फिर से हम लेकर आए हैं श्रोताओं आपके लिए रोचक जानकारियों का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कल हम मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त की आजादी का जश्न।
2: श्रोताओं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है 1857 से, जो 1947 तक चली। हम सब जानते हैं कि 10 मई 1857 को ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था, जब जननायक मंगल पांडे ने बगावत का बिगुल बजा दिया था।
0: श्रोताओं, ऐतिहासिक रूप से इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है
2: जी।
0: लेकिन इससे पहले भी स्थानीय रूप से बहुत से जनजातीय और अन्य समूहों ने भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और आजादी का नारा बुलंद करके राष्ट्रीय आंदोलन का मंच तैयार किया।
2: इन जनजातीय समूहों में मुंडा, भील, उरांव, गोंड, संथाल, कड़ावा इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन आदिवासी आंदोलनों के नायकों में बिरसा मुंडा, सिद्धो और कानो और अल्लूरी सीताराम राजू जन जन में जाने जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, एक लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिली
2: जी।
0: तो आज हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो पहली बात आपको बता दें श्रोताओं कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, इसीलिए उस दिन कोई गीत नहीं गाया गया था।
2: जी हाँ श्रोताओं, क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में ही घोषित किया गया
0: जी। तो अब बात करते हैं तिरंगे की। श्रोताओं आपको बता दें, पहली बार तिरंगा झंडा 6 अगस्त 1947 को फहराया गया था, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से झंडा 16 अगस्त 1947 को ही फहराया गया था।
2: तो क्या 15 अगस्त के दिन कोई समारोह नहीं हुआ था? श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है
0: जी। 15 अगस्त 1947 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में तिरंगा फहराया था और 16 अगस्त 1947 को उन्होंने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया था। आपको बता दें कि उस दिन लाल किले के प्रांगण में लाखों की भीड़ थी।
2: श्रोताओं, एक और रोचक बात आपको बता दें कि 15 अगस्त को अन्य देश भी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो देश हैं दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी स्वतंत्रता दिवस के दिन की। अब आज का प्रश्न, आज ही की जानकारी से, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब सुनते हैं आज के विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है दादा भाई नौरोजी।
2: इस कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके प्रयासों और योगदान की चर्चा की गई है। उन्हें आधुनिक भारत की राजनीति का पितामह भी कहा जाता है।
3: आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। इंग्लैंड में उन्हीं लोगों के वोटों से वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना जाना भी उनके जैसे महान व्यक्ति का ही काम था। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था श्री नौरोजी पालनजी दोरड़ी और माता का नाम श्रीमती नीलकबाई था। पुरोहिती और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी से ही इनके परिवार का पालन पोषण होता था। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार आर्थिक कष्ट में डूब गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा और उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने में कोई कसर ना छोड़ी। उन दिनों देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था और विदेशी शासन को इसकी कोई चिंता न थी कि भारत के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। बंबई के तत्कालीन गवर्नर श्री माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन कुछ भिन्न विचार के थे। उन्होंने अपनी कोशिशों से नेटिव एजुकेशन सोसाइटी नाम की एक संस्था बनाई जो भारतीय बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। इस संस्था ने बंबई में 2 स्कूल खोले। उनमें से एक में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी और दूसरे में देशी भाषा। दादा भाई की मां ने उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। उनकी योग्यता को देखकर उनके एक प्राध्यापक ने उन्हें भारत की आशा नाम दिया था। आगे चलकर दादा भाई ने इस विशेषण को सार्थक कर दिखाया। उनकी योग्यता को देखकर बंबई के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अर्सकिन पेरी ने उन्हें सलाह दी।
4: दादा भाई, तुम इंग्लैंड जाकर बैरिस्टरी कर रहे हो।
5: लेकिन सर, इंग्लैंड जाना और वहां रहकर बैरिस्टरी पढ़ना, इन सब के लिए तो बहुत पैसा चाहिए।
4: इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बैरिस्टरी की पढ़ाई का सारा खर्चा मैं दूंगा। तुम जाने की तैयारी करो।
5: सर, आप मेरी पढ़ाई के लिए खर्चा करेंगे? लेकिन सर, मैं अपनी माँ और घर के अन्य लोगों से पूछकर ही कुछ फैसला कर सकता हूँ।
4: जैसे तुम्हारी मर्जी।
3: दादा भाई ने जब अपने घर में इंग्लैंड जाने और वहां बैरिस्ट्री पढ़ने की बात कही तो पारसी समाज के बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि इंग्लैंड जाकर दादा भाई कहीं ईसाई न बन जाएं। परिणाम यह हुआ कि दादा भाई ना इंग्लैंड जा सके और न ही बैरिस्ट्री पढ़ सके। दादा भाई अपने विद्यार्थी जीवन में ही सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ऐसे समाज में जहां लड़कियों को शिक्षा देने के प्रबल समर्थक न थे, दादा भाई ने कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बंबई में एक संस्था बनाई। इस संस्था द्वारा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अपेक्षा के अनुसार तत्कालीन समाज ने उनका कड़ा विरोध किया।
6: अरे भाई, कौन हो तुम? ये घर घर जाकर क्या प्रचार कर रहे हो?
5: जी, मैं दादा भाई हूँ।
7: दादा भाई,
5: और हमारी संस्था ये प्रयत्न कर रही है कि लड़कियाँ स्कूल जाएं और शिक्षा प्राप्त करें।
7: अरे लड़कियाँ पढ़ेंगी है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
6: अरे लड़कियाँ घर से बाहर जाएंगी? अरे ना भाई ना।
5: अरे जाओ, कुछ और काम करो।

0: सुनिए आप लोग मेरी बात तो सुनिए। देखिए लड़कियों का अलग से स्कूल होगा और यदि वो पढ़ लिख जाएंगी तो उनके जीवन में नई रोशनी आएगी, वो परिवार और समाज को बेहतर बनाने में सहायक होंगी।
1: दादा भाई के इस प्रचार का लगातार विरोध होता रहा, किंतु दादा भाई और उनके सहयोगियों ने हिम्मत ना हारी। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगीं। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्ग लोग दादा भाई की लगन और ईमानदारी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे जानते थे कि व्यापारिक तिकड़मबाजी में तो वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड जाने का ये मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। उनका विश्वास था कि यदि इंग्लैंड की आम जनता और सरकार को भारत की दुर्दशा से परिचित कराया जाए तो भारत की हालत में सुधार हो सकता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभा में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा।
2: भारत का शासन भारत के हित में होना चाहिए और ये भारत में 1,00,000 सैनिक रखकर नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लाखों भारतीयों की सहमति और विश्वास से हो सकता है।
1: मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई।
2: मेरे साथियों, हमें भारत में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसी जनता की अपनी प्रतिनिधि संस्थाएं बनानी चाहिए।
3: क्या ब्रिटिश सरकार ऐसा होने देगी?
2: ब्रिटिश सरकार के सामने हम अपना प्रस्ताव रखें, उससे पहले हमें इसके योग्य बनना होगा।
4: लेकिन वो कैसे?
2: इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना होगा और जनमत को तैयार कर अन्याय व गलत बातों के खिलाफ आवाज उठानी होगी।
4: लेकिन लेकिन हमारी आवाज सुनेगा कौन?
5: और क्या ब्रिटिश सरकार इस जनमत की आवाज को बर्दाश्त करेगी?
4: क्या अंग्रेज सरकार इसे बर्दाश्त करेगी?
2: वो बर्दाश्त ना करे, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इंग्लैंड में एक ऐसी संस्था बनाए जो भारतीयों की मांगों को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उठाए।
1: देखते देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। दादा भाई ने सोचा कि यदि इंग्लैंड की लोकसभा में भारत का कोई प्रतिनिधि हो तो भारत की दुर्दशा का हाल वहां की जनता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए वे पुनः इंग्लैंड गए और वहां के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, किंतु इसमें वो हार गए। इस हार से वो जरा भी निराश नहीं हुए। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। उन्होंने अपने प्रयत्नों से लोकसभा में सिविल सर्विस में भारतीयों को भर्ती करने का प्रस्ताव पास करवाया। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन रात लगे रहते थे। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। मित्रों के आग्रह पर सन 1907 में वे लंदन से स्वदेश लौट आए। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।

0: दादा भाई नौरो जी, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
1: ये कार्यक्रम भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अहम भूमिका और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिक भारत के निर्माण और एकीकरण में उनके विशेष योगदान के बारे में विस्तार से बताता है।
2: मैं कम बोलने वाला आदमी क्यों? क्यों मैं कम बोलता हूँ? एक सूत्र है कि जो मैंने सीख लिया है कि मौनम मूर्खस्य भूषण, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो हम बोले उसी के पर हम न चल सके तो हमारा बोलना नुकसानकारी है, इसलिए भी मैं कम बोलता।
3: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महात्मा गांधी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, पंडित नेहरू ने भारत के नव निर्माण की नींव रखी, तो सरदार पटेल ने 500 से भी अधिक देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाकर उसे एक स्वतंत्र, एकीकृत और अखंड राष्ट्र की पहचान दी।
4: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था। वल्लभ भाई की आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। आगे पढ़ने के लिए वे पास के शहर पेतलाड़ चले गए। वहां वे पढ़ाई के साथ साथ ही खेलकूद, कुश्ती और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। तभी एक दिन,
5: वल्लभ वल्लभ,
6: हाँ,
5: अरे तुमने कुछ सुना
6: क्या? क्या हुआ घनश्याम?
5: अरे वो अपने देसाई सर है ना,
6: हाँ?
5: उन्होंने राम जी को क्लास से निकाल दिया।
6: क्लास से निकाल दिया?
5: हाँ।
6: मगर क्यों? वो तो बड़ा सीधा साधा लड़का है।
5: राम जी के पास किताब नहीं थी, घर से पैसे नहीं आए, इसलिए वो खरीद नहीं सका। पर देसाई सर भला उसकी क्यों सुनते, उन्होंने राम जी पर 4 आना फाइन कर दिया।
6: किताब न लाने पर 4 आने फाइन? फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या, आज क्लास में आते ही देसाई सर ने पूछा,
7: क्यों राम जी फाइन लाए हो?
5: तो बेचारा राम जी बोला, नहीं सर, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जानते हो, इस पर सर एकदम भड़क गए और बोले,
7: निकल जाओ मेरी क्लास से, और जब तक फाइन लेकर ना आओ तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
6: ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, तो कल से सिर्फ राम जी ही नहीं, हम में से कोई भी उन्हें शक्ल नहीं दिखाएगा।
5: क्या कह रहे हो, देसाई सर का गुस्सा नहीं जानते हो तुम?
6: जानता हूं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे अन्याय करना बुरी बात है, वैसे ही अन्याय सहना भी बुरी बात है। हम गरीब घरों के लड़के हैं, हमारे माँ बाप किसी तरह पेट काट कर हमें पढ़ाते हैं। अगर हमें बिना कसूर जुर्माना भरना पड़े तो हमारे माँ बाप इतना पैसा कहां से लाएंगे भाई?
5: लेकिन अभी तो सिर्फ राम जी के 4 आने का ही सवाल है।
6: सवाल 4 आने का नहीं है घनश्याम, सवाल है अन्याय के आगे सिर झुकाने का। देसाई सर को गुस्सा कुछ ज्यादा ही आता है, बात बात पर मारपीट, बात बात पर फाइन। इसी तरह वो पारिक सर हैं, जो जबरदस्ती लड़कों को अपनी दुकान से कापी कलम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। सब जानते हैं वो बाजार भर में सबसे महंगा सामान बेचते हैं, फिर भी हमें उनकी दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
5: हाँ, और अगर ना खरीदो तो नंबर कम देते हैं।
6: इसीलिए तो कहता हूं, सब मिलकर एक हो जाओ और इस अन्याय का विरोध करो। चलो सब लड़कों से बात करते हैं।
5: ठीक है,
6: उनसे कहते हैं कल से कोई लड़का उनकी क्लास में न जाए।
5: लेकिन वल्लभ सुनो तो सही, अगर इतने सारे लड़के क्लास में न जाकर इधर उधर घूमेंगे तो प्रिंसिपल साहब नाराज नहीं होंगे क्या?
6: हाँ, ये तो तुम ठीक कहते हो। ठीक है, इसका हल भी मैंने सोच लिया है।
5: क्या?
6: स्कूल के बाहर जो धर्मशाला है उसमें बैठेंगे, ना इधर उधर भटकेंगे ना शोर करेंगे। तुम जाकर उस धर्मशाला में हमारे बैठने की व्यवस्था करो, और सुनो, बाबू से कहो कहीं से 3-4 घड़ों की व्यवस्था करें।
5: घड़ों की व्यवस्था? पर वो क्यों?
6: अरे भाई, इतने लोग दिन भर वहां बैठेंगे तो पीने का पानी भी तो चाहिए। हम लोग वहीं बैठकर अपना काम करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे।
5: हाँ वल्लभ, ये ठीक है।
3: वल्लभ भाई की ये पहली हड़ताल सफल रही। तीन दिन तक सिर्फ उनकी कक्षा के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आखिर प्रिंसिपल साहब ने अपने सहयोगियों की ओर से क्षमा मांगी और आश्वासन दिया कि फिर कभी किसी छात्र को बिना अपराध सजा नहीं दी जाएगी।
4: इस घटना से वल्लभ भाई के दो प्रमुख गुण प्रकाश में आए। एक था उनका कुशल नेतृत्व और दूसरा संगठन की अद्भुत शक्ति। वल्लभ भाई में एक और विशेषता थी और वो थी उनकी शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता। कठिन से कठिन परिस्थिति में वे बड़ी जल्दी सही निर्णय लेते थे और फिर पूरी दृढ़ता और लगन से उसके पालन में लग जाते थे। उनके इन्हीं गुणों को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपना विश्वास पात्र सहयोगी बनाया था।
3: मैट्रिक करने के बाद वल्लभ भाई ने डिस्ट्रिक्ट लीडर की परीक्षा पास कर गोधरा में वकालत शुरू की। बाद में उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास की और अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने लगे। जल्दी ही एक कुशल और निर्भीक वकील के रूप में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्हें अहमदाबाद नगर पालिका का सदस्य और बाद में उसका अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए कई बार अंग्रेज अफसरों से लोहा लिया और विजय प्राप्त की। ऐसी ही एक घटना थी नागपुर के झंडा सत्याग्रह की।
8: ये क्या दिनेश भाई, आज फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने का इरादा है क्या?
9: हाँ भाई, इरादा तो पक्का है।
8: पर सुना है कल सिविल लाइंस वाले जुलूस में काफी लोग गिरफ्तार हो गए।
9: हाँ, काफी स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी और जानते हैं उनमें करोड़पति सेठ जमनालाल बजाज भी थे।
8: अच्छा, सेठ जमनालाल को भी नहीं छोड़ा, तो फिर अब जुलूस का नेतृत्व कौन करेगा?
9: सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अहमदाबाद से वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं। वही खेड़ा सत्याग्रह वाले, बड़े जीवट वाले व्यक्ति हैं। अब वही इस झंडा सत्याग्रह की बागडोर संभालेंगे। ये लो, वो आ ही गए।
10: क्यों दिनेश भाई, कैसे हो, यहाँ का क्या समाचार है?
9: जी मैं अच्छी तरह हूँ, पर आप यात्रा से आए हैं, थके होंगे, कुछ देर आराम कर लीजिए, बाकी बातें कल होंगी।
10: नहीं भाई, मैं किसान का लड़का हूँ, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता। तुम पहले यहाँ का हाल सुनाओ।
9: यहाँ का हाल ठीक नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि सेठ जमनालाल की गिरफ्तारी से बहुत से लोगों की हिम्मत टूट गई है। सबसे पहले तो हमें स्वयं सेवकों की आवश्यकता है।
10: मेरा भी यही ख्याल है, पर नागपुर में इतने स्वयं सेवक मिलने कठिन है। ऐसा करें कि सभी प्रांतों के कांग्रेस अध्यक्षों को मेरी ओर से पत्र लिखवाएं
9: जी,
10: और उनसे अनुरोध करें कि अधिक से अधिक स्वयं सेवक यहां भेजने की व्यवस्था करें।
9: उससे क्या होगा
10: भाई, अंग्रेज सरकार हमें झंडा लेकर चलने नहीं देगी, पकड़कर जेल में डाल देगी। अगले दिन फिर झंडा लेकर जुलूस निकालने के लिए और स्वयं सेवक चाहिए या नहीं?
9: हाँ,
10: ऐसा प्रबंध करना है कि हर रोज कम से कम 50 लोग जुलूस निकालें और गिरफ्तारी दें। देखना है अंग्रेज सरकार की जेल में कितनी जगह है।
3: सरदार पटेल की देखरेख में जुलूस निकलने लगे और गिरफ्तारियां होने लगी। नागपुर जेल भर गई तो सत्याग्रहियों को अकोला जेल भेजा गया, लेकिन 110 दिन चले इस सत्याग्रह में किसी दिन स्वयं सेवकों की कमी नहीं हुई। आखिर अंग्रेज सरकार को शांतिपूर्ण जुलूसों और सभाओं पर से पाबंदी हटानी पड़ी।
4: सरदार पटेल की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विजय थी बारदोली के किसान आंदोलन की सफलता। उनकी इसी सफलता पर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। हुआ यूं कि सरकार ने बारदोली जिले के किसानों पर लगने वाले कर में एकदम से 22% की वृद्धि कर दी। गरीब किसानों के लिए इतना कर देना संभव नहीं था। सरदार पटेल ने पहले किसानों की ओर से सरकार से अपील की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने सत्याग्रह का शंख फूंक दिया। उन्होंने गांव-गांव, घर-घर में जाकर किसानों से कहा कि वे बिल्कुल टैक्स न दें।
11: मैं आप लोगों को यह साफ साफ बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए मैं आपको कोई बड़े बड़े हथियार नहीं दे सकता। बस आपका अपना दृढ़ निश्चय और कष्ट सहने की आपकी सामर्थ्य, यही वो हथियार है जिनसे आपको ये लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी एक दिन आपके आगे घुटने टेकने के लिए विवश हो जाएगी।
12: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
11: भाइयों, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीनें छिन जाएंगी। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या अंग्रेज सरकार अपने साथ यह जमीन विलायत ले जाएगी?
12: नहीं।
11: अंग्रेज सरकार के ये आला अफसर क्या खुद आपकी जमीन जोतेंगे?
12: नहीं।
11: तो फिर आप लोग किस लिए डरते हैं? सरकार आपकी जमीन छीनकर दूसरों को दे देगी। अगर आपकी एकता में बल है तो कोई दूसरा आपकी जमीन पर हल नहीं चला सकेगा। सारे गुजरात के किसान आपका साथ देंगे, सारे देश के किसान आपका साथ देंगे। अरे, किसान के लिए कष्ट सहना कोई नई बात है क्या? जाड़े, गर्मी, बरसात में कौन खून पसीना एक करके फसल उगाता है? कीड़े मकौड़ों, सांप बिच्छुओं की परवाह न करके कौन उन फसलों की रखवाली करता है? अंग्रेज सरकार भला इन कष्टों से बढ़कर और क्या कष्ट दे सकती है? आप एक बार इन कष्टों को हंसकर सहने का निश्चय कर लीजिए, आपकी जीत निश्चित है।
12: ठीक है, हम सब तैयार हैं।
4: बारदोली के किसान सत्याग्रह पर सबकी आंखें लगी हुई थी। ये गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के आदर्शों की परीक्षा थी और इसमें विजय भी अहिंसा और सत्य की ही हुई। असहयोग आंदोलन, खादी प्रचार, चुनावों की व्यवस्था, सूखा, बाढ़, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत बचाव कार्य, इन सभी में सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व और संगठन कौशल का प्रमाण मिलता रहा। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ।

0: सिंध वासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है।
1: सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके सुयोग्य प्रशासन से विभाजन के समय की भीषण स्थिति जल्दी ही काबू में आ गई। 15 दिसंबर 1950 को बंबई में दिल के दौरे से उनका निधन हुआ। 1991 में उन्हें राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। यही कृतज्ञ राष्ट्र की इस लौह पुरुष के लिए श्रद्धांजलि है।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। समाचारों के लिए आइए हम आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का यह संबोधन आज शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इस विशेष प्रसारण के कारण आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आज अपने निर्धारित समय से पहले यानी शाम 7:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। देश कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से समारोह की अगुवाई करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। गुमला समाहरणालय परिसर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों, कर्मियों और पंचायत प्रतिनिधियों के बीच तिरंगे का वितरण किया गया। उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने नागरिकों से हर घर और संस्थान में सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने तथा राष्ट्रीय पर्व में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। नोटिस और दावा आपत्तियों का निष्पादन अब 14 अक्टूबर तक होगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर को किया जाएगा, जबकि पहले ये तिथियां क्रमशः 4 सितंबर, 3 अक्टूबर और 7 अक्टूबर थी। हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती ने DMFT मद से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराए जाने वाले कार्यों को लेकर बैठक की। उन्होंने फार्मासिस्टों का रोस्टर तैयार करने, दवाओं की जानकारी के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने और ऑपरेशन थिएटरों की मरम्मत के निर्देश दिए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। पेश है देशभक्ति गीत।

कार्यक्रम देशभक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम आपको देशभक्ति गीत

फिल्म नया दौर का ये गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और एस पालबीर की आवाजें थी। साहिर लुधियानवी के बोल थे और ओमकार प्रसाद नैयर ने इसकी धुन तैयार किए थे। और अब अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म हम हिंदुस्तानी का ये गाना मुकेश की आवाज में।

0: महेंद्र कपूर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी उपकार। इस गीत के बोल लिखे थे गुलशन कुमार मेहता ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीत। हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम के शेष गीत इन जरूरी संदेशों के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्तरंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
1: जरूरी संदेशों के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, हमारे देश को स्वतंत्रता भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली, पर इसके लिए लंबे समय तक आंदोलन चला। जब अंग्रेजों की नींव हिला दी गई, वे समझ गए कि अब उनके लिए भारत पर राज करना आसान नहीं होगा। तब उन्होंने देश को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। इसी एक दिन की चाहत में हजारों भारतीयों ने अपने सीने पर गोलियां खाई और जाने गंवाई। न उन्होंने अपने प्राणों की परवाह की, न अपने घर परिवार की चिंता की। उनके लिए देश ही सर्वोपरि था। आजादी के ऐसे ही कई दीवाने थे जिनका बलिदान नेपथ्य में ही रह गया। उनकी न तो कोई कभी चर्चा हुई और न ही कभी हम उन्हें ठीक से जान पाए।

जागृति फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, और अब इसी के साथ ही ये देशभक्ति गीत यहीं समाप्त होता है।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित हमारा अगला कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: कार्यक्रम खेतीबारी में सभी किसान भाई बहन के हमरे से वीरेंद्र भाई दने से जोहार नमस्कार। आज हम बहुत कुछ लेकर आवल है कार्यक्रम खेतीबारी में। सबसे पहले आज चर्चा करबे धान के फसल में ध्यान देवे लायक बात, यानी कि धान के जो हम खेती करो ही है। अब तो धान के रोपाई चरम सीमा पर है, लगभग किसान धान के रोपाई कर दलथिन है। धान के दो तीन बात पर हमेशा ध्यान रखे के चाहिए। रोपाई के बाद जैसे खर पतवार नियंत्रण वगैरह कैसे करबे ओकर पर हम थोड़ा सा चर्चा करबे। ओकर बाद धान में कब यूरिया का ड्रेंचिंग करे चाहिए, कब कब दवा के कब कब स्प्रे करे चाहिए, ओकर पर थोड़ा सा चर्चा करबे। सबसे पहले हमें किसान भाई बहन के एक बात के हमेशा ध्यान दिए चाहिए कि धान के जब भी हमें रोपाई करो ही, रोपाई के 2 से 3 दिन बाद DAP के साथ अगर यदि खर पतवार नाशक दवा अगर मिला के दे तो सबसे बड़ा खासियत है कि घास जो हुए से खेत में ना होते पहला। और ओकर बाद देखा कि जैसे एक एकड़ खेत में अगर हमारा खरपतवार नाशक दवाई दिए है तो ओकरा हम करीब 500 ml के हिसाब से ओकरा दवा ओकरा मिला के खेत में देवे। और खेत में कोशिश करिए पानी हमेशा ओकर में भरल रहे कम से कम 7 से 8 दिन। 8 दिन बाद हल्का पानी खेत में कम करे के चाहिए। जब पानी कम करे के बाद फिर 4-5 दिन बाद फिर खेत में पानी भर देवे के चाहिए। तो जैसे रोपाई के ठीक 15 दिन बाद यानी कि 2रा सप्ताह से 3रा सप्ताह में पहला यूरिया का ड्रेंचिंग जरूर किसान करके चाहिए। और थोड़ा सा ओकर में ये भी ध्यान दिए चाहिए कि अगर यदि किसी तरह बीमारी तुरा नजर आव हो ओकर में 400-250 ग्राम प्रति कट्ठा के हिसाब से 1.5 किलो यूरिया मिला के ओरा छिड़काव तो ड्रेसिंग कर सको हाँ ड्रेंचिंग। ओकर बाद देखा जब भी धान में एक चीज और बात हम बतेबो कि पानी की कमी से ही ज़्यादा धान में घास होवे की संभावना बनल रहा है। तो ऐसा स्थिति में किसान के हमेशा एक बात का ध्यान देवे के चाहिए कि खेत में पानी की कमी ना होवे देवे के चाहिए। अगर खर पतवार हो भी जाए तो मतलब हाथ के द्वारा निकाय गुड़ाई करे के चाहिए। जब ये सब कुछ तोहर सब ठीक हो जाओ उकर बाद दिखा कि रोपाई की यानी कि 5वें से 6ठे हफ्ता यानी कि 40 से 42 दिन के बीच में फिर यूरिया और पोटास के ड्रेंचिंग करे के चाहिए। यूरिया और पोटास के चलते ड्रेंचिंग करे के चाहिए कि उसमें देखा कि धान के बाली बने की अवस्था 50 दिन से 42 दिन की उम्र में आ जाए अंदर में। तो उकर से कहा हुआ कि जैसे यूरिया के हम दे तो पहला तो धान के बढ़वार होते और पोटास का काम है कि बाली सही से बने के और जो काला धान फूटे ओकरा ना फूटे तो और हर बाली में मतलब दाना अच्छा है तो खखरी ना हो तो ये बात पर अगर तू तो ध्यान दबा तो अधिक तोहर पैदावार हो तो। और एक सबसे बड़ा चीज़ है ठीक धान 40 से 42 दिन में हो तो सफ़ेद से यानी बाकी लगे लोग खेत में तो बाकी से बचे खातिर 2 उपाय है। जैसे कि रिजेंट अल्ट्रा अगर किसान के मिलो है तो प्रति एकड़ 4 से 5 kg ओकरा छिड़काव किसान के करे के चाहिए। तो ऊपर से कहा कि तू तो अगर छिड़काव करो हाँ तो ओकर में सबसे बड़ी बात हो कि तुहर ओकर में पानी बांधा। पानी बांधे के बाद जो है ओकरा छिड़काव करके कोशिश करा 2-3 दिन पानी ना बह दिए चाहिए खेत से। तो ओकर में कहा हो कि जो भी बाकी के कीड़ा हो है वो तुहर मर जितो को, चूँकि धान में कोई बाकी सफ़ेद प्राकृतिक से ना लगा चूँकि कीड़ा के प्रभाव से लगे। एक कारण सबसे बड़ा कारण का है जब हम धान के बिचड़ा करो ही है तो हमें खास करके धान के बिचड़ा में आधा नक्षत्र में जो आदमी धान के बिचड़ा करो है और वो धान के बिचड़ा ठीक 20 से 21 दिन में रोपाई कर देतीन तो ओकर में कहा हुए कि बीमारी कम लगो है। तो कुछ कुछ बात के अगर हमें ध्यान दिए तो बीमारी से हमें बचाव कर सको ये धान में। अब धान में कभी कभी कहा हुआ देखा कि काला काला फूटे लगो है करीब 55-60 दिन के अवस्था में तो देख ले जब काला की संभावना तोहरा लगो हो तो ओकर में ब्लू कॉपर 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से तोहरा छिड़काव करे के चाहिए। तो ओकर से कहा तो कि काला काला जो हो धान में वो ना हो तो जैसे कि चावल जब बन जाए तो देखो चावल में कालापन आ जाए तो ओकर वही कारण हो है ओकरा जो है से अर्ली ब्राइट कहल जाए। तो उससे अगर ब्लू कॉपर के छिड़काव से हमें एक हमें बचाव कर सको है और धान के अच्छा उत्पादन ले सको है। अब यही बीच में एक सुनो है एक विज्ञापन।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: चौदह अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद कर और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
0: तो देखा अभी हम इन जरूरी संदेश भी सुन लिए हैं और अब फिर चर्चा करें धान के विशेष पैदावार कैसे लिया जाए। रोपाई से पहले का आकार ध्यान दिए चाहिए, रोपाई के बाद के तभी हमने चर्चा कर लिया, लेकिन सबसे पहले किसान जब अभी धान के रोपाई करे थथिन अजय नकथिन करे तो अभी समय भी बचल है धान के रोपाई के, खासकर सावन के महीना तक तो धान के रोपाई बढ़िया हुआ है। एकर में जब भी हम धान के रोपाई करोगे तो खेत में सबसे पहला है कि ए आरी जरा को थे मेड़ को थे जरूर बंधाई करे के चाहिए। बंधाई करे का हुआ जब पानी तुहर अगर गिरतो तो कोई पानी जम के रहतो, बहुत ऐसा हो पुराना आयर रहा में चूहा लगल रहा जकर चलते हम इनके सब खेत के आयर बह जा पानी गिरो तो, और पानी जब ना रहो तो धान के उत्पादन कम होतो। तो एक मेड़बंदी करना बहुत जरूरी है। उकर बाद देखा कि धान में अगर घास तुहरा खर पतवार के नियंत्रण करे हो सबसे पहले कि धान खेत के अगर तू जोताई कर ला, जोताई करे के बाद एक बार ओकरा जोत के बढ़िया से पाटा दे के तीन चार दिन छोड़ दा, चार से पाँचवें दिन के बाद जो हो धान के फिर कदवा करके धान के बिहन लगावे के चाहिए। तो उकर से कहा हुआ है कि धान अच्छा ग्रोथ हो तो बीमारी ना लगतो, और देखा कि उकर में सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि बीमारी से थोड़ा बचाव हो तो एकर अलावे धान का उत्पादन अच्छा हो तो अधिक मारे तो है ना। और एकर में एक चीज़ और बता देते, धान रोपाई से पहले हम जैसे DAP की जो हम खाद प्रबंधन करो ओकरा सबसे पहला बात है खाद प्रबंधन दो तीन तरह से हम क्यों हुए। सबसे पहले कि अगर यदि एक एकड़ धान के बुआई करे थी रोपाई तो ओकर में 30 किलो DAP 15 किलो पोटाश और 15 किलो यूरिया और देखक 4 से 5 किलो डिजेंट ये मिला के ओकर में धान में खेत में छिड़काव करके तब धान के रोपाई किसान के करे के चाहिए। एक से कहा हुआ है कि धान के विकास अच्छा हुआ है और जल्दी हरापन लाव है, अधिक मुआरा हुआ अधिक कल्ला हुआ है तो एक उत्पादन अच्छा हुआ है और बीमारी से लड़े के क्षमता भी बनल रहो है। तो अगर हम छोटे छोटे बात पर ध्यान दिए तो हम धान के उत्पादन बढ़िया ले सको ये सब किसान भाई बहन। अब देखा कि अब एक और बात चर्चा करूँ कि अभी हम के खेत में देखल जा लगल हो गाजर घास जहाँ तहाँ हो जाए तो रोड के किनारे पहले हो लो लेकिन अब खेत में भी होवे लगल हो तो भाई एक से बचे खातिर बहुत कुछ उपाय है। तो यार यही बीच में आज एगो जानकारी लेकर आवल है, बहुत अच्छा जानकारी देथिन गाजर घास के नियंत्रण एवं फसल और पशु और मानव जीवन के नुकसान से बचाव के बारे में आरी जानकारी दे थथिन डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा KVK चतरा और इनखर से बातचीत करते हैं वीरेंद्र साहू। तो ये जानकारी भरल बात के सुनो ये और समझो ये।
3: किसान भाइयों जो आज हम लोग चर्चा करेंगे गाजर घास के संबंध में और इसका एक पखवाड़ा भी मनाया जाएगा 16 से 22 अगस्त तक, तो इसमें विशेष आज हम लोग बातें करेंगे। आज हमारे साथ वरीय वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं

0: रविंद्र मोहन मिश्रा केबीके चतरा में अभी पदस्थापित भी हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपको स्वागत है, जोहार है डॉक्टर साहब। जो हम लोग चर्चा करेंगे गाजर घास के बारे में, तो गाजर घास क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों होते जा रहा है, खास करके पशु जीवन में और मानव जीवन में भी देखा जा रहा है और खास करके खेतों में भी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि ये गाजर घास क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों है, तो इस पर हम लोग संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे।
1: सभी को नमस्कार जोहार। गाजर घास को अन्य नामों से भी हम लोग जानते हैं। गाजर घास को कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं और इसे अंग्रेजी में पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस भी कहते हैं। और यह घास न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में एक बहुत ही हानिकारक एवं तेजी से फैलने वाला एक खरपतवार के रूप में हम लोग जानते हैं। पहले आपने सही कहा था कि रोड के किनारे देखी जाती थी और अभी ये खेतों में, सड़क के किनारे, खाली जमीन में, चरागाह में, घरों के आसपास हर जगह आप देखिएगा कि गाजर घास बहुत तीव्र रूप से फैलता है और बहुत ही आसानी से ये उगता है। पार्थेनियम न केवल आपका फसल के लिए बल्कि मनुष्य, पशु, पर्यावरण एवं जैव विविधता के लिए भी एक भयंकर माने एक खतरा के रूप में उभरा हुआ है। तो सबसे तेजी से फैलने वाला और कृषि योग्य में भूमियों में बहुत तेजी से फैलने वाला ये एक खरपतवार है जिसका हमें निराकरण ढूंढना है। और 16 से 22 अगस्त का ये जो पखवाड़ा है यह जागरूकता पखवाड़ा के रूप में ही हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है।
0: अब डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात आप बताएं, कहे कि आज से 10 साल पहले हम लोग गाजर घास कहीं कहीं देखने को मिलता था रोड के किनारे, लेकिन अभी क्या है ना कि मतलब आपका मैदान में भी, खेत में भी, जो फसल योग्य जमीन उसमें भी आता है आप तरीके से, मतलब इसका देखा जा रहा है। तो इसको हम सबसे पहले कि इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, गाजर घास को नियंत्रण कैसे करेंगे, इस पर थोड़ा हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे।
1: देखिए, नुकसान की बात अगर जब हम लोग कहते हैं तो फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। जो खेत में फसल होने चाहिए वहां आसानी से गाजर घास उग जा रहे हैं और मिट्टी के लिए प्रतिस्पर्धा का रूप ये कर रहा है। जैसे पौधा को उर्वरक चाहिए, मिट्टी से पौधा उर्वरक लेगा, लेकिन वो गाजर घास अधिक से अधिक पानी और पोषक तत्वों का शोषण कर रहा है। और खेत में जो उपयोगी पौधों की वृद्धि होनी चाहिए उसके जगह में गाजर घास उसका रिप्लेस कर ले रहा है। और कोई भी खाली जमीन में जहाँ पे चारागाह होना चाहिए, पशुओं के लिए अच्छे चारा वहां उगने चाहिए, वहां गाजर घास आसानी से उग जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक संकट है हमारे कृषि जगत के लिए। और इसमें जो नियंत्रण के उपाय की अगर हम लोग बात करें तो इससे हम आसानी से हाथ से उखाड़ सकते हैं। ध्यान यह रखनी है क्योंकि यह इंसानों को भी हानिकारक है, तो हाथ में ग्लव्स पहन के, फुल पैंट पहन के और फुल कपड़ा पहन के ही आप इसको,
0: आपका कहना है कि हम जब भी गाजर घास उखाड़े तो पूरे शरीर में ढका हुआ होना चाहिए शरीर को, और हाथ में ग्लव्स होना चाहिए और पैर में जूता होना बहुत जरूरी है, तभी गाजर घास को हम हाथ लगाएंगे।
1: और एक बार फूल और बीज जब बन जाता है पौधे में तो वो बहुत तेजी से हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से, अन्य कई जो माध्यम है उसे ये फैलाव करता है। तो प्रयास किसानों का ये रहे कि फूल फल और बीज आने से पहले इसका उखाड़ कर हम लोग फेंकें, और बीज बनने से पहले इसको उखाड़ फेंकें। और तीसरा है कि जो जैविक एक पद्धति भी है, जैविक तरीके से भी इसको करते हैं, जिसको पार्थेनियम बीटल आता है, एक तो कीट आता है, उससे भी इसका नियंत्रण जैविक पद्धति से किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि ये पद्धति से करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से वो जैविक नियंत्रण के जो उपाय हैं उसके लार्वा हैं या वयस्क पार्थेनियम की जो वो हैं पत्तियां हैं वो सारी उपलब्ध होंगी, तो ये किसानों के लिए थोड़ा जटिल है। इसके लिए कृषि विशेषज्ञ के साथ संपर्क करें, विभागों के साथ। और रासायनिक पद्धति भी है, पार्थेनियम को रासायनिक पद्धति से भी उन्मूलन किया जा सकता है, लेकिन मेरे अनुसार जो सबसे बेहतर होगा कि पार्थेनियम को फूल और बीज आने से पहले उखाड़ फेंके, जड़ से उखाड़े, और उखाड़ने से पहले थोड़ा मिट्टी में नमी हो तो आसानी से उखड़ जाता है, मिट्टी में नमी नहीं हो तो बहुत सख्त रहता है, वो टूट जाता है और फिर उससे उग जाता है। तो इसको अभी बरसात के समय में एकदम आसपास खेतों में जितना फैला हुआ है आप उसको उखाड़े, अभी तो फूल आ चुके हैं, लेकिन उसको उखाड़ कर और उसको दफनाना है,
0: उसको गड्ढे में डाल के मिट्टी ढक देना है।
1: उसको एक जगह जमा करके ऐसे ही छोड़ नहीं देना है।

0: क्योंकि वो फिर उसे बीज झड़ेंगे और वो जैसे मौसम खुलेगा, हवा चलेगी या हम लोग खेती का कार्य करेंगे तो वो बीज फिर से फैल जाएगा, बारिश के पानी से भी फैल सकता है। तो उसको क्या करें, एक जगह इकट्ठा करें, इकट्ठा करके उसको बांध के अच्छे से, उसे आप कंपोस्ट खाद जो बनाते हैं जहाँ पे गोबर डालते हैं या अन्य जो जैव पदार्थ डालते हैं उसी में उसको भी डाल के सड़ा दीजिए और वो पूर्ण रूप से 3 से 4 महीना उसको ढक के रखिए, मिट्टी से दबा के रखिए, तो उसके जो बीज है वो भी नष्ट हो जाएंगे और पूर्ण रूप से वो सड़ गल जाएंगे। और वो एक फायदा ये होगा कि वो कंपोस्ट के रूप में जब आप खेत में प्रयोग करेंगे तो आप जैव उर्वरा भी अपने खेतों में बढ़ाएंगे। तो ये एक अच्छा पद्धति किसानों के लिए हो सकता है, लेकिन एक बार में ये हटने वाला घास नहीं है,
1: यानी कि इसको बार बार जब भी होता है
0: जागरूक, इसीलिए हाँ सबको जागरूक होना है खेत में, घर के आसपास ये नहीं सोचना है कि कोई और नहीं उखाड़ रहा मैं क्यों उखाड़ू, आपके इर्द गिर्द जितना है उसका जरूर आप नियंत्रण करें, इस पे जरूर आप ध्यान दें।
1: चलिए डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी बात बताया, लेकिन गाजर घास से मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और पशु जीवन में क्या इससे प्रभाव होता है और फसलों में क्या नुकसान होता है, इसका बारे में आप संक्षेप में जानकारी दें।
0: तो जैसे पार्थेनियम के संपर्क में आने से देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में त्वचा में मैंने जैसे उसके चमड़े में एलर्जी आ जाता है, खुजली होता है, लाल चटके हो जाते हैं और कभी कभी ज्यादा जो उसके जो पोलन है जिसको हम लोग पराग बोलते हैं उसे सांस लेने में भी कठिनाई आ सकती है ना, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं कि हमेशा दस्ताना पहन के, हो सके तो मास्क लगा के, पूरा कपड़ा पहन के हाथों में, है ना, फुल पैंट शर्ट पहन के ही उसपे आप काम करें। और पशुओं में खास करके देखा जा रहा है कि जो चरागाह जहाँ हमारे पशु घास के लिए चरने जाते थे वहां आज घास के जगह पार्थेनियम यानी गाजर घास इतना ज्यादा फैला हुआ है, तो उसके चलते पशुओं में भी एलर्जी देखी गई है, उसके और सारी समस्याएं स्वास्थ्य संबंधित भी पाई जा रही हैं। और इसके चूंकि वो चुन के जब घास चरने जाते हैं तो उसके साथ पार्थेनियम का भी कंजम्पशन वो कर ले लेते हैं, तो उससे भी काफी हानि पहुंचता है पशुओं में। तो सभी को ये सुझाव है कि जागरूक होते हुए इसका जड़ से उखाड़ फेंकना है इस इसके, और जहाँ पे पार्थेनियम यानी गाजर घास उग रहे हैं उस जगह पे आप कोई चारा घास वगैरह लगा सकते हैं या बहुवर्षीय चारा आप लगा सकते हैं ताकि बकरी पालन या पशुपालन में उससे भोजन के रूप में उसका प्रयोग किया जा सके, है ना। और हर संस्था को जागरूक होना है, स्कूली बच्चों को जागरूक करना है, सार्वजनिक स्थलों में जो समाज सेवी हैं उनको जागरूक करना है और इसके बारे में बताना है टीचर्स में।
1: मुझे क्या ये जैसे मतलब मानव में जब होता है या जानवर में हो जाता है इसका संपर्क में आने से तो क्या लक्षण आने लगता है?
0: लक्षण जैसे खुजली होना, लाल लाल धब्बा हो जाना, चटका हो जाना और इस तरह के एलर्जिक रिएक्शन होंगे और कभी कभी जानवरों में सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है। और ज्यादा अगर कहीं ऐसे तो मवेशी जानबूझ के इसको सेवन नहीं करते हैं, लेकिन चरने के क्रम में हो सकता है कि कुछ गाजर घास भी वो खा लें तो उससे भी उसको शरीर में क्षति तो होगी ही, चूंकि यह जहरीला है। इसके कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो मानव में और पशुओं में हानि पहुंचाते हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब बताए, और गाजर घास से हम कैसे निजात पाएंगे तो बहुत अच्छे संक्षेप में आप जानकारी दिए। तो इन्हीं सब गेबी के चतरा में अभी पद स्थापित भी हैं, हम खेती बारी में आप जब बहुत अच्छी आप जानकारी दिया कि नमस्कार जोहार।
2: तो देखा कि अभी कितना बढ़िया गाजर घास के नियंत्रण करे के बारे में हम इन सुन लिए हैं और ये जानकारी दलते हैं डॉक्टर रविन्द्र मोहन मिश्रा और बात करते हैं वीरेंद्र साहू। अब देखा कि एक हम इन सुने एक प्यारा सा गीत, एक बाद

तो देखा कि अभी हमने एक गीत सुन लिए हैं, लोकगीत, और बहुत ही अच्छा गीत सुन लिया। अब चलो आज के बाजार के भाव, खास करके हमारे हजारीबाग के क्षेत्र में बाजार के सब्जी के रेट का है, ओकर बारे में आज हमने अभी चर्चा करूँ। लाल आलू 18 से 20 रुपया प्रति किलो, सफ़ेद आलू 12 से 15 रुपये किलो, प्याज 25 से 30 रुपया प्रति किलो, फूलगोभी 50 से 60 रुपया प्रति किलो, पत्ता गोभी 30 से 40 रुपया प्रति किलो, पटल 25 से 30 रुपया प्रति किलो, भिंडी 20 से 25 रुपया प्रति किलो, नेनुआ 20 से 22 रुपया प्रति किलो, कद्दू 15 से 20 रुपया प्रति किलो, हरा मिर्च 60 से 70 रुपया प्रति किलो, शिमला मिर्च 80 से 90 रुपया प्रति किलो, गाजर 30 से 40 रुपया प्रति किलो, बीट 30 से 40 रुपया प्रति किलो, सेम 90 से 100 रुपया प्रति किलो, बीन 30 से 40 रुपया प्रति किलो, मूली 10 से 15 रुपया प्रति किलो, धनिया पत्ता 100 से 120 रुपया प्रति किलो, अदरक 100 से 120 रुपया प्रति किलो, खीरा 20 से 25 रुपया प्रति किलो, टमाटर 25 से 30 रुपया प्रति किलो, लाल साग 15 से 20 रुपया प्रति किलो, पालक साग 15 से 20 रुपया प्रति किलो। और ये भी लो आज की बाजार भाव। और अब आओ आज के मौसम के बारे में जानकारी दें, तो सबसे आज जो है अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, आद्रता जगह नमी कहल जाए 87%। कल के मौसम जो हो मतलब हल्का बादल छावल रहतो, और कल के जो तापमान हो अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम यानी कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस। ये रहलो आज के बाजार भाव और मौसम की जानकारी। अब चलते चलते हम बात करो ये बरसात के मौसम में सब्जी में लगे वाला प्रमुख कीट एवं ओकरा कैसे नियंत्रण करवें। खास करके अगर हम इन पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैगन या टमाटर या मिर्चा के खेती करोगे, तो सबसे ज़्यादा अभी कीड़ा जो देखल जाए जाली वाला कीड़ा, जरा लार्वा भी कीड़ा कहल जाए, तो उक्र में कहा कि जैसे हल्का जाली बना दो तो पत्ता में, और एक सफ़ेद सफ़ेद टाइप के अंडा टाइप के, और धीरे धीरे वो कीड़ा के रूप में परिवर्तन हो जाए। तो एक से बचे खातिर किसान के सबसे पहले अभी के समय में सबसे ज़्यादा सब्जी में बीमारी लगे के संभावना, कीड़ा लगे के संभावना रहत, एक में किसान कुछ कुछ ऐसा दवा है जैसे कि ओकरा हमने स्प्रे करो है तो ओकरा बचा सके, जैसे कि एम्पलीगो 1 ml 3 से 4 लीटर पानी में मिला के अगर ओकरा स्प्रे करो है 15 से 20 दिन के अंतराल में, तो एक से वो जो है खास कर जो बोलियो कि मतलब जाली वाला कीड़ा ओकर से मतलब कंट्रोल हो है और ओकर से ना हो एक संभावना। एक अलावे जैसे कि अभी है रिलैक्सिल एक दवा वो है, खास करके जिसे नया नया तरह के देखा तू फफूंद लगे लगे पौधा में, पौधा जले लगे पानी से, इकरा 8 से 7 दिन के अंतराल 10 दिन के अंतराल एक बार एकरा छिड़काव जरूर किसान के करे के चाहिए। और देखा यही सब जानकारी के साथ हम तरह तो जाग भी बेरा हुए, लेकिन कुछ आर बहुत कुछ हले जानकारी, लेकिन तो सबसे पहले कि हम इन तब बात कर लिए कि कीड़ा एकरा कैसे बचा सको ये है ना। एक अलावे देखा कार्यक्रम किसान वाणी से जायक भी बेरा हो गए खेती बाड़ी से, तो हमरा वीरेंद्र के अनुमति दा जोहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेती बारी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का यह संबोधन आज शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। इस विशेष प्रसारण के कारण आकाशवाणी रांची से शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आज अपने निर्धारित समय से पहले यानी शाम 7:45 बजे प्रसारित किए जाएंगे। देश कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से समारोह की अगुवाई करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज दुमका स्थित राजकीय मूक बधिर आवासीय विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया और उनकी शिक्षा सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये बच्चे समाज के महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं और इन्हें समान अवसर और सहयोग का माहौल देने के लिए परिवार, समाज, विद्यालय और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी रहा। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आंदोलनरत छात्रों ने पुतला दहन कर विरोध जताया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की प्रशासन ने मेडिकल जांच कराई। छात्र कल राजधानी में तिरंगा मार्च निकालेंगे। बाल कल्याण समिति बोकारो के प्रयास से असम से भटककर झारखंड पहुंचे 2 बच्चों को उनके परिजनों से मिला दिया गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लीला देवी ने बताया कि दोनों बच्चे ट्रेन से बोकारो पहुंचे थे और भाषा की समस्या के कारण अपना पता नहीं बता पा रहे थे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना।

कार्यक्रम अंगना सुन रही आप सभी बहनों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार जोहार। बहनों आज है 14 अगस्त, यानी हमारा गौरव, हमारे देश, हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। ये वही तारीख है जब भारत माँ ने अनेकों वीर सपूतों को खोकर देशवासियों की आंखों में आजादी की भावना की ललक पैदा की थी, इंतजार पैदा किया था। देशवासियों के दिलों की धड़कनों को सामान्य गति से ज्यादा धड़काकर आजादी की पहली सुबह के एहसासों से भरकर आंखों की नींदे गायब कर दी थी। आजाद भारत की प्रतीक्षा में जब देशवासी दुख और खुशी दोनों की एहसासों के कश्मकश में रात गुजार रहे होंगे, ये वही पूर्व संध्या है। स्वतंत्रता या आजादी पाने के सपने ने भारत के वीर सपूतों के संघर्ष और बलिदानों की आंखों की सुनी अनसुनी गाथाओं को इतिहास में समेटे हुए है। देश की आजादी के जुनून में कई देशवासियों ने, कई वीर सपूतों ने, भारत माँ के सपूतों ने अपने परिवार जनों की फिक्र किए बिना अपना बलिदान दिया और देश की आजादी

लेकिन पंजाब के कई घरों में खुशी नहीं डर का माहौल था। लोगों को पता ही नहीं था कि कल उनका गांव किस देश के हिस्से में चला जाएगा। बंटवारे का यह मंजर इतना भयावह था कि लाखों घर सूने हो गए, लाखों लोग बेघर हो रहे थे। लोग घर, जमीन, संपत्ति, परिवार सबको छोड़कर बेतहाशा भागे जा रहे थे, जिन्हें अपने अगली मंजिल का भी पता तक न था। बंटवारे के दौरान हुए दर्द, हिंसा और लाखों लोगों के पलायन व बलिदान की दास्तां की याद में भारत में वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इस दिवस को मनाया जा रहा है। बहनों, स्वतंत्रता या आजादी पाने के सपने ने भारत के वीर सपूतों के संघर्ष और बलिदानों की अनेकों सुनी अनसुनी गाथाओं को इतिहास में समेट रखा है, लेकिन इस आजादी के जुनून ने न सिर्फ देश के पुरुष वर्ग को संघर्ष और बलिदान के लिए प्रेरित किया था, बल्कि देश की कई ऐसी वीरांगनाओं को भी प्रेरित किया था जिन्होंने आजादी के संघर्ष बलिदान यात्रा में भारतीय महिलाओं के अमर योगदानों को वाकई अमर कर गई और उनके योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के योगदान को आज के इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे उन्हें नमन करते हुए, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: 14 अगस्त 1947, भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर, परिवार, जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में 1 मिनट का मौन धारण करें।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया

जरूरी संदेशों के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम अंगना में स्वागत है। बहनों, अब बात उन वीरांगनाओं की जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहनों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर ऐतिहासिक और सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं ने रैलियों, गुप्त रेडियो में संचालन, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और सशस्त्र संघर्षों में अभूतपूर्व साहस दिखाया। जन आंदोलनों में जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर रैलियों का नेतृत्व किया और गिरफ्तारियां दी। स्वदेशी वस्तुओं की को अपनाकर खादी का प्रचार किया और शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने दिए। कई महिलाओं ने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को शरण दी, हथियार पहुंचाए और भूमिगत रेडियो स्टेशन चलाकर क्रांतिकारी गतिविधियों में अपनी भागीदारी निभाई। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, हजरत महल, मैडम कामा, कनकलुआ बरुआ, मतंगिनी हाजरा, रानी चेनम्मा, सुचेता कृपलानी, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फूले, कस्तूरबा गांधी, फातिमा शेख, रुक्मणी देवी, उषा मेहता, बीना दास, प्रीतिलता, कल्पना दत्त, कमला दास गुप्ता, ये ऐसे नाम हैं। प्रभा घोष, ये ऐसी वीरांगनाएं हैं, ऐसे नाम हैं। इन वीरांगनाओं के जो नाम हैं वो इतिहास के पन्नों में बहुत कम दर्ज हो पाए हैं, लेकिन इनके योगदान अतुलनीय हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राज्य हड़प नीति का विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ अदम्य साहस के साथ युद्ध को भला कौन भुला सकता है। रानी चेनम्मा, जिन्होंने कर्नाटक के किन्नूर कित्तूर की रानी रहते हुए वर्ष 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ कित्तूर विद्रोह का नेतृत्व किया। सरोजनी नायडू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं रानी गायदिनुल हिराक ने हिराक आंदोलन से जुड़कर ब्रिटिश शासन का विरोध किया और कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के साथ असहयोग आंदोलन में भाग ली। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त तरीके से कांग्रेस रेडियो का संचालन कर स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित किया। बीना दास ने वर्ष 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में बंगाल के तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर स्टेनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया। मातंगिनी हाजरा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। हाथों में तिरंगा थामे और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए गोली लगने से उनकी हुई मृत्यु इस बात का प्रतीक थी कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिलाओं की भूमिका कितनी अहम रही होगी। वहीं हम आपको बताएं तो ऐसी और भी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन अपनी साहस और काबिलियत का परिचय दिया और देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम आपको बताएं, विष्णी देवी शाह जो थी, इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में काफी अहम भूमिका निभाई। विष्णी देवी शाह का जन्म 12 अक्टूबर 1902 को वर्तमान उत्तराखंड के बागेश्वर में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं, जो 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी गई और दुर्भाग्यवश 16 वर्ष की उम्र में वे विधवा भी हो गईं। विधवा होने के कारण उन्हें ससुराल और मायके दोनों जगह से बहिष्कृत कर दिया गया और इसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक कार्यों को समर्पित कर दिया। वहीं नाम सुशीला दीदी का भी आता है तो इन्होंने सुशीला देवी के दीदी के नाम से मशहूर सुशीला मोहन भारत की पहली क्रांतिकारियों में से एक थीं। 5 मार्च 1905 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में जन्मी सुशीला दीदी की शिक्षा जालंधर के आर्य महिला कॉलेज में हुई थी, जहां से वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुईं। प्रीतिलता वाद्देदार, इनका 5 मई 1911 को बांग्लादेश के चटगांव में
जन्म हुआ

0: प्रीतिलता वादेदार क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं। कॉलेज के समय में ही वे क्रांतिकारी समूह दीपाली संघ में सम्मिलित हो गईं और बाद में जब वे उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता गईं तो सूर्य सेन के संपर्क में आईं और 1930 के चटगांव सशस्त्र गार छापे के बाद वे सूर्य सेन के साथ स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय भूमिका निभाईं। ऐसी कई महिला क्रांतिकारी रही हैं बहनों, पार्वती गिरी का भी नाम इसमें शामिल है, जिनका जन्म 19 जनवरी सन 1926 को उड़ीसा के बरगढ़ जिले के समलाई पदार गांव में हुआ था। तब यह गांव राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। ब्रिटिश शासन के विरोध की रणनीति तैयार करने के लिए होने वाली बैठकों में पार्वती अक्सर उनके अपने चाचा रामचंद्र गिरी के साथ शामिल होती थी और यहीं से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की उन्हें प्रेरणा मिली और वे सक्रिय भूमिका निभाती चली गईं। तो महिलाएं केवल सहभागी ही नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता की शिल्पकार भी रहीं। उन्होंने साहस, रणनीति, कार्रवाई और सामाजिक सुधार को मिलाकर स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा तय की। उनका योगदान राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक मुक्ति में बेहद महत्वपूर्ण है। और अब कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं एक भेंट वार्ता। वार्ता का विषय है महिलाओं के स्वास्थ्य में संतुलित खानपान का महत्व। भेंट वार्ताकार हैं राधा मिश्रा और भेंट करता है अंजलि सिन्हा। और इस भेंट वार्ता के बाद हम जानेंगे कि गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी आवश्यक देखभाल, स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल आवश्यक होती है और उचित खानपान क्यों आवश्यक है गर्भावस्था के दौरान मातृ स्वास्थ्य के लिए। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं इस भेंट वार्ता को।
1: बहनों, आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं आहार विशेषज्ञ राधा मिश्रा जी, जो महिलाओं के संतुलित आहार के बारे में विस्तार से बताएंगी। तो राधा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले आप बताइए कि संतुलित आहार किसे कहते हैं?
2: संतुलित आहार, जैसे आजकल के टाइम पे लोग समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने खाना खा लिया या फिर सिर्फ एक टाइम का खाना अच्छे से खाया उसके बाद छोड़ दिया, सिर्फ दाल चावल में समझते हैं कि हमारा वो संतुलित आहार है। बट आजकल के टाइम पे संतुलित आहार में आपको अगर सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हो या सुबह का नाश्ता जो ले रहे उसमें आपको हर सोर्सेस शामिल होने चाहिए। जैसे दाल हो गए आपका, कार्बोहाइड्रेट से चावल, या फिर जैसे सुबह के नाश्ते में रोटी पोहा ऐसा करके ऐड कर सकते, फल होने चाहिए, दूध होने चाहिए। ये सारे स्रोत अगर आप एक खाने में एक टाइम के खाने पे ऐड करते तो इसको हम संतुलित आहार कहेंगे।
1: अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि ये जो संतुलित आहार है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होती है?
2: नहीं, वैसे तो ये संतुलित आहार महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग नहीं होते, सबके लिए सेम ही होता है। बट जैसे महिलाओं के हर स्टेजेस में या हर स्तर पे कहेंगे हम काफी बदलाव आते हैं, तो वहां जाके थोड़ा महिलाओं का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए उनको अपने खान पान पे पुरुषों के मुताबिक। ऐसे तो जनरली सबको, या फिर हम कहेंगे कि सामान्य तौर पे सबके लिए एक ही होते हैं। जैसे लोगों को अच्छी मात्रा में सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोटीन या डेयरी के स्रोत अपने दैनिक आहार में शामिल करना चाहिए। संतृप्त वसा या ट्रांस वसा, अत्यधिक सोडियम या अत्यधिक चीनी के उपयोग से बचना चाहिए हमें।
1: और जैसे होता क्या है कि महिलाओं के जीवन में कुछ बदलाव भी आते हैं समय समय पे, तो उस समय खान पान पर क्या ध्यान देना चाहिए?
2: समय समय पे बदलाव आते हैं, जैसे मासिक धर्म हो गया, गर्भावस्था हो गई, या फिर मासिक धर्म की समाप्ति पे। अगर हम मासिक धर्म की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि आयरन का बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो उस टाइम उनको आयरन के स्रोत पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब जब गर्भावस्था की बात आती है तो बच्चे को पोषण माँ के खान पान से ही मिलता है, तो माँ को ऐसा करना चाहिए कि वो अपना खाना जो है एकदम संतुलित आहार, जैसे हर तरह के फल, सब्जियां, साबुत अनाज उनको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। बच्चों को कैल्शियम चाहिए, उनके दांतों और हड्डियों के लिए जरूरी है। विटामिन डी चाहिए होता है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, या फिर बच्चों को जब वो माँ के गर्भ में रहते हैं तो उस समय उनको एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम की डेफिशिएंसी हो सकती है, उससे भी वो बचाव करता है।
1: तो अभी जैसे आपने कहा कि मासिक धर्म शुरू होने पर किशोरियों को अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, आयरन लेनी चाहिए, तो आयरन के क्या क्या स्रोत हैं वो हमारी बहनों को बताइए।
2: आयरन के स्रोत में आप हरी सब्जियां जैसे अमरंथ वगैरह, पालक हो गए या खजूर हो गया, या फिर जैसे आप तिल के जो बीज होते हैं उनको अपने खान पान में शामिल कर सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, और अंडे, खजूर, आजकल तो ब्रेड वगैरह भी काफी आयरन से फोर्टिफाइड होकर हमको मिलते हैं।
1: और ये जो हम लोग खान पान लेते हैं इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है, तो उसे भी हम उचित मात्रा में लेंगे तो ही फायदा होगा, तो उसकी मात्रा के बारे में आप बताइए।
2: मात्रा की अगर बात करें तो अगर हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, अलग अलग पोषक तत्वों की अलग अलग मात्राएं होती हैं, तो अगर हम जैसे कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम हमारे बॉडी में बहुत हाई कंसंट्रेशन, बहुत अधिक तौर पे पाया जाता है और उनका काम भी बहुत ज्यादा ही होता है हमारे बॉडी में। जैसे कैल्शियम जो है वो मस्कुलर फंक्शन मेंटेन करता है, दांतों एवं हड्डियों को मजबूत बनाता है और उनके फॉर्मेशन पे भी मदद करता है। और साथ ही साथ जब महिलाओं का जब मासिक धर्म की समाप्ति होती है उसके 50% जो है कैल्शियम लॉस शुरू हो जाता है, तो हमको क्या चाहिए होता है कि वो महिलाएं अपने 30 वर्ष की आयु से ही कैल्शियम इंटेक को बढ़ा लेना चाहिए। कैल्शियम इंटेक आपका जो रहना चाहिए वो अगर आप नॉर्मल हैं तो आपको 850 mg कैल्शियम पर डे लेना चाहिए। अगर कोई महिला अगर गर्भावस्था में है या बच्चे को फीड करवा रही है तो उनको 1000 से 1200 mg कैल्शियम हर दिन लेना चाहिए। अगर इनके स्रोतों की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें दूध, चीज, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे हो गई भिंडी, पालक और ड्रमस्टिक जो हमें सहजन कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आमंड्स वगैरह से मिलता है। फिर अगर हम विटामिन डी की बात करेंगे तो ये क्या करता है कि हमारे वैसे ही सेम कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, बोन के फॉर्मेशन में मदद करता है, क्योंकि एक टाइम के आते आते बोन जो होते हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाते हैं, काफी टेंडर हो जाते हैं, तो इस वजह से विटामिन डी भी हमको लेना चाहिए, अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। वैसे तो विटामिन डी हमको सूरज से मिल जाता है, सूरज की किरणों से मिल जाता है, बट उतना, और आजकल तो काफी पॉल्यूशन वगैरह है जिसकी वजह से हम हमेशा नहीं रह सकते, या फिर तो इसके लिए हमको अपने खाने में कम से कम 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी लेना चाहिए, जिसके स्रोत है जो ऑयली फिश हो गए और अंडा और फोर्टिफाइड मिल्क, फिश लिवर ऑयल, और मछलियों में जैसे ट्यूना, सार्डिन्स, ये सब मछलियां हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है महिलाओं के लिए आयरन, क्योंकि महिलाएं ना अपने खाने पे ध्यान नहीं देती और ऐसे कुछ भी खा लेती हैं खाना, तो हमको चाहिए कि महिलाएं का आयरन देख भी नहीं पाती, उनको पता भी नहीं चलता उनके खाने से आयरन कब चला जाता है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है हमको कि आयरन अच्छी मात्रा मिले, और आयरन को अच्छी मात्रा मिले और साथ ही हमको विटामिन सी के सोर्सेज भी अपना डाइट में ऐड करने चाहिए ताकि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए, जिसके लिए हम लोग तिल के सीड्स, जागरी, हरी पत्तेदार सब्जियां, मीट, खजूर, अंडा, और पहले मैंने बताया आजकल सब कुछ फोर्टिफाइड होके भी मिलता है तो बाजार से हम वो भी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल
2: हाँ। फिर हम बात कर सकते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी आजकल जैसे तो कोरोना टाइम है तो विटामिन सी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसको हमको डाइट में ऐड करना ही चाहिए ताकि ये जो इन्फेक्शंस हमको बीमार करते उनसे मदद करने में ये हेल्प करता है। साथ ही एक प्रोटीन होता है कॉलेजन होता है, उसको भी विटामिन सी बनाने में मदद करता है। नॉर्मली लोगों को अगर कोई नॉर्मल है तो उनको 57 mg पर डे विटामिन सी लेना चाहिए, अगर कोई महिला गर्भावस्था में है या फिर कोई नर्सिंग मदर है तो उसको 60-80 mg विटामिन सी हर दिन अपने डाइट में लेना चाहिए। उसके सोर्सेज होते हैं जैसे आंवला हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, और जैसे अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन का फिर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, वो हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सेल्स के निर्माण में मदद करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में हर सेल्स बनते हैं और उनका रिपेयर होता है और वो स्क्रीप भी हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम अच्छे से अच्छे मात्रा में प्रोटीन का अपने डाइट में शामिल करें।
1: बिल्कुल,
2: तो हमको 55 mg प्रोटीन हर दिन लेना चाहिए, और 55 g प्रोटीन अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 50-80 mg हर दिन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सही है। और उसके बाद है, कभी कभी होता क्या है कि कुपोषित हो जाते हैं महिलाएं, है ना, तो उस कुपोषण से बचने के लिए वो क्या करें कि वो अच्छे रहे, स्वस्थ रहे।
2: अगर महिला जैसे कुपोषित हो जाती हैं क्योंकि वो जस्ट बिकॉज खाना पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो उनको चाहिए कि पहले तो जो मैंने न्यूट्रिएंट्स के जितना बताया उनको उनके डाइट में शामिल करना चाहिए, और उनको कम से कम अपना अगर अगर पूरे दिनचर्या की बात करेंगे हम उनकी, तो उनको कम से कम 47% हरी सब्जियां

0: ना डाइट में लेनी चाहिए, 45% दाल अपने खाने में ऐड करना चाहिए, 46% फलों को शामिल करना चाहिए और 36% जो भी प्रोटीन के सोर्सेज हो गया जैसे मीट, मछली, अंडा, इन सब चीजों से अपना डाइट को मेंटेन करना चाहिए।
1: संतुलित आहार को लेकर कि महिलाएं संतुलित आहार कैसे लें और हर स्थिति में, हर स्टेज में वो स्वस्थ रहें, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। महिलाओं के स्वास्थ्य में संतुलित खान पान का महत्व, इस विषय पर भेंटवार्ता आपने सुना। भेंटवार्ताकार थी राधा मिश्रा और हमारी ओर से बातें कर रही थी अंजलि सिन्हा। तो भेंटवार्ता के बाद बहनों थोड़ा समय हमारे पास बच रहा है, तो हम बात करते हैं मातृ स्वास्थ्य और गर्भावस्था में उचित देखभाल की आवश्यकता क्यों है। बहनों, माँ बनना एक महिला को संपूर्ण नारीत्व का एहसास कराता है। यूं तो महिलाएं घर परिवार के सदस्यों की पूरी जिम्मेदारी उठाती रहती हैं, लेकिन खुद के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं, जबकि बीमार पड़ने या गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल भी किसी जिम्मेदारी से कम नहीं होती। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य रहना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु के उचित विकास के लिए प्रतिदिन लगभग उन्हें 30 अतिरिक्त कैलोरी और संतुलित आहार की आवश्यकता पड़ती है। इसमें प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, संतरे, बीन्स, दालें, अनार, पालक और सूखे मेवे, दूध, दही, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद, अंडे, सोयाबीन, ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं वे उन्हें गर्भावस्था के दौरान जरूर लेना चाहिए, ताकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और गर्भस्थ शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास जो है वो भी ठीक ढंग से हो पाए, ताकि माता और गर्भस्थ शिशु जो है वो स्वस्थ रह सके। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, नींद पर्याप्त रूप से लें और जूस, सलाद, फल, साबुत अनाज का सेवन भी जरूर करना चाहिए। कच्चा मांस, अत्यधिक चाय, कॉफी, शराब और जंक फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान, और बिना डॉक्टर के सलाह के फूड या अन्य तरह के जो सप्लीमेंट आते हैं बाजार में उन्हें कभी नहीं लेना चाहिए। आयरन और कैल्शियम की गोलियां डॉक्टरों के बताए अनुसार जरूर लें और डॉक्टरों के संपर्क में हमेशा रहें और अपनी और स्वस्थ रहें। और इन्हीं सब बातों के साथ ही कार्यक्रम अंगना से विदा लेने का वक्त हो चला। दीजिए श्वेता को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम अंगना। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है देशभक्ति गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म है शिकंदर ए आजम।

0: धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
1: मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में गाए फिल्म शहीद आजम के इसी गीत के साथ ही यही समाप्त होता है ये देशभक्ति गीत।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे शाम 7 बजे स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारत की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के जनता के नाम संदेश। तो कीजिए हमारे इन प्रसारणों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचे घर के
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें। PM सूर्य घर

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्र को करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को करेंगे संबोधित। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दुमका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे ध्वजारोहण। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 19 अक्टूबर को होगा। रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी। कल राजधानी रांची में तिरंगा मार्च निकालेंगे आंदोलनरत छात्र। और 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए रांची में खुला चयन ट्रायल 30 अगस्त को। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का यह संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह आयोजित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इधर उप राजधानी दुमका में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्य समारोह कल सुबह 9 बजे पुलिस लाइन मैदान में होगा, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज दुमका स्थित राजकीय मूक बधिर आवासीय विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया और उनकी शिक्षा सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये बच्चे समाज के महत्वपूर्ण हिस्सेदार हैं और इन्हें समान अवसर और सहयोग का माहौल देने के लिए परिवार, समाज, विद्यालय और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। रांची में आज विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और रांची विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित

0: कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने पदयात्रा निकाली। व्याख्यान में पद्मश्री बलवीर दत्त ने विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए कहा कि इससे वर्तमान और भावी पीढ़ी को सबक लेने की जरूरत है।
1: हमारे देश में आज जो स्थिति है वो देश विभाजन से पूर्व की स्थिति की तरह बनती जा रही है। भारत के बाद तो और भी बहुत से मुल्क जहाँ कोई स्वाधीनता आंदोलन हुआ ही नहीं, वे भी आजाद हो। देश का बंटवारा जो है ये आजादी से क्यों बड़ी जा रही है, और इसे हम लोगों को हमेशा सिमर बढ़ना चाहिए और नई पीढ़ी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा ऐसे हालात पैदा नहीं।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। नोटिस और दावा आपत्तियों का निष्पादन अब 14 अक्टूबर तक होगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर को किया जाएगा, जबकि ये तिथियां क्रमशः 4 सितंबर, 3 अक्टूबर और 7 अक्टूबर थीं। आयोग ने श्रावणी मेला, कृषि कार्य और मानसून को देखते हुए अवधि बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार किया है और प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्य में 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी रहा। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आंदोलनरत छात्रों ने पुतला दहन कर विरोध जताया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की प्रशासन ने मेडिकल जांच कराई। छात्र कल राजधानी रांची में तिरंगा मार्च निकालेंगे। उनकी मांग है कि 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर मामले की CBI जांच कराई जाए। राज्य CID मामले की जांच कर रही है और अब तक पूर्व अध्यक्ष समेत 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाल कल्याण समिति बोकारो के प्रयास से असम से भटककर झारखंड पहुंचे दो बच्चों को उनके परिजनों से मिला दिया गया है। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष लीला देवी ने बताया कि दोनों बच्चे ट्रेन से बोकारो पहुंचे थे और भाषा की समस्या के कारण अपना पता नहीं बता पा रहे थे।
2: बच्चा जो है खेल खेल में किसी ट्रेन में बैठ गया और वो जब पहुंचा बोकारो स्टेशन में तब RPF को चाइल्ड लाइन के माध्यम से पता चला ये बच्चा कुछ बता ही नहीं पा रहा, क्योंकि इनका चूंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम जो था ना इस वजह से समय थोड़ा ज्यादा लगा। लंबे टाइम के बाद ढूंढते ढूंढते हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक स्टेट से बात के क्रम में वहां के थाना से फिर ये पता चल पाया कि बच्चा वहीं का है।
0: गुड्डा में ज्वेलर्स लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। गुड्डा के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने बताया कि मामले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल अन्य पहलुओं की भी जांच शुरू कर दी है।
3: मिला जिसके वो हम लोग लाकर पूछताछ किए, सारा उद्भेदन हुआ कि कैसे कैसे उन्होंने रखा गया। उसी उद्भेदन के आलोक पर हम लोग को पता चला कि जो इसका मास्टरमाइंड कहने में सारा कुछ कह लीजिए ऐसा चीज करता है और जो सोना और चांदी खपाने का यही करता है।
0: बोकारो के 10 खिलाड़ियों का चयन ताइक्वांडो के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। ताइक्वांडो कोच ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 2 से 4 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होगी। झारखंड के चयनित खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे।
4: नेशनल के लिए हम टोटल 10 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो कि MP इंदौर में हो रहा है, जिसके लिए हमारी टीम 29 सितंबर को रवाना होगी जो कि 2-3-4 अक्टूबर को MP इंदौर में उनका टूर्नामेंट होगा। तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, अच्छे खेल भी रहे हैं, तो हम चाहते हैं बच्चे उससे आगे जो भी और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे भाग ले और हमारे देश का नाम रोशन करें।
0: हॉकी झारखंड 10 से 22 अक्टूबर 2026 रौरकेला में होने वाली 16वीं हॉकी

ई इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के लिए टीम का गठन 30 अगस्त 2026 को खुला चयन ट्रायल आयोजित होगा। यह ट्रायल रविवार सुबह 10:30 बजे से मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में होगा, जिसमें झारखंड के रहने वाले सभी पुरुष खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों के पास हॉकी इंडिया आईडी कार्ड और आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्र को करेंगी संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को करेंगे संबोधित। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दुमका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार करेंगे ध्वजारोहण। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 19 अक्टूबर को होगा। रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी। कल राजधानी रांची में तिरंगा मार्च निकालेंगे आंदोलनरत छात्र। और 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए रांची में खुला चयन ट्रायल 30 अगस्त को। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता।
1: लोहरदगा जिला में पुलिस ने युवा व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या के मामले का उद्भेदन करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि
2: हम लोगों ने तकनीकी सहायता से रेड किया, जिससे पता चला कि वो ओइना के खाली मकान में रह रहे हैं, तो उन दोनों को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया।
1: जेपीएससी सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक एवं अनियमितताओं को लेकर छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन में लोहरदगा के विद्यार्थियों को भी भागीदारी है। इस संबंध में लोहरदगा लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत ने कहा,
3: हम चाहते हैं कि प्रॉपर पारदर्शिता पूर्ण एग्जाम हो, एक कैलेंडर प्रॉपर हो, और जो स्टूडेंट्स हमारे वहाँ बैठे हुए हैं, हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं और सहृदय दिखला के उनसे जरूर बातें होनी चाहिए।
1: लोहरदगा जिला में धान की रोपनी का काम अंतिम चरण में है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा।
0: अभी आप सुन रहे थे लोहरदगा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: दिस इज आकाशवाणी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे वी नाउ ब्रिंग यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मूज एड्रेस टू द नेशन।
2: ये आकाशवाणी है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब प्रस्तुत है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश।

मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। आपसे कुछ ही घंटों बाद हमारे देश की स्वाधीनता के 80वें वर्षों का शुभारंभ होगा। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीय ये पर्व उल्लास के साथ मनाते हैं। हमारा तिरंगा हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है, इसे हम पूरी शान से फहराते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत माता पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुई। सभी देशवासी स्वतंत्र भारत की नियति के निर्माता बने। हम भारत के लोग अपने सपनों को साकार करने के अवसरों का उपयोग कर सके और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की भावना से कार्य करें, इसी में स्वतंत्रता की सार्थकता है। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक विकास के

अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता हमारे सभी सफाई मित्र देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अन्य क्षेत्र में सक्रिय असंख्य देशवासी तथा संविधान में निहित मूल कर्तव्यों का पालन करने वाले सभी नागरिक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार है। मैं उन सभी के हृदय से सराहना करती हूँ। तीनों सेनाओं के जवानों, सभी सशस्त्र पुलिस बलों एवं पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों और दूतावासों में कार्यरत देशवासियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ हमारा संकल्प है कि विकास के लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। अपनी समृद्ध विरासत और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों को अपनाते हुए हम आधुनिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वयं राष्ट्र जागृतम्, ये वेदवाक्य हमें प्रेरणा देता है कि हम राष्ट्र के लिए सदैव जागरूक रहे। हमारे स्वाधीनता संग्राम में संघर्षरत अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का लक्ष्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जन जन के गीत बन गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनगिनत देशवासी स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज सुधार तथा राष्ट्र निष्ठा के उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। भारत माता की उन सभी महान संतानों को मैं सादर नमन करती हूँ जिनके आदर्श पर चलते हुए हमारा देश स्वतंत्र हुए और आगे बढ़ा। आज 14 अगस्त के दिन को हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। हम उन लाखों देशवासियों को याद करते हैं जो विभाजन से जुड़े हिंसा में मारे गए या विस्थापन की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए। सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लाखों लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा और बंटवारे की विभीषिका सहन करनी पड़ी। फिर भी उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुए उस समय देश के विभाजन के गंभीर परिणामों के साथ साथ 550 से अधिक रियासतों को नव स्वाधीन भारत के साथ जोड़ना भी एक असाधारण चुनौती थी। सरदार पटेल ने राजशाही व्यवस्थाओं को समाप्त करके हमारे स्वाधीन लोकतंत्र में उनका विलय किया। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आधुनिक भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। प्यारे देशवासियों, भारत के लोगों द्वारा निर्मित हमारे संविधान नागरिकों की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि के निवासियों में जन भागीदारी की भावना सदा से विद्यमान रही है। उस भावना को नई ऊर्जा के साथ हमारे देशवासी आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय अभियानों को जन भागीदारी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की प्रेरक उपलब्धि है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरी भी कर सकता है। हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख है। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे विधायिका में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करें। कार्यपालिका का कर्तव्य है कि जनहित और राष्ट्रहित की नीतियों को कार्य रूप दे। न्याय व्यवस्था से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। हर नागरिक को, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों को समानता के आधार पर सम्मान के साथ समय से न्याय मिलना चाहिए। प्यारे देशवासियों, पिछले एक दशक से कुछ अधिक समय में हमारे देश

तेज गति से समावेशी विकास क्या है, विरासत और विकास के समन्वय को प्राथमिकता दी है तथा विकास में बाधक दशकों पुराने अनेक अवरोधों को दूर किया है। हमारे देशवासी महात्मा ज्योतिबा फुले की 100वीं जयंती मना रहे हैं। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने में सफलता मिली है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लगभग 59 करोड़ खाता धारक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं। उनमें 32 करोड़ से अधिक महिला खाता धारक शामिल है। 80 करोड़ लोगों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था द्वारा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए गए हैं। किसान सम्मान निधि तथा किसान क्रेडिट कार्ड से खेती, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों से जुड़े किसान भाई बहनों को संबल मिला है। विश्व का इतिहास साक्षी है कि सांस्कृतिक आत्मबल पर आधारित विकास गतिमान और स्थायी होता है। आज देश में ये चेतना बलवती हो रही है कि सांस्कृतिक गौरव का भाव देश की संप्रभुता को आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान, कला संस्कृति, अध्यात्म और सदाचार की अनमोल विरासत सौंपी है। हम विरासत और विकास के समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सरकार ने जन कल्याण की सुविधाओं को पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाया है। हमारे देश में हाईवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के रूप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। इससे नई उद्यमों के लिए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, नए रोजगारों का सृजन हो रहा है तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। प्यारे देशवासियों, विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध एवं अस्थिरता का सभी देशों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर की तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्र सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। आधुनिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी भारत विश्व स्तर पर अग्रणी योगदान दे रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के कुछ लक्ष्यों को हमारे देश ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति मिली है। हमारी विदेश नीति देश हित पर आधारित है। शांति, सहयोग, संवाद तथा वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श हमारी विदेश नीति के स्तंभ है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने तथा पारस्परिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए हमने अनेक देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में हम अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विश्व पटल पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है। हम रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में विश्वास रखते हैं। हमारे प्रयास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सहित मल्टीलेटरल
ऑर्गेनाइजेशंस में विश्व समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व हो। हमारे इस प्रयास को अनेक देशों का प्रबल समर्थन मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में कहीं भी कमी न हो। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी आस्था हमारी परंपरा का हिस्सा है। संताली भाषा के एक सरल गीत में हमें गहरा संदेश मिलता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा रचित उस गीत के कुछ शब्द इस प्रकार है। दारे गुजुक कान नेलते मिरु चणे राग बया दाया हाया गे, गुजुक कान अबुआ जति धर्म दारे चेदा बाबन राग बया आबो ओना नेलते। इस गीत में एक पेड़ के पूरी तरह सूख जाने के कारण रोते हुए एक तोते का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, मरते हुए पेड़ को देखकर तोता पक्षी दुख भरी आवाजों में रो रहा है। हे मेरे भाइयों, मानव संस्कृति रूपी वृक्षों का विनाश होता देखकर हम मानव समाज के लोग विलाप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस गीत का संदेश यह है कि सभी मनुष्यों को मानवीय मूल्यों और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक हरा हरा पेड़ मानव समाज के नैतिक और स्वस्थ रहने का प्रतीक है। एक पेड़ माँ के नाम तथा लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट यानी लाइफ जैसे अभियानों की भावना के अनुरूप सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बेटियां प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान देने वाले ड्रोन दीदी से लेकर वायुसेना में फाइटर कॉम्बैट लीडर बनने तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। हाल ही में ग्लासगो में सम्पन्न हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। अब हमारे देश 3 करोड़ महिलाओं को नई लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मुद्रा योजना के तहत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमियों में लगभग 2/3 लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रयासों के साथ साथ हम देख रहे हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मतदान में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारी गणतंत्र की विशेष सफलता है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का 33% प्रतिनिधित्व आरक्षित करने के लिए वर्ष 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया जा चुका है। इस अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त करने से महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तथा हमारे लोकतंत्र और अधिक समावेशी बनेगा। देश की कुल आबादी में 65% लोगों की आयु 35 वर्ष से कम है। ये युवा आबादी हमारी सबसे मूल्यवान संपदा है। हमारे देश के युवा टैलेंटेड है, कमिटेड है और स्किल्ड है। जमीनी स्तर पर युवाओं द्वारा किए गए विभिन्न समस्याओं के इनोवेटिव और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को देखकर मुझे समाज और देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता का परिचय मिलता है। केवल 28 वर्षों की औसत आयु वाली युवा टीम द्वारा हाल ही में रॉकेट का सफल प्रक्षेपण करके अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए चरण का शुभारंभ किया गया है। हमारे अनेक युवा स्वरोजगार के मार्ग पर चलते हुए रोजगार प्रदान करने की संस्कृति को अपना रहे हैं। युवा उद्यमियों की भागीदारी से हमारे देश में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। विश्व के बड़े बड़े उद्यम भारत के युवाओं की प्रतिभा लगन से प्रभावित रहते हैं तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे युवाओं ने विश्व समुदाय में
भारत की

युवा शक्ति की साख बढ़ाए हैं। हमारी युवा पीढ़ी भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति मेरी आस्था को और प्रबल बनाती है। हमारे विद्यार्थी भारत के भविष्य निर्माता है। जिस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार और समाज का एकजुट रहना जरूरी है, उसी तरह विद्यार्थियों के वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सभी के सम्मिलित प्रयास जरूरी है। सार्वजनिक परीक्षाएं विद्यार्थियों के लिए अवसर के द्वार खोलती है, इसलिए सरकार इन परीक्षाओं में सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है। इन सुधारों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर पूरी तरह से अंकुश लगे, परीक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी तथा युवाओं के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद हो। सरकार के प्रयासों तथा नई आर्थिक गतिविधियों से युवाओं के लिए अनेक प्रकार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करके हमारे युवा सफलता के नए मार्ग चुन सकते हैं। हमारे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य देश के भविष्य का आधार है। परिवार और समाज की भी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। खेलकूद को युवाओं के विकास और राष्ट्र निर्माण के माध्यम के रूप में अपनाया जा रहा है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक देश के सभी क्षेत्र के लिए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जा रहा है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में हमारे खिलाड़ी प्रदर्शन और उपलब्धियां के उच्च शिखरों तक पहुंच रहे हैं। एक ओर हमारे देश में सबसे बड़ी युवा आबादी है तो दूसरी ओर वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 70 साल और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपनेपन की भावना तथा उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए पूरे समाज को संवेदनशील रहना चाहिए। प्यारे देशवासियों, सत्य और न्याय के पक्ष में मानवता विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की भारतीय परंपरा पर हम गर्व करते हैं। 26 जुलाई को हमने कारगिल विजय दिवस मनाया है। उसके पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के आरंभ का 1 वर्ष पूरा होने पर हमने अपनी सेनाओं के अतुल्य पराक्रमों को स्मरण किया। आतंकवाद के विरुद्ध ओ ऐतिहासिक ऑपरेशन भारतीय सेनाओं की अचूक क्षमता का प्रमाण है। आतंकियों और उनके समर्थकों को ये कठोर संदेश दिया गया कि वे चाहे कहीं भी जाकर छुप जाए, लेकिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देश के साथ अतीत में की गई सिंधु जल संधि का निलंबन करना हमारे देश के विशेषकर किसानों के हित में एक निर्णायक कदम है। दशकों से नक्सलवाद देश के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ था। भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास की सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। राष्ट्र गौरव की रक्षा हेतु निर्मित मराठा सैन्य परंपरा से जुड़े 12 दुर्गों को पिछले वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में स्थान दिया गया है और इस वर्ष भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन के स्थल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। भारत भूमि में एक और भगवान बुद्ध से जुड़े आध्यात्मिक स्मारक है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तथा अपनी गौरवशाली परंपराओं की रक्षा हेतु युद्ध करने की हमारी प्रभावशाली क्षमता के प्रतीक भी विद्यमान है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी भारतवासियों का विकास और कल्याण ही विकसित भारत के निर्माण का वास्तविक लक्ष्य है।

0: On the eve of Independence Day, you were listening to Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu's address to the nation.
1: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभी आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश सुन रहे थे।
2: एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: स्वतंत्र का संग्राम नहीं वो बगावत थी, म्यूटिनी, यही इतिहास कहता है। इतिहास
1: जला दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जुलम वो तुम्हारे सितम।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस सफर में आज हम आपको लिए चलेंगे देशभक्ति गीतों की ओर और याद करेंगे उन भारत माँ के वीर सपूतों को, और उन्हें नमन करते हुए हम

तो आइए, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया, आवाज शांति माथुर की, पसंद आप सभी दोस्तों की। स्टेशन रोड झुमरी तलैया से आप हैं विजय शर्मा, मनोज मगधिया, हरजीत सिंह और अंशु मगधिया। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा ने भी खत भेजा है। रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी वर्मा, रिया वर्मा, परी, कोको, चारू और आर के वर्मा का भी खत आया है इसी गीत के लिए। ये खत आया दौलतबाग मुरादाबाद से। आप हैं जफर हुसैन, नईमा, कासिम, नदीम, जुनैद और परिवार के सभी सदस्य। तो आइए, आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म का नाम सन ऑफ इंडिया, आवाज शांति माथुर की।

ಸಹಿತ ಆಗೇ ಹಿತ.

पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम।

अगर भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं हम

0: का चलन, दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

गंगा जमुना इस फिल्म से हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, हेमंत कुमार की आवाज, पसंद आप सभी दोस्तों की। सुकरा नायक, गौरव नायक, जालेश्वर नायक, मंजू नायक और प्रद्युम्न नायक आप सभी हैं खरसावां झारखंड से। वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र आदर्श, अनुराधा, अनिकेत भगत, ऋषि, राहुल, रोहित और परिवार के सभी सदस्य। चेपा कला बड़कागांव से श्रीमती सविया ठाकुर, बाबूलाल ठाकुर, तिलेश्वरी भरत, मंजू संतोष ठाकुर, विकास कुमार, प्रभात, जितेश आदर्श, प्रियंका और दीपिका ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। महेश राम, वर्षा देवी, सरिता देवी, पिंटू फुलवासी देवी और परिवार के सभी सदस्य आप सभी हैं ग्राम पोचरा से। खिरगांव मारीटोला से इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा कल्लू माली, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार और अनिकेत मालाकार ने। ये खत आया झुमरी दुलैया से, आप है जगन्नाथ प्रसाद साहू। तो चलिए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम गंगा जमुना, आवाज हेमंत कुमार की।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी लीडर और इस गीत को सुनना चाहा था। मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष, विकास, रंजना, गुड़िया, गोलू, भोला और इनके मम्मी पापा ने इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा था। लक्ष्मी रानी, सृष्टि रानी, रूबी देवी, श्री प्रसाद, आशा देवी और सुमन कुमारी ने ग्राम सिंघानी, जिला हजारीबाग से। गुलाम अली, सद्दाब अली, पप्पू, छोटू और परिवार के सभी सदस्य, आप सब ने भी इसी गीत को पसंद किया। रसूलीगंज से नया टोला भिखनपुर भागलपुर से आप गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन और मनोज पासवान ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। तो श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ देशभक्ति गीत। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत। फिल्म का नाम, माफ कीजिएगा, देशभक्ति गीत। फिल्म का नाम काबुलीवाला, आवाज मन्ना डे की, पसंद आप सभी दोस्तों की। हजारीबाग से आप हैं बेसिल खलको, सेसिल खलको, मधु, ऋतु, रचना, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा और परिवार के सभी सदस्य। दिल्ली से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। बड़ा बाम्बू गांव सुपाई साई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन जेबी ने इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा। कालका से आप शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। सेक्टर मोहाली से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम काबुलीवाला, आवाज मन्नाडे की।

फूल बने अंगारे, इस फिल्म से हम आपको सुना रहे कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। और इसे सुनना चाहा है महादेव घाट अमलेश्वर से डुमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर और सूरज ठाकुर ने। बगबुड़वा पथरिया से इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा है नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, मिलिंद दोवेश नेताम, अंबिका और योगिता नेताम ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से भी इसी गीत की फरमाइश किया है आप सभी श्रोताओं ने। आप है कमरुल्ला, नसीम, आयशा, हदिया, मुजतबा और शाहिद। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत आया शिवाजी छत्तीसगढ़ से। आप है अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पिंडरा छत्तीसगढ़ से इसी गीत के लिए आप सबों ने भी फरमाइशी खत भेजा है। आप है दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने। बरगाकाना से आप है तस्नीम कौसर, साहिन सुल्ताना, इफ्साल ताज और एम ए मलिक। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा और गौरव गरिमा शर्मा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम फूल बने अंगारे, आवाज मोहम्मद रफी की।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। कार्यक्रम आपकी चाहत में आप सुन रहे हैं कुछ देशभक्ति गीत। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, आवाज मन्ना डे और मोहम्मद रफी की। पसंद आप सभी दोस्तों की। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप साबले पाटिल, राशि राजेश और शीतल राजेश। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत आया। कलाम अहमद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, हबीबा खातून, कहकशा परवीन, इरफान अहमद, शबाना परवीन, फिरोज अहमद और शमा परवीन का। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है, तो आइए हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, आवाजें मन्ना डे और मोहम्मद रफी की।

और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, जिसे सुनना चाहा है देवदत्त तिवारी, सच्चिदानंद तिवारी, मंजू बाला, संतोष कुमार, रेशमी कुमारी, रितेश कुमार, पूजा पांडे, दीपाली कुमारी, हर्षित कुमार और अभिनव कुमार ने।

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हकीकत के इसी गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। अब समाचारों के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या के आज का अंक, न्यूज 8 और स्पोर्ट लाइट। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
2: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
1: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
2: महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
2: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
2: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है।
2: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
1: राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया।
3: हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेष, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट।
5: इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा।
6: जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार जनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ।
1: रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं।
7: आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ा बुलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गांव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। आईएमडी ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर काव्य गोष्ठी सह मुशायरा। प्रतिभागी हैं डॉक्टर SZ हक, डॉक्टर सुबोध सिंह शिवगीत और डॉक्टर फरहत हुसैन खुशदिल। संचालन कर रहे हैं सैयद मासूम अहमद और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: नमस्कार। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की इस रचना ने काकोरी कांड के बाद देश के युवाओं में देशभक्ति का ज्वार उत्पन्न कर दिया था। घटना के बाद अंग्रेज बौखला गए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इस घटना ने देश के युवाओं में देशभक्ति की नई लहर जगा दी थी और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता दिवस के पावन उपलक्ष्य में आकाशवाणी हजारीबाग ने आज देशभक्ति पर आधारित एक कवि गोष्ठी शाह स्टूडियो मुशायरा का आयोजन किया है। इस आयोजन में आज 3 खास मेहमान यहां मौजूद हैं, जो अपनी अनूठी शायरी और कविताओं से देशभक्ति का जज्बा जगाएंगे। संचालन की जिम्मेवारी नाचीज मासूम अहमद को दी गई है। सबसे पहले इन मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे एक जानिब मौजूद हैं लफ्जों के माहिर, देश प्रेम की गहरी समझ रखने वाले शायर डॉक्टर एस.जेड. हक जैन रामिश। उनके बगल में मौजूद हैं ओजस्वी कवि और साहित्यकार डॉक्टर सुबोध सिंह शिवगीत। और तीसरे मेहमान हैं अपनी पुरतरन्नुम आवाज से देशभक्ति का अलख जगाने वाले शायर डॉक्टर फरहत हुसैन खुशदिल। और अब मैं इस स्टूडियो मुशायरा सह कवि गोष्ठी का आगाज करता हूं। सबसे पहले दावत कलाम देता हूं डॉक्टर फरहत हुसैन खुशदिल को कि वो अपने कलाम से इस गोष्ठी को यादगार बनाए। डॉक्टर फरहत हुसैन खुशदिल।
1: शुक्रिया जनाब। नहायत ही खुशी मुसर्रत का ये लम्हा है कि 80वां आज़ादी जश्न मनाने के लिए स्टूडियो में हम लोग बैठे हैं। पहले 2 कतात पेश करता हूँ।
0: स्वागत है।
1: हमें तो जान से प्यारा है अपना नामे वतन।
2: क्या बात है।
1: क्या हमें बात तो है? जान से प्यारा है अपना नामे वतन, हरेक शाम से रंगी है अपनी शामे वतन।
0: क्या बात।
2: बहुत
1: हमारा फर्ज है हम इसके वफादार रहें। हमारा फर्ज है हम इसके वफादार बने। हरेक शख्स पे वाजिब है एहतराम वतन।
0: क्या बात। बहुत
1: हरेक शख्स पे वाजिब है एहतराम वतन।
0: बहुत खूब।
1: और दूसरा कता, 15 अगस्त खुशियों का लाया पयाम है।
0: क्या
2: 15 अगस्त
1: खुशियों का लाया पयाम है और 15 अगस्त सदियों की कोशिश का नाम है।
2: बहुत सुंदर।
1: 15 अगस्त खुशियों का लाया पयाम है, 15 अगस्त सदियों की कोशिश का नाम है। आजादी हयात की पहली किरण है ये। आजादी हयात की पहली किरण है ये। सच जानिए ये सुबह दरख्शा सी शाम है। सच जानिए ये सुबह दरख्शा सी शाम है। अब 6 अशार की एक नज़्म।
2: बहुत बड़ी। स्वागत।
1: आजादी की सालगिरह।
0: इरशाद।

0: 그렇죠.
1: 옛날에 쉐히도께 갈다 우아난 쇼크리 하잖아
0: 뭐츠
1: 빠따 해사디 요새 예 대시타

0: और ये शेर तमाम देशवासियों के नाम, आजादी वतन के लिए आए जो भी काम,
1: बहुत अच्छे, बहुत सुंदर,
0: आजादी वतन के लिए।

0: क्या कहने हैं परस साहब, वाह बहुत खूब।
1: शहीदों को मैं आज तक सलाम,
2: कोई जवाब नहीं फरत।
1: ये शेर आप नज़्म
0: इनायत इनायत
1: जब तक

0: बहुत सुंदर, बहुत
1: करते हैं उन्हें सब हिंद का।
0: बहुत बढ़िया।
1: आखिरी शेर, शाहिद है इस कलास्ते अल्लामा का कलाम, शाहिद है इस कलास्ते अल्लामा का कलाम।

0: बहुत
1: हम
0: सही,
1: सबको है अजीज वतन, और वतन का नाम हम सबको है अजीज वतन, और वतन का नाम।
0: बहुत बढ़िया।
1: खाके वतन के जर्रों को खुश दिल काहे
0: बहुत सलाम। क्या बात है, बहुत
1: खाके वतन के जर्रों को खुश दिल काहे सलाम। शुक्रिया जनाब।
2: क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब खुशदिल साहब,
0: बेजोड़।
2: ये थे डॉक्टर फरहत हुसैन खुशदिल। और अब मैं आज के इस स्टूडियो मुशायरा सह कवि गोष्ठी में उस कवि को आवाज दे रहा हूँ जिनकी वाणी से युवाओं में देशभक्ति का ज्वार उत्पन्न हो जाएगा। मैं उन्हें 1857 के गदर के महानायक, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की इन पंक्तियों के साथ आवाज दे रहा हूं। दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर
2: जी जी। और आज के इस कवि गोष्ठी में आपके सामने हैं डॉक्टर सुबोध सिंह शिवगीत, इन्हें मैं दावते कलाम दे रहा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मासूम जी, उपस्थित हमारे
2: स्वागत
0: खुशदिल साहब, हक साहब। इस वर्ष हजारीबाग के वरिष्ठ कवि शिवदयाल सिंह शिवदीप जी का निधन हुआ है। आजादी के इस पावन कवि सम्मेलन पर उनकी दो पंक्तियों से मैं बात शुरू करूं।
2: स्वागत।
0: उन्होंने लिखा कि देश पर पड़ती हो जब दुश्मनों की नजर, कि देश पर पड़ती हो जब दुश्मनों की नजर, देश का हर लाल पहरेदार हो जाए।
3: वाह
2: वाह।
0: देश पर पड़ती हो जब दुश्मनों की नजर, देश का हर लाल पहरेदार हो जाए, और महकते हुए फूल भी अंगार में बदले। कि महकते हुए फूल भी अंगार में बदले, और चूड़ियों की खनक तलवार की झंकार हो जाए।
2: वाह, क्या बात है,
0: खनक तलवार की झंकार हो जाए। ये वो मिट्टी है जहां अपने देश के लिए औरतें, पुरुष, बच्चे सब कुछ अपनी कुर्बानी देकर भी अपनी आजादी को हासिल करने के लिए तत्पर रहे हैं। चलिए, इस अवसर पर मैं नई कविता जो आज ही लिखा हूं, आजादी, आपके सामने रखता हूं।
2: स्वागत है।
0: कि अपनी प्यारी भारत माता, कि अपनी प्यारी भारत माता, आजादी तेरी मुझको अपने प्राणों से बढ़कर प्यारी।
2: क्या बात है, वाह।
0: कि अपनी प्यारी भारत माता, आजादी तेरी हमको अपने प्राणों से बढ़कर प्यारी है, हर युग में भारत के अमर शहीदों ने, कि हर युग में भारत के बेटों ने, बेटियों ने, अमर शहीदों ने सर देकर इसकी आरती उतारी है।
2: क्या बात,
0: सर देकर इसकी आरती उतारी है, हमको अपने प्राणों से बढ़कर प्यारी है। आगे है कि आजादी की कीमत, आजादी की कीमत को भगत सिंह ने, आजादी की कीमत को भगत सिंह ने, बिस्मिल्लाह और खुदीराम ने।
2: क्या बात,
0: आजादी की कीमत को भगत सिंह ने, बिस्मिल्लाह और खुदीराम ने, जोरावर और फतह सिंह ने जाना था।
2: वाह, क्या बात है,
0: कि आजादी की कीमत को भगत सिंह ने, जोरावर और फतह सिंह ने जाना था। हंस हंस दे दी प्राणों की आहुति, हंस हंस कर दे दी प्राणों की आहुति, शत्रु की शक्ति को धूल बराबर माना।
2: क्या बात,
0: शत्रु की शक्ति को धूल बराबर माना।
2: वाह।
0: माँ बहनों बेटियों ने मांग की लाली दी।
2: वाह,
0: कितनी माताएं अपने कोख, अपनी मांग को सुनी कर दी, तभी आजादी आई। कि माँ बहनों बेटियों ने मांग की लाली दी, अनगिन घर संसार इसके पीछे बर्बाद हुए। माँ बहनों बेटियों ने मांग की लाली दी अनगिन घर संसार इसके पीछे बर्बाद हुआ हुए तन मन धन की कुर्बानी दी तब हम सन 47 में आजाद अनगिन घर संसार इसके पीछे बर्बाद हुए तन मन धन की कुर्बानी दी तब हम सन 47 में आजाद हुए। आजादी तो भारत माँ की राज दुलारी है, आजादी तो भारत माँ की राज दुलारी है, हमें देश की आजादी प्राणों से बढ़कर प्यारी है, सर देकर अमर शहीदों ने जिसकी आरती उतारी है, सर देकर अमर शहीदों ने जिसकी आरती उतारी है। चलिए कविता को थोड़ा वर्तमान से जोड़ते हैं।
2: स्वागत।
0: आजादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं,
2: वाह
0: कि आजादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। आजकल तो बच्चे उठाते हैं आजादी आजादी
2: जी,
0: अरे ये आजादी की कीमत क्या जाने
2: जी, जी।
0: कि आजादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, जाने कितनी पीढ़ियां मिट गई इसको लाने में,
2: वाह
0: जाने कितनी पीढ़ियां मिट गई इसको लाने में, मर गए मिट गए जाने कितने भाई बिछुड़ गए इस आंगन में आजादी का दीप जलाने में।
2: क्या बात है, बहुत।
0: कि आजादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, जाने कितनी पीढ़ियां मिट गई इसको लाने में, मर गए मिट गए जाने कितने भाई बिछुड़ गए इस आंगन में आजादी का दीप जलाने में। यह केवल और केवल एक दिवस नहीं, यह केवल और केवल एक दिवस नहीं है, आनंद और आह्लाद भरा अपनेपन का एहसास है।
2: वाह क्या बात।
0: आनंद और आह्लाद भरा अपनेपन का एहसास है, अपनी धरती अपनी सत्ता, अपनी धरती अपनी सत्ता, अपना ही शासन, स्वतंत्रता तो हर एक जनगण मन का विश्वास है, स्वतंत्रता तो हर एक जनगण मन का विश्वास है, हमें हमारी आजादी प्राणों से बढ़कर प्यारी है, सर देकर अमर शहीदों ने जिसकी आरती उतारी है। अब कविता अंतिम दौर में चल रही है कि तीन रंगों का बना तिरंगा,
2: क्या बात
0: है, लगता है कि तीन रंग लगे हैं, कि तीन रंगों का बना तिरंगा, रंगों का तीन रंगों का बना तिरंगा, रंगों का यह खेल नहीं,
2: रंगों का ये
0: तो आप लड़के रंग समझते कि तीन रंगों का बना तिरंगा, रंगों का यह खेल नहीं, अपनी मिट्टी अपनी ही माता की पहचान है। तीन रंगों का बना तिरंगा, रंगों का यह खेल नहीं, अपनी मिट्टी अपनी ही माता की पहचान है। देश के दुलारों आज जो स्थिति है देश की, कि देश के दुलारों हर भाषा हर वेश के दुलारों,
2: वाह
0: देश अलग है भाषा अलग है वेश अलग है, देश दुलारों हर भाषा हर वेश दुलारों, जतन से रखना विश्व पटल पर अटल ये अपनी शान है, विश्व पटल पर अटल ये अपनी शान है। और अंतिम बंद है कि बहकावे में छलावे में दुश्मनों के आग, आज जो हो रहा है हम आजादी की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, कोई यहाँ से जाने वाला आज भी हमको चला रहा है, ये दुख होता है। अभी हमने देखा कि बहकावे में छलावे में दुश्मनों के आकर रत्ती पर भी आंच नहीं आने देना, अब आने वाली पीढ़ी के लिए है, कि बहकावे में छलावे में दुश्मनों के आकर रत्ती भर आंच नहीं आने देना, गैरों मक्कारों की नियत पहचानो आजादी की साख नहीं जाने देना,
2: बेशक बिल्कुल,
0: कि रत्ती भर भी आंच नहीं आने देना, गैरों मक्कारों की नियत पहचानो आजादी की साख नहीं जाने देना, अनादिकाल से गरिमा भारत माता की भारी है, आज नहीं हजारों हजार साल पहले, कि अनादिकाल से गरिमा भारत माता की भारी है, हमें देश की आजादी प्राणों से बढ़कर प्यारी,
2: क्या बात है,
0: अनादिकाल से गरिमा भारत माता की भारी है, हमें देश की आजादी प्राणों से बढ़कर प्यारी है, सर देकर अमर शहीदों ने इसकी आरती उतारी है, सर देकर अमर शहीदों ने इसकी आरती उतारी है। मैं अपनी इस कविता के साथ हजारीबाग के स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान अपने कवि थे व्याकुल की दो पंक्तियों से बात समाप्त करूंगा।
2: स्वागत।
0: अपने देश की आजादी के लिए हजारीबाग से मिटने वाले एक स्वतंत्रता सेनानी सह कवि ने कहा, अपने पूर्वजों को जो याद नहीं करते, तो मैंने आरंभ में शिवदयाल बाबू को तो अंत में व्याकुल जी को याद करता हूं, जिन्होंने लिखा है कि न इज्जत दे न इज्जत दे न अस्मत दे,
2: वाह
0: आज हम लोग यही खोज रहे हैं कि न इज्जत दे न असमत दे न सूरत दे न सीरत दे, न इज्जत दे न असमत दे न सूरत दे न सीरत दे, या रब अगर कुछ दे तो निज मुल्क के वास्ते मरने की हिम्मत दे।
2: क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब,
0: मरने की हिम्मत दे,
2: बहुत खूब, बहुत खूब।
0: कवियों को जो हमारे पूर्वज हैं उनको नमन करता हूँ और चाहता हूँ कि भावी पीढ़ी भी इस आजादी की कीमत को पहचाने कि कैसे हमारे अमर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर गर्दनें कटवाकर इस देश में आजादी लाई है। आजादी सलामत रहे इसके लिए हमको और हमारी पीढ़ी को जीवित रहना होगा, जागते रहना होगा पहरेदार की तरह। धन्यवाद।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब डॉक्टर सुबोध सिंह शिवगीत। इनकी ओजस्वी वाणी और कविताओं ने युवाओं में देशभक्ति का अलग जगा दिया। बहुत खूब,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और आज की इस कवि गोष्ठी सह मुशायरे के अंत में मैं दावते कलाम दे रहा हूँ उस मशहूर शायर और अदीब को जो नजाकत और नफासत वाली शायरी से लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा कर सकता है। मेरी मुराद डॉक्टर एस जे ढक जैन रामिश से है। मैं उन्हें इन पंक्तियों के साथ आवाज दे रहा हूँ। वतन की मोहब्बत में सर कट जाए तो कट जाए, रहे सलामत हिंदुस्तान हमारा, जान जाए तो जाए। डॉक्टर जैन रामेश,
0: स्वागत।
3: बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ तमाम रेडियो स्टेशन के तमाम जो मेम्बरान हैं उनका और खसूसी तौर पर आपका कि आज यौम आज़ादी के ताल्लुक से इस खसूसी नशस्त का हिस्सा आपने मुझे बनाया। मैं ये अपनी खुशबख्ती महसूस करता हूँ इसे। दरअसल हुब्बुल वतनी जमीन से मोहब्बत का नाम है, देशभक्ति जमीन से मोहब्बत का नाम है। आप जमीन से किस कदर मोहब्बत करते हैं इसी पर आपकी मोहब्बत डिपेंड करती है। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। जमीन की मोहब्बत का एक जज्बा अर्ज किया है कि मेरी जमीन मैं तुझे आसमान देखता हूँ, मेरी जमीन मैं तुझे आसमान देखता हूँ, कड़ी है धूप मगर साइबान देखता,
0: बहुत क्या बात, बहुत क्या बात।
3: मेरी जमीन मैं तुझे आसमान देखता हूँ, मेरी जमीन मैं तुझे आसमान देखता हूँ, कड़ी है धूप मगर आसमान देखता हूँ, कड़ी है धूप मगर आसमान देखता हूँ। हालात के तकाजों के बावजूद, नरमो गर्म के बावजूद, मोहब्बत वतन से और अपनी मिट्टी से और अपनी जमीन से। कुछ अशार मैं आपकी उसी हवाले से पेश करना चाहता हूँ। दरअसल शायरी का दो अंदाज होता है, एक बराहे रास्त इजहार किसी चीज का और एक शायरी की जो खसूसियत है कि ढके छुपे लफ्जों में बिल्कुल नफासत के साथ जिसकी तरफ इशारा किया। मैं कोशिश करता हूँ मतला और चंद शेर आप देखें कि बेकैफिये दिल ऐसे भला गम नहीं करते, बेकैफिये दिल ऐसे भला गम नहीं करते, हम तरके ताल्लुक का तो मातम नहीं करते, हम तरके ताल्लुक का तो मातम नहीं करते, और सीने पे ठहर जाते हैं सब दर्द के मौसम, सीने पे ठहर जाते हैं सब दर्द के मौसम, हम महले वफा आंख जरा नम नहीं करते, हम महले वफा आंख जरा नम नहीं करते। और आज के हवाले से एक शेर देखिए इस गजल का आखिरी शेर के, हम महले जुनू अहले सफर अपने सरों को, हम महले जुनू अहले सफर अपने सरों को नेजे पे सजा देते हैं पर खम नहीं करते, नेजे पे सजा देते हैं पर खम नहीं करते, नेजे पे सजा। हम महले जुनू अहले सफर अपने सरों को, हम महले जुनू अहले सफर अपने सरों को नेजे पे सजा देते हैं पर खम नहीं करते, नेजे पे सजा देते हैं पर खम नहीं करते। और ये एक दूसरी गजल का के चंद शेर देखिए मतले के साथ के, ये मैंने कब कहा कि मोहब्बत हवा से है,
0: क्या बात,
3: एक हिंदुस्तानी का जज्बा,
0: کیا بات
3: کہ یہ میں نے کب کہا کہ محبت ہوا سے ہے, میں ایک چراغ میری بغاوت ہوا سے ہے.
0: بہت سندر, بہت سندر.
3: یہ میں نے کب کہا کہ محبت ہوا سے ہے, میں ایک چراغ میری بغاوت ہوا سے ہے, اور میرا تو بس تقاضے بیعت ہوا سے ہے.
0: بہت صاحب
3: کہ میرا تو بس تقاضے بیعت ہوا سے ہے, پھر اس کے بعد کوئی بھی نسبت ہوا سے, پھر اس کے بعد کوئی بھی نسبت ہوا سے ہے, اور میں قریے سکوت میں یعنی خاموشی کی جگہ پہ, خاموشی کے حلقے میں, میں قریے سکوت میں ساکت تمام عمر, میں قریے سکوت میں ساکت تمام عمر, کیسے کہوں کہ میری قرابت ہوا سے ہے, کیسے کہوں کہ میری کیسے کہوں کہ میری قرابت ہوا سے ہے. اور ایک شعر اور دیکھیے کہ آوارگی شوق کہاں لے اڑے مجھے, آوارگی شوق کہاں لے اڑے مجھے, کہنا محال ہے یہ بشارت ہوا سے ہے, کہنا محال ہے
1: یہ خوشخبری,
3: کہنا محال ہے یہ بشارت ہوا سے ہے. اور معصوم بھائی ایک شعر دیکھیے کہ چونکہ ہوا کے قدموں پہ رکھا نہیں ہے سر, چونکہ ہوا کے قدموں پہ رکھا نہیں ہے سر, جو بھی ہے اپنے حصے کی مدحت ہوا سے, جو بھی ہے اپنے حصے کی مدحت ہوا سے ہے,
0: سر جھکا کے نہیں,
3: چونکہ ہوا کے قدموں پہ رکھا نہیں ہے سر, جو بھی ہے اپنے حصے کی مدحت ہوا سے ہے,
0: ہوا سے
3: جو بھی ہے اپنے حصے کی مدحت ہوا سے ہے.
0: سندر, بہت سندر,
2: بہت خوب, بہت خوب,
0: بے جوڑ.
2: یہ تھے ڈاکٹر ازد حق زین رامش, اور آج کے اس اسٹوڈیو مشاعرہ کوی گوشتی کا سماپن رامدھاری سنگھ دنکر کی ان پنکتیوں کے ساتھ کر رہا ہوں. سنہاسن ہل اٹھے راج ونشوں نے, بھریکٹی تانی تھی بوڑھے بھارت میں آئی پھر سے نئی جوانی تھی.
0: بہت سندر, بہت سندر.
2: اور آج کے اس اسٹوڈیو مشاعرہ میں ان تینوں شاعر اور کویوں نے ثابت کر دیا کہ دیش بھکتی صرف نعرے لگانے کا نام نہیں, بلکہ یہ دیش واسیوں کے ہر سانس میں بستی ہے.
0: بہت سندر.
2: میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر زین رامش صاحب کا, ڈاکٹر سبودھ سنگھ شیوگیت کا, ڈاکٹر فرحت حسین خوش دل کا. اور اب اس ناچیز معصوم احمد کو دیجئے اجازت. آداب, نمسکار, جوہار, جے ہند.
0: بہت بہت شکریہ آپ کا.

आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर विशेष काव्य गोष्ठी स्टूडियो मुशायरा। प्रतिभागी थे डॉक्टर एस जेड हक, डॉक्टर सुबोध सिंह शिवगीत और डॉक्टर फरहत हुसैन खुशदिल। इस मुशायरे का संचालन कर रहे थे सैयद मासूम अहमद और इसके संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। पेश स्वीकार करें श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। पेश है पर कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म का नाम दो रास्ते। आवाज लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म थी दो रास्ते। और अब इस गीत के बाद कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम महबूबा।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम आशा, आवाज लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी आशा। जब जब फूल खिले, आइए इस फिल्म से हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक फिल्म से। कार्यक्रम एक फिल्म से सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं आपको कार्यक्रम एक फिल्म से।

श्रोताओं, फिल्म आन मिलो सजना में मुख्य किरदारों में नजर आए थे आशा पारेख, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अरुणा ईरानी, राजेंद्र नाथ, जूनियर महमूद समेत कई दिग्गज कलाकार। और ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही और इसके गीत काफी लाजवाब रहे, जो आज भी कर्णप्रिय बने हुए हैं। लोगों की जुबान पर बरबसी इसके सारे गीत चढ़े रहते हैं। चलिए हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

निर्देशक मुकुल दत्त के निर्देशन में बनी फिल्म आन मिलो सजना के सभी गीतों के बोल लिखे आनंद बख्शे साहब ने और गीतों के धुन तैयार किए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने।

फिल्म आ मिलो सजना के सभी गीतों को सुरों से सजाया किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले जैसे दिग्गज पार्श्व गायक गायिकाओं ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल सुरों में गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं समाप्त होता है। आज हम आपको सुनवा रहे थे वर्ष 1970 में प्रदर्शित हुई फिल्म आन मिलो सजना के कुछ चुनिंदा गीत। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तो कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिसकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है।
1: आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
1: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा तो व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाटा अप्पाराव के एक गीत का उल्लेख किया, जिसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश को एक प्रेरणादायक और प्रभावशाली संदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के संबोधन में युवाओं की उम्मीदों, महिलाओं की शक्ति और योगदान तथा देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश हर नागरिक से राष्ट्र निर्माण में पूर्ण समर्पण से योगदान का आह्वान करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। यह सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों के यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। छात्रों ने कहा कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu has said that Indian economy is the fastest growing major economy despite warfare and instability prevailing in several parts of the world. Addressing the nation on the eve of the 80th Independence Day this evening, the President highlighted that the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average global growth rate.
3: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
2: President Draupadi Murmu highlighted that making the country Naxal-free is a major achievement as for decades Naxalism posed a serious challenge to the nation. She said today the areas once affected by Naxalism are filled with enthusiasm.
3: For decades, Naxalism posed a serious challenge to the nation. Making India Naxal-free is a major achievement. Today, enthusiasm prevails in the areas once affected by Naxalism. All-inclusive development is underway in these regions. A large number of players took part in the Bastar Olympics and many artists showcased their talent in Bastar Pandum, which were enjoyed by a large number of people.
2: The President said that the students are the architects of India's future and emphasized that the government is undertaking comprehensive steps to reform public examinations.
3: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
2: Speaking about the country's young population, the President said 65% of the country's population is below the age of 35, which is the most valuable asset. She said many of our youth are embracing the culture of job creation as they pursue the path of self-employment. President Murmu said India is moving ahead towards building a Viksit Bharat by the centenary year of independence in 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that the President has given a powerful and